नमस्कार, FM 102.5 MHz पर साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026, सुबह के 5:55 और 40 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम

0: आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मोज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

चिंतन। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

इस देशभक्ति गीत के साथ ही आज का वंदनवार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 276, जिसमें आज आप सुनेंगे किष्किंधा कांड। संगीत सरिता, इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा, इसका 10वां भाग। कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, प्रस्तुति कांचन प्रकाश की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:30 पर। हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8:00 और 8:15 पर। सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख और स्वर राजेश झा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा दिन में 2:00 सुन सकते हैं। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30, आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर, पुनः प्रसारण रात्रि 9:30। रंग तरंग कार्यक्रम दिन में 11:00, 12:00 हिंदी में समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर आप तय करेंगे, दोपहर 1:00 फेसबुक कमेंट्स द्वारा श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार का समय होगा 2:15 और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3:00 और 4:00 होगा पिटारा कार्यक्रम। सेहतनामा के अंतर्गत सुनिए हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा से यूनुस खान की बातचीत। संपादन सहायक काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 4:00। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक और इसमें बीच में आप 6:00 सुनेंगे समाचार। 6:30 पर शाम में सुनिए झरोखा, आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। संध्या रंजन का समय होगा शाम 6:35 और शाम 7:00 जयमाला। इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से में आज आप सुनेंगे आसपास फिल्म के गीत। हवा महल में सुनिए नाटिका गुड्डी की माँ, लेखन हरिशंकर परसाई, निर्देशन मधुप शर्मा। समय रात्रि 8:00। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर, 8:45 पर। सुनिए समाचार संध्या। रात्रि 9:00 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए और छाया गीत कार्यक्रम होगा रात 10:00। आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम, और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस का 276वां भाग। इसमें आप सुनेंगे किष्किंधा कांड।

सागर तट पर श्रीराम की सेना डेरा डाले हुए है। रीछराज जांबवान वानर सेना को उपदेश कथाएं सुना रहे हैं। समीप ही पर्वत कंदरा में भूखे बैठे जटायु के भाई वृद्ध संपाति हर्षित होते हैं कि आज घर बैठे विधाता ने उनके लिए आहार भेज दिया। कंदरा से बाहर संपाति को देख वानर भयभीत होते हैं, किंतु अंगद को जटायु का स्मरण हो आता है जिन्होंने प्रभु सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपने छोटे भाई जटायु के प्राण विसर्जन की बात सुनकर संपाति को वास्तविकता का ज्ञान होता है। वे सागर तट पर भाई को तिलांजलि देकर युवावस्था की अपनी और जटायु की उस उड़ान की कथा सुनाते हैं जब दोनों भाई सूर्य के निकट पहुंच गए थे। जटायु तो थककर लौट आए थे, किंतु युवावस्था के उत्साह में स्वयं उन्होंने अपने पंख जला लिए थे।

उनका उपचार करने वाले दयालु सन्यासी चंद्रमा ने उन्हें तब आश्वस्त किया था कि त्रेता युग में स्वयं परम ब्रह्म के दूतों से मिलकर तू पवित्र हो जाएगा। आज वही अवसर आ गया था। संपाति ने अपनी गीत की दूरदृष्टि का लाभ उठाया और उस स्थान का पता बताया जहां रावण ने सीता को छिपा रखा था।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों नमस्कार। शुभा जी आपका विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: शुभा जी, कल आपने हमें दादरा सुनाया है और एक बहुत ही सुंदर रचना जो वर्षा ऋतु से संबंधित, जैसे बोल कितने ही सुंदर और उसमें आपने एक पद भी जोड़ा
1: जी।
0: और बहुत ही सुंदर रचना, कुल मिला के हमें बहुत आनंद आया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि ठुमरी दादरा
1: जी,
0: मतलब ठुमरी पहले गाई जाती है और दादरा बाद में, या ऐसा
1: नहीं? ऐसा वैसे ठुमरी का जो विस्तार मैंने बताया था वो ज्यादा होता है, अधिकांश उसकी लय भी थमी हुई रहती है, इसलिए लोग ठुमरी पहले गाते हैं और बाद में दादरा इत्यादि।

0: दादरा हो या फिर ऋतु संबंधी जो चीजें हैं जैसे कजरी इत्यादि वो गाई जाती हैं। एक नमूने के तौर पे वो दादरा प्रस्तुत किया था
1: जी,
0: और ठुमरी बाद में भी गा सकते हैं, स्पेशली जैसे अगर कोई ऐसी ठुमरी हो जैसे बंदिश की ठुमरी तो वो गाई जा सकती
1: तो
0: है।
1: तो बंदिश की ठुमरी का क्या मतलब होता है
0: जी? इसमें जो बंदिश जो है वो सर्वोपरि है, और जैसे बंदिश में मैंने पहले भी कहा था एक कार्यक्रम में कि गढ़ी हुई चीज जिसमें कि एक एक मात्रा पे क्या चीज रखनी है, कौन सा शब्द, कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन रखना है, वो पूरा गढ़ा हुआ मामला होता है
1: जी।
0: ये नहीं कि आपको जो आपकी जो गति है उसमें एक मात्रा और दूसरे मात्रा के बीच में इतना समय हो कि आप कुछ उसके एक बना के कुछ नया गढ़ के कह सकते हैं, ऐसा नहीं। बंदिश जो है वो बिल्कुल एक एक मात्रा के बंधा हुआ है। तो बंदिश की ठुमरी भी इसी प्रकार की, बल्कि इतनी अच्छी तरह गढ़ी हुई रहती है कि कई बार थोड़ा सा संदेह भी ये होता है कि ये ख्याल है या ठुमरी है। और बहुत सारी ऐसी बंदिश की ठुमरियां हैं जो कि कुछ लोग ख्याल के नाम से गाते हैं और कुछ लोग बंदिश की ठुमरी के नाम से गाते हैं। इसका संबंध ठुमरी का और बंदिश की ठुमरी का संबंध नृत्य से भी है। तो कहा जाता है कि ठुमरी की जब उत्पत्ति हुई तो वो नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं विशेष रूप से जो बनती थी वो ठुमरी के रूप में आज प्रचलित हैं और परिवर्तित होके भी आई हैं। तो बंदिश की ठुमरी का नृत्य से भी संबंध है। और जो उसमें जो लग्गी का जो अंश है, जब जो तबले पे बजाई जाती है, जो बाद में आप कार्यक्रम में सुनेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक संबंध कैसे स्थापित होता है।
1: उसमें बोल भी तो बिल्कुल बंधे हुए होंगे,
0: बिल्कुल
1: तराश तराश कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सुनाइए ना।
0: मैंने मुझे मिली ये चीज मंदिर के साहित्य से
1: जी।
0: तो कृष्ण का संबंध जो है वो भारतीय कलाओं से सर्वमान्य है,
1: और वर्षा ऋतु में ये कृष्ण जन्माष्टमी तो होती ही
0: बिल्कुल
1: है।
0: राधा जी का जन्म भी वर्षा ऋतु में ही होता है, और फिर जो लीला है, कृष्ण लीलाएं हैं, वो वर्षा में तो बहुत कुछ लिखा है संतों ने, संत कवियों ने। तो ये एक पद मैंने लिया है। आज प्रिय पावस रैन अंधेरी, पावस की रैन वो भी घनी स्याह काली अंधेरी। आज प्रिय पावस रैन अंधेरी, लाल रसिक मणि उठ किन देखहू, दामिनी लर्जत नेरी। इतने पास आ गई, मतलब लगता है कि बिल्कुल कमरे के अंदर दामिनी दमक रही है।
1: हाँ।
0: बिजली चमक रही है। आज प्रिय पावस रैन अंधेरी, लाल रसिक मणि उठ किन देखहू, दामिनी लर्जत नेरी। जल बोझक झुके आए बदरा, इतने ज्यादा भारी हो गए हैं जल लिए हुए बादल कि वो लगता है कि बिल्कुल अपने बोझ से ढरक जाएंगे
1: जी।
0: जल बोझक झुके आए बदरा, मोरन कुहक घनेरी,
1: मोरन की कुहक
0: कुहक हाँ घनेरी। अरु गहरी गर्जन सुन दिस दिस, हर दिशा से आ रही है बादलों की गर्जन। अरु गहरी गर्जन सुन दिस दिसी, नींद अहुर गई मेरी, उछट गई मेरी नींद। तुम आलस बस सुनत न नागर, वर्षत बन सुख ढेरी। बन में देखो, कुंज में देखो, वर्षा जो हो रही है वो सुख वर्षा हो रही है। चौंक परी सोवत ते पिय पिय, कहत पपीहा टेरी। ये पद है।
1: तो शुभा जी, अब देर क्यों, ठेठ बंदिश सुनते हैं।
0: बिल्कुल, ये देश राग में निबद्ध है और सितार खानी या अद्धा जो ठेका है उसमें बांधी गई,
1: मतलब सितार खानी ही को अद्धा कहते हैं।
0: जी हाँ जी
1: जी। तो अनीश जी हमें समझाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
2: सोलह मात्रे का सितार खानी या अद्धा ताल।

0: श्रोता मित्रों, शुभाजी से हम सुन रहे थे राग देश में बंदिश की ठुमरी, आधा ताल में निबद्ध, और आज हम इसी के साथ आज्ञा चाहेंगे। कल फिर मिलते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

FM 102.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल वंदन।

महाकाल वंदन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुबह की इस अमृत वेला में आइए सर्वप्रथम बाबा महाकाल को नमन करते हैं और सुनते हैं शिव भक्ति से सराबोर भजन।

ये था हमारा कार्यक्रम महाकाल वंदन और आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन।

सुबह 7:20 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर सुनिएगा उज्जैनी आरजे विद आरजे देशना जैन।

9:30 पर सुनिएगा बॉलीवुड बीट्स, 10 बजे होगा कार्यक्रम उज्जैन दर्शन और 10:30 पर सुनिएगा महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

सुबह 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल। सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे।

फिल्म संगीत सुनिएगा दोपहर 2 बजे 2:30 पर आप सुन सकेंगे सदाबहार नगमे। तीन बजे होगा कार्यक्रम सखी सहेली, 4 बजे सेहतनामा। शाम 5 बजे होगा युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जिसमें होगा आज सजीव फोन इन प्रोग्राम। 6 बजे आप हमसे जुड़िएगा भजन संध्या में।

6:30 30 मिनट पर आप पुनः सुन सकेंगे फिल्म संगीत 6:40 पर आजकल। सात बजकर 21 मिनट पर शाम में आप सुनिएगा माटीरी बात। 8 बजे होगी संसद की समीक्षा और रात 8:15 पर सुर्खियों में। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर होगा पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले। 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्न कॉल की रिकॉर्डिंग।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम थोड़ी ही देर में भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों से उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर की प्रसिद्ध संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश में 4 नई सीधी हवाई सेवाएं शुरू। भोपाल, रीवा और भोपाल पटना समेत 4 शहरों को मिला हवाई संपर्क। और प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय। आज 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और हमें हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का सामूहिक संकल्प दोहराने का आग्रह किया। इस साल इस अभियान को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं, रैलियां, संगीत कार्यक्रम

0: और सामूहिक गायन होंगे। दुनिया भर में 200 से ज्यादा भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भी इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं प्रदेश में भी 9 से 17 अगस्त तक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हर घर तिरंगा अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सतना, झाबुआ, छतरपुर, ग्वालियर समेत सभी जिलों में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन एवं प्रतियोगिताओं समेत कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ खेलों के अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता युवाओं को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील भी प्रधानमंत्री ने की। इस मौके पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी मौजूद रहीं। ग्लासगो में आयोजित खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज जबलपुर में प्रसिद्ध संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। सावन माह में निकाली जाने वाली ये यात्रा माँ नर्मदा के पावन तट ग्वारी घाट से शुरू होकर कैलाश धाम तक जाती है। करीब 35 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री इसके बाद भोपाल लौटकर आगरमालवा की कलश यात्रा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में कल 4 नई सीधी हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल से इन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। नई उड़ानों से भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच सीधा हवाई संपर्क शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 महीने में भोपाल से शारजाह के लिए भी सीधी उड़ान शुरू होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द 5 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इनमें सबसे पहले सिंगरौली का एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा।
1: लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए, हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। ये काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, मान ले 78 तक के पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है, आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें।
0: इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नायडू ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के शहरों को कोलकाता और पटना से जोड़ने की दिशा में ये जो कदम उठाया गया है, यह एयर कनेक्टिविटी के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
2: मैं भोपाल, जबलपुर और रीवा के सभी भाइयों बहनों को दिल से बधाई देता हूं। एक समय होता था देश में जब ऐसे नगरों में, शहरों में रेल की कनेक्टिविटी बढ़ती थी तो बहुत खुशी का माहौल होता था, पर आज देश बदल गया। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच विचार के साथ चलने वाला देश है। इस देश में किस तरह से संभावनाएं बढ़ी है, जिस तरह से हवाई कनेक्टिविटी का प्रभाव आज देश में देखने को मिल रहा है, उसका एक नतीजा हम यहाँ पे भोपाल में भी देख रहे हैं। 50 दिन में एक नया एयरपोर्ट खोलने का काम हमारे भारत देश ने किया है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग आज से 14 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी CLC चरण का आयोजन करेगा, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की खाली सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश मिलेगा। नए पंजीकृत विद्यार्थी इस चरण में केवल एक कॉलेज का विकल्प ही चुन सकेंगे। इंदौर ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। रेवती रेंज में अब 13,10,012 पेड़ होने की पुष्टि हुई है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे एक ही जगह पर लाखों पौधे लगाकर 2 साल तक उनका संरक्षण करने का विश्व रिकॉर्ड माना है। साल 2024 में रेवती रेंज पर एक दिन में 12,41,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। इसके बाद 2 साल तक पौधों की देखरेख की गई और उनकी गिनती का सत्यापन किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर को क्लीन के साथ अब ग्रीन सिटी बनाने का लक्ष्य है और इस साल 21 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक नवाचार और अभिनव पहल की जा रही है। इसी उद्देश्य गुना जिले में रूरल मार्ट एंड लिवलीहुड हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट परियोजना से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे

0: संवाददाता रोहित गोस्वामी।
1: सशक्त महिला समृद्ध भारत की दिशा में गुना के उमरी गांव में एक अनुकरणीय पहल हुई है। शक्तिशाली महिला संगठन

0: पढ़ाई एवं ज्वेलरी निर्माण जैसे पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल जो कि इको फ्रेंडली हैं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केट लिंकेज, सरकारी योजनाओं से जुड़ाव और जिज्जी की पंचायत तथा रूरल मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए गुना से मैं रोहित गोस्वामी।
2: सावन माह के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और भस्म आरती की गई। इसके बाद पंचामृत से भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया और भांग, चंदन, आभूषण और फूलों से श्रृंगार किया गया। भगवान को फल और मिष्ठान का भोग भी लगाया गया। ये दर्शन का सिलसिला रात 10 बजे होने वाली शयन आरती तक जारी रहेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर और शहर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय हो गया है। मानसून ट्रफ और निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर और जबलपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में रात भर से तेज बारिश हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ की कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव एवं कृषि दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 10 दिवसीय नागद्वारी मेले के पहले दिन कल लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। डिंडौरी जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने आज नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में गतिविधि संभावना के तहत जितेंद्र कुमार शर्मा और साथियों द्वारा बीनवादन नृत्य और श्री रामचंद्र सिंह के निर्देशन में शिवलीला नाटक की प्रस्तुति दी गई और खंडवा में जनजाति विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने वीरांगना रानी दुर्गावती उत्कृष्ट छात्रावास, सीनियर कन्या छात्रावास और महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास की छात्राओं से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:20 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सावन की सुबह हो और बात उज्जैन की हो तो लगता है जैसे पूरा शहर ही शिव आराधना में डूब गया हो। बारिश की रिमझिम फुहार, शिप्रा के तट पर उठती आस्था की लहरें, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और हर ओर गूंजता हर हर महादेव, यही तो है सावन में उज्जैन की पहचान। महाकाल की नगरी में सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि भक्ति का उत्सव बन जाता है। गलियों से लेकर मंदिरों तक हर चेहरे पर बाबा महाकाल के दर्शन की उत्सुकता दिखाई देती।

सुप्रभात उज्जैन में अब वक्त है कुछ खबरें जानने का उज्जैन के समाचार पत्रों से। पहली खबर है महाकाल मंदिर से। उज्जैन में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। भस्म आरती के लिए मंदिर के कपाट तड़के 2:30 बजे खोल दिए गए हैं। भस्म आरती के बाद से दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है, जो रात 10 बजे होने वाली शयन आरती तक चलेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पिछले सोमवार को करीब 6,13,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है। कल विश्व आदि दिवस पर रैली निकाली गई, जिसमें उज्जैन में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। दशहरा मैदान से आदिवासी समाज की रैली निकाली गई, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। रैली में आदिवासी वाद्य यंत्र, मांदल, ताशे और पारंपरिक नृत्य दल आकर्षण का केंद्र रहे। चल समारोह पुलिस कंट्रोल रूम टावर और सिंधी कॉलोनी चौराहे से होते हुए महाकाल वाणिज्य केंद्र स्थित शुभम मंगल परिसर पहुंचा, जहां टाटिया भील, बिरसा मुंडा, राजा पुंजा भील और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी और 19 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अब रुख करते हैं मनोरंजन जगत की खबरों की ओर। बी प्राग की प्रस्तुति से गूंजा शक्तिपथ उज्जैन। रविवार रात त्रिवेणी संग्रहालय के पास शक्तिपथ पर आयोजित शिवत्व श्रावण कला उत्सव में प्रसिद्ध गायक और कंपोजर बी प्राग ने शानदार प्रस्तुति दी। रंग बिरंगी रोशनी और विशाल मंचों पर करीब 1 घंटा 45 मिनट तक एक से बढ़कर एक गीत की प्रस्तुति हुई। बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने उनके साथ सुर में सुर मिलाया और उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत में बी प्राग ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन का अवसर मिलने पर आभार जताया। आयोजन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के समन्वय से किया गया। कार्यक्रम में मुंबई और निवाणी के कलाकार ने भी सांस्कृतिक एवं संगीत प्रस्तुतियां दी। अब बात करते हैं काल भैरव मंदिर की दर्शन व्यवस्था के हुए बदलाव की। काल भैरव मंदिर में VIP दर्शन व्यवस्था बंद। श्रावण के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए काल भैरव मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ₹500 वाली VIP दर्शन व्यवस्था बंद कर दी गई है। अब सभी श्रद्धालुओं को सामान्य कतार से निःशुल्क दर्शन करवाया जा रहे हैं। उज्जैन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये अगली खबर। उज्जैन में विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण चल रहा है। ये प्रक्रिया 14 अगस्त तक जारी रहेगी। विद्यार्थियों को प्रवेश केवल उपलब्ध रिक्त सीटों पर के आधार पर ही दिया जाएगा। ये थी उज्जैन की कुछ खबरें समाचार पत्रों से। श्रोताओं, आइए वापस जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में। और जब बात सावन की हो, सोमवार आता है तो उज्जैन की रौनक जैसे कई गुना बढ़ जाती है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ते हैं। कोई हाथों में बेलपत्र लिए हैं, कोई जल का पात्र लिए हैं, तो कोई कांवड़ में पवित्र जल लेकर बाबा को अर्पित करने की भावना से उज्जैन पहुंचा है। बारिश से धुली सड़कें, भगवा रंग में रंगे श्रद्धालु, शिव नाम का जय घोष और मंदिरों की ओर बढ़ते कदम। सावन के सोमवार को उज्जैन का ये दृश्य अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे अवंतिका की प्राचीन धरती पर भक्ति और प्रकृति एक साथ उत्सव मना रही हो।

आज 10 अगस्त का सोमवार इस सावन में विशेष है, क्योंकि आज बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकलेगी। पहली सवारी के बाद अब एक बार फिर राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। परंपरा के अनुसार बाबा के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप की पालकी सजती है और हजारों लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए मार्ग के दोनों तरफ उपस्थित रहते हैं। सवारी के दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, भक्ति गीतों के स्वर लहरियां और हर हर महादेव के जयघोष से उज्जैन का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो जाता है। महाकाल की सवारी उज्जैन की उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें देवता अपने भक्तों के बीच स्वयं नगर भ्रमण करते हैं।

सावन में उज्जैन की एक और खास पहचान है, चौरासी महादेव। मान्यता और परंपरा में चौरासी महादेव मंदिरों का ये धार्मिक परिक्रमा संबंधी स्वरूप उज्जैन की शिव उपासना की व्यापकता को दर्शाता है। सावन में इन मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना और दर्शन का क्रम चलता है। महाकाल से लेकर काल भैरव और अलग अलग महादेव मंदिरों तक उज्जैन की धरती पर शिव आराधना के अनेक रूप दिखाई देते हैं। यही कारण है कि सावन में यहाँ आने वाला श्रद्धालु केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पूरी अवंतिका की शिवमयी परंपरा महसूस करता है। हर मंदिर की अपनी कथा, अपनी मान्यता और अपनी आस्था है, और इन सबको जोड़ता है सिर्फ एक नाम, महादेव।

अब बात करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की। हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते कदमों में जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया है। हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। जैव ईंधन पौधों, कृषि अवशेषों, जैविक कचरे और अन्य प्राकृतिक स्रोतों के से तैयार किया जाता है। इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खास बात यह है कि जैव ईंधन न केवल ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने में सहायक है, बल्कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नए अवसर पैदा कर सकता है। यानी खेती से बचा हुआ कृषि अवशेष जो कभी अपशिष्ट माना जाता था, वही ऊर्जा का उपयोगी स्रोत बन सकता है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बायोफ्यूल का महत्व और भी बढ़ जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने से पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करने, किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने और पर्यावरणीय प्रदूषण को घटाने में मदद मिल सकती है। साथ ही गोबर और जैविक कचरे से बायोगैस तथा बायोसीएनजी का उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट को भी बढ़ावा देता है। विश्व जैव ईंधन दिवस हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा का भविष्य केवल अधिक उत्पादन में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ऊर्जा के बेहतर विकल्प अपनाने में है। आइए स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में अपने छोटे छोटे प्रयासों को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ श्रोताओं, ये था हमारा आज का सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे।

और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

0: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
2: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित ये यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
3: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीटीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच

0: दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
4: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।

0: परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, तीन परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए चार बड़ी घोषणाएं की। संसद के मॉनसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आज आएंगे चार विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to join Har Ghar Tiranga movement and hoist the tricolour at homes. India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
3: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
2: More on this in this report.
4: The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga Rallies, Tiranga Concerts and mass singing of Vande Mataram. The ministry said the 150th anniversary of Vande Mataram would provide an opportunity for citizens to celebrate the national song as part of the Independence Day festivities. A key feature of this year's celebrations will be Surya

दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे हो रहे हैं जिनके लिए काम सिर्फ काम नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने का तरीका था। किशोर कुमार उन्हीं में से एक थे। उनके बारे में मशहूर है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनका अंदाज बिल्कुल अलग होता था। वे गाने को सिर्फ सुरों में नहीं, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ जीते थे। कई बार संगीतकारों और प्रोड्यूसर्स को उनके अनप्रिडिक्टेबल मूड का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही माइक्रोफोन के सामने आते थे, वही शख्स की आवाज़ में ऐसी शरारत, ऐसी मस्ती और ऐसी गहराई भर देता था कि गीत अमर हो जाता। वही वजह है कि किशोर दा की आवाज़ में रोमांस हो या कॉमेडी, दर्द हो या मस्ती, हर रंग बिल्कुल अपना लगता है। उनकी गायकी का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वे प्लेबैक सिंगर होते हुए भी पर्दे पर मौजूद एक्टर की पर्सनालिटी को अपनी आवाज़ में उतार लेते थे। शायद इसलिए उनके गाए गीत तो सुनते हुए आज भी लगता है कि कहानी का नायक हमारे सामने ही मुस्कुरा रहा हो। आइए शुरुआत करते हैं किशोर दा के ही एक ऐसे सुपरहिट गीत के साथ।

अब बात उस आवाज की जिसे दुनिया ने महान कहा, लेकिन जिसने खुद को हमेशा एक विद्यार्थी ही माना, मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब की सबसे खूबसूरत बात उनकी गायकी जितनी ही विनम्रता थी। कहा जाता है कि वे बड़े से बड़े कलाकार के लिए भी पूरे समर्पण के साथ गाते थे, चाहे पर्दे पर दिलीप कुमार हो, देवानंद हो या शम्मी कपूर। हर अभिनेता के अंदाज के मुताबिक वे अपनी आवाज़ का रंग बदल लेते थे। शम्मी कपूर की उछलती कूदती स्क्रीन पर्सनालिटी के लिए उनकी आवाज़ में जो एनर्जी आती थी, वही किसी दूसरे अभिनेता के लिए बिल्कुल अलग अंदाज ले लेती थी। यही असली प्लेबैक सिंगिंग थी, आवाज़ अपनी लेकिन एहसास किरदार का। रफ़ी साहब की आवाज़ में मोहब्बत इतनी मासूम थी कि रोमांटिक गीत सुनकर लगता है जैसे कोई सीधे दिल की बात कर

रहो, और भक्ति गीतों में वही आवाज प्रार्थना बन जाती है। यही वर्सिटाइलिटी उन्हें सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा का हिस्सा बनाती है।

लता मंगेशकर जी के बारे में कहा जाता है कि वे रिकॉर्डिंग को लेकर बेहद अनुशासित थी। किसी गीत को माइक्रोफोन के सामने गाने से पहले उसके शब्द, भाव, प्रोनंसिएशन और धुन, हर चीज़ पर बारीकी से ध्यान देती थी। यही कारण था कि उनका गाया हुआ गीत केवल गाना नहीं रहता था, वो कैरेक्टर की भावना बन जाता था। खासकर जब गीत किसी एक्ट्रेस के लिपसिंग के लिए रिकॉर्ड किया जाता तो लता जी उस अभिनेत्री के भाव और परिस्थिति को समझकर आवाज़ में वही इमोशन लाने की कोशिश करती थी। सोचिए, पर्दे पर एक्ट्रेस की आंखों में आंसू है, लेकिन उस इमोशन को अपनी आवाज़ से दर्शक तक पहुंचाने वाली गायिका स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने खड़ी है। यही प्लेबैक सिंगिंग का जादू है। लता जी की आवाज़ ने हिंदी सिनेमा की कई पीढ़ियों की हीरोइंस को अलग अलग पहचान दी। उनके स्वर में कभी नायिका की शर्म थी, कभी विरह की पीड़ा और कभी प्रेम की मासूमियत। इसलिए उनके गीत आज सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि कई ज़्यादा महसूस किए जाते हैं।

बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प म्यूजिकल पार्टनरशिप में आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की जोड़ी का नाम बेहद खास है। पंचमदा की म्यूजिक कंपोजिशंस में जो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी थी, उसे आशा जी की आवाज़ ने एक अलग ही पहचान दी। दोनों ने मिलकर हिंदी फिल्म सिनेमा को कई रंग दिए। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, जैज का टच हो, कैबरेट की मस्ती हो या फिर बेहद सॉफ्ट रोमांटिक मेलोडी, आशा जी हर मूड को अपनी आवाज़ में ढाल देती थी। पंचमदा की धुनें अक्सर अपने समय से आगे होती थी और आशा जी उनकी आवाज़ उनमें वो शरारत और फ्रेशनेस भर देती थी जिसकी ज़रूरत होती थी। यही वजह है कि उनके साथ रिकॉर्ड किए गए कई गीत आज भी यंगस्टर्स को उतने ही मॉडर्न लगते हैं जितने अपने दौर में लगते थे। इस जोड़ी ने साबित किया कि सिंगर और कंपोजर के बीच में सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता, जब दोनों की म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग गहरी हो जाए तो वो रिश्ता इतिहास रच देता है।

देखो वो आ गया।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: कुछ दोस्तियां बॉलीवुड में ऐसी हुई जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि यादें पैदा हुई। गुलजार और RD बर्मन की जोड़ी भी ऐसी ही थी। एक तरफ गुलजार के शब्द जो सीधे सीधे नहीं बल्कि इशारों और भावनाओं में बात करते थे, दूसरी तरफ पंचमदा की धुन जो इन शब्दों को एक अलग ही दुनिया देती थी। दोनों की क्रिएटिव केमिस्ट्री ने हिंदी फिल्म सिनेमा के जो संगीत को बेहद खूबसूरत गीत दिए। गुलजार के शब्दों में अक्सर बारिश, शाम, हवा, खिड़की, चांद और रिश्तों के छोटे छोटे एहसास दिखाई देते थे और पंचमदा उन शब्दों के बीच ऐसी धुन बुन देते थे कि पूरा दृश्य आंखों के सामने उतर आता था। यही वजह है कि उनके कई गीत सुनते हुए लगता है जैसे कोई कहानी चल रही हो। इस जोड़ी की खासियत थी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, और यही तो अच्छे गीत की पहचान भी होती है।

अगर किसी गीतकार ने आम आदमी की भाषा को बॉलीवुड में गीतों में खूबसूरती से उतारा है, तो उनमें आनंद बख्शी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके गीतों में भारी भरकम शब्दों की जगह ऐसे शब्द मिलते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है, अरे ये तो हमारी ही बात है। प्रेम हो, दोस्ती हो, जुदाई हो या जिंदगी की उलझन, उन्होंने हर भावना को बेहद सहज भाषा में लिखा। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके लिखे गीतों को सुनकर श्रोता खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करते हैं। आनंद बख्शी साहब की खासियत थी कि वे फिल्म के कैरेक्टर और सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझते थे, इसलिए उनके गीत कहानी से अलग नहीं लगते थे, बल्कि स्क्रीन प्ले का ही हिस्सा बन जाते थे। यही कारण है कि उनके गीत दशकों बाद भी लोगों की जुबां पर है। कुछ गीत समय के साथ अपने पुराने हो जाते हैं, लेकिन आनंद बख्शी के कई गीत हर नई पीढ़ी में फिर से जवान हो जाते हैं।

किशोर दा की आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे जिस अभिनेता के लिए गीत गाते उसकी पर्सनालिटी में घुल जाते थे। राजेश खन्ना साहब की रोमांटिक स्क्रीन इमेज को किशोर दा की आवाज़ ने एक अलग ही ऊंचाई दी। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, किशोर दा एक्टर भी थे, इसलिए उन्हें अभिनय की बारीकियों का पूरा अंदाज़ा था। उन्हें पता था कि स्क्रीन पर अभिनेता किस तरह एक्सप्रेशन दे रहा है और आवाज़ को उस एक्सप्रेशन के साथ कैसे चलाना है। इसलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स में सिर्फ सुर नहीं, एक्टिंग भी सुनाई देती है। कभी आवाज़ में हल्की सी मुस्कान, कभी अचानक एनर्जी और कभी शब्दों के बीच ठहराव, ये सब उस कैरेक्टर को जीवंत कर देते थे। शायद यही कारण था कि राजेश खन्ना साहब और किशोर दा की म्यूजिकल पार्टनरशिप को हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में गिना जाता है। एक एक्टर की आंखों का इमोशन और एक सिंगर की आवाज़, जब दोनों एक हो जाए तो गीत सब गीत नहीं रहता, एक पूरा सिनेमैटिक मोमेंट बन जाता है।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: मुकेश साहब की आवाज़ में एक ऐसी सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनकी आवाज़ में न तो दिखावा था, न ही ज़रूरत से ज़्यादा सजावट। यही कारण है कि राज कपूर साहब के किरदार के साथ उनकी आवाज़ का रिश्ता इतना गहरा बना कि पर्दे पर राज कपूर का भोला भावुक और संघर्ष करता हुआ कैरेक्टर और पीछे से आती मुकेश दा की आवाज़, इन दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा के एक खास दौर की पहचान बना दी। मुकेश दा की आवाज़ में दर्द भी था, उम्मीद भी और ज़िंदगी की सच्चाई भी। वे जब कोई गीत गाते थे तो ऐसा लगता जैसे कोई बहुत अपना इंसान अपने दिल की बात कह रहा हो। शायद इसीलिए मुकेश दा के गीत सुनते ही आज भी पुरानी फिल्मों के दृश्य, चेहरे और भावनाएं याद आने लगती है। इनकी आवाज़ ने साबित किया कि महान गायकी हमेशा ऊंचे सुरों या कठिन तकनीक का काम नहीं, कभी कभी सच्चाई से गाया गया गाना एक सरल स्वर भी करोड़ों दिलों तक पहुंच जाता है।

हिंदी फिल्म संगीत का एक खूबसूरत दौर ऐसा भी रहा जब किशोरदा और मोहम्मद रफ़ी साहब दोनों अपनी अपनी जगह शिखर पर थे। दोनों की आवाज़ बिल्कुल अलग थी, लेकिन दोनों की वर्सिटैलिटी अद्भुत थी। रफ़ी साहब की आवाज़ में क्लासिकल फाइननेस और इनक्रेडिबल रेंज थी, जबकि किशोरदा की आवाज़ में नेचुरल स्पॉन्टेनियसिटी और अभिनय का जादू था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ भी गीत गाए, और जब दोनों आवाज़ एक ही गीत में आती थी तो संगीत प्रेमियों के लिए वो किसी म्यूजिकल सेलिब्रेशन से कम नहीं होता था। ये राइवलरी से ज़्यादा हेल्दी म्यूजिकल कंपटीशन का दौर था, जिसमें हर सिंगर अपनी अलग पहचान बना रहा था। एक तरफ रोमांटिक हीरो की आवाज़, दूसरी तरफ मस्तीखोर नायक की आवाज़, और दोनों ही दर्शकों के दिल पर राज करते थे। यही बॉलीवुड म्यूजिक की खूबसूरती है कि उसमें एक ही समय पर अलग-अलग आवाज़ के लिए भी जगह बन सकती है।

बात करते हैं एक ऐसे किस्से की जिसे बॉलीवुड के पूरे म्यूजिकल इकोसिस्टम को समझाता है। एक यादगार फिल्मी गीत कभी सिर्फ सिंगर का कमाल नहीं होता, उसके पीछे लिरिसिस्ट के शब्द होते हैं, कंपोजर की धुन होती है, सिंगर की आवाज़ होती है और एक्टर की अदाकारी होती है। इन चारों का जादू मिलकर वो गीत बनाता है जिसे हम वर्षों बाद भी याद रखते हैं। सोचिए, लिरिसिस्ट ने शब्द लिखे, कंपोजर ने उन शब्दों में धुन की जान डाली, सिंगर ने उसमें अपनी आवाज़ और इमोशन भरा और एक्टर ने कैमरे के सामने उसे जी लिया। तभी कोई गीत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है। यही वजह है कि बॉलीवुड के पुराने गीत आज भी रेडियो पर बजता है तो श्रोता सिर्फ धुन नहीं, उसे सुनता है। उसे अपनी कोई पुरानी शाम, कोई दोस्तों, कोई अधूरी कहानी या कोई खूबसूरत याद भी याद आ जाती है। शायद यही सिनेमा के संगीत का असली जादू है। फिल्म ख़त्म हो जाती है लेकिन गीत की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

इसी के साथ श्रोताओं, ये था हमारा आज का उज्जैनी आरजे कार्यक्रम, और मैं हूँ आपके साथ आरजे देशना जैन।

आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 9:30 होने को है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

श्रोताओं, कभी कभी प्यार को किसी नाम, रिश्ते या वादे की ज़रूरत नहीं होती, बस एक एहसास काफ़ी होता है। जब दिल किसी के करीब आकर खुद को पहले से ज़्यादा पूरा महसूस करने लगे, तो वही एहसास बन जाता है सूफियाना इश्क। इसी खूबसूरत एहसास को आवाज़ देती है द फिल्म द डर्टी पिक्चर, जिसे ये बेहद मधुर पेशकश। सुनते हैं इश्क में डूबा ये खूबसूरत सा गीत।

मोहब्बत जब पूरी शिद्दत से दिल में उतरती है तो फिर दुनिया की हर खुशी उसी एक इंसान से जुड़ने लगती है। प्रेम की कहीं गहराई और समर्पण को बेहद खूबसूरती से महसूस कराता है फिल्म पद्मावत का ये अगला गीत। अरिजीत सिंह की आवाज़ और संजय लीला भंसाली का संगीत मिलकर रचते हैं बेहद खूबसूरत एहसास।

मोहब्बत में जब दिल बेकरार हो तो हर धड़कन जैसे किसी खास का नाम लेने लगती है। गदर टू का ये गीत प्यार की उसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है जहां साथ होने की खुशी और दिल की बेकरारी दोनों एक साथ महसूस होती है।

कुछ रिश्ते दूरी से कमज़ोर नहीं होते, बल्कि इंतज़ार उन्हें और गहरा बना देता है। किसी अपने के लौट आने की उम्मीद, उसकी याद और दिल की बेचैनी, इन सभी भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पिरोता है फिल्म दे दे प्यार दे का ये गीत। अरमान मलिक की भावपूर्ण आवाज़ इस एहसास को और भी खास बना देती है।

रंगों से सजी महफिल, प्रेम की मीठी शरारत और लोक संगीत की खूबसूरत खुशबू, इन सबका शानदार मेल है जुग जुग जियो का ये गीत। कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाज़ में इसकी धुन आपको एक साथ ट्रेडिशनल भी लगती है और मॉडर्न भी। तो ज़रा मूड को रंगीन कीजिए और संगीत की इस प्यारी लहर के साथ शामिल हो जाइए।

जब बॉलीवुड में मस्ती, ग्लैमर और रेट्रो अंदाज एक साथ आ जाए तो माहौल अपने आप एनर्जेटिक हो जाता है। फिल्म भारत का ये गीत इसी रंगीन अंदाज की शानदार मिसाल है। सलमान खान और दिशा पाटनी की स्क्रीन प्रेजेंस, विशाल शेखर का म्यूजिक और नक्श अजीज की आवाज़, सब मिलकर बनाते हैं फुल ऑन एंटरटेनर। तो तैयार हो जाइए थोड़ा स्लो मोशन में झूमने के लिए।

श्रोताओं, इसी के साथ ये था हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स, और आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 10 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उज्जैन दर्शन।

0: उज्जैन दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, तो आइए आज निकलने वाली है उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी। तो इस पर सुनते हैं महाकाल की द्वितीय सवारी पर केंद्रित एक विशेष प्रस्तुति।
1: पावन नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, जहां सावन का हर सोमवार आस्था का ऐसा पर्व बन जाता है जिसमें पूरा शहर बाबा महाकाल की भक्ति में डूब जाता है। जब राजाधिराज बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ते हैं। गूंजता जय महाकाल का उद्घोष और भक्ति से सराबोर वातावरण अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। आज सावन माह की दूसरी सवारी है। बाबा महाकाल अपने दिव्य स्वरूप में नगर भ्रमण करेंगे और हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था के इस विराट आयोजन को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की है। सवारी के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, कितने पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहेंगे, भीड़ प्रबंधन को लेकर क्या रणनीति रहेगी, यातायात व्यवस्था के लिए कौन कौन से मार्ग डाइवर्ट किए गए हैं, कहां पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और आम नागरिकों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता, पेयजल और नगर निगम की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बातचीत की है उज्जैन के पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा जी से, पुलिस अधीक्षक यातायात श्री दिलीप सिंह परिहार जी से और उज्जैन के माननीय महापौर श्री मुकेश टटवाल जी से। तो आइए सुनते हैं बाबा महाकाल की दूसरी सवारी को लेकर क्या क्या इंतजाम रहेंगे। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान उज्जैन की सड़कों पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ता है। ऐसे में यातायात को सुचारू बनाए रखना और श्रद्धालुओं के साथ ही आम नागरिकों की आवाजाही को व्यवस्थित करना यातायात पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। सवारी के दौरान शहर में कौन कौन से प्रमुख मार्गों पर यातायात डाइवर्ट रहेगा, किन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहाँ कहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है और पार्किंग से सवारी क्षेत्र तक पहुंचने के क्या इंतजाम है, इन महत्वपूर्ण सवालों और यातायात व्यवस्था की पूरी जानकारी के लिए हमने पुलिस अधीक्षक यातायात श्री दिलीप सिंह परिवार से बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने यातायात संबंधित व्यवस्थाओं पर क्या कहा।
2: सोमवार को जो श्री महाकाल की सवारी निकलती है उसमें यातायात की दृष्टि से जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए एक विस्तृत यातायात प्लान बनाया गया है जिसमें जो है सभी तरफ से आने वाले वाहनों को अलग अलग पार्किंगों में भेजा जाने का प्लान है और वहां से उनको कैसे सुगमता से सवारी मार्ग की ओर भेजा जाए इस संबंध में प्लान है। इसके लिए ये है कि जो इंदौर देवास की तरफ से जो भी वाहन आ रहे हैं वो तपोभूमि

सीधे आकर के और पहले आपके हरी फाटक चौराहे से कर्कराज पार्किंग की तरफ जाएंगे, जहां पर कर्कराज पार्किंग में अपना वाहन पार्क करके और हर सिद्धि चौराहा होकर के मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये कर्कराज पार्किंग जब भर जाएगी तो उनको जो हरी फाटक चौराहे पर जो पार्किंग उपलब्ध है, मन्नत गार्डन पार्किंग और इम्पीरियल होटल के पीछे की पार्किंग है, वहाँ पर पार्क कराया जाएगा। और यहाँ से वो पैदल जो है हरी फाटक ब्रिज होकर के और इंटरप्रिटेशन से हर सिद्धि चार धाम होकर के जाएंगे, जहाँ से वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है जब यहाँ भी ये पार्किंग भर जाती है तो आस्था चौराहे से, जो आस्था तिराहा है, तपोभूमि से महामृत्युंजय द्वार, आस्था तिराहा से सिंहस्थ बाईपास होकर के और चिंतामन ब्रिज से राइट यूटर्न उतर करके और लाल पुलटी से उजरखेड़ा चौराहा और मुरलीपुरा होते हुए शंकराचार्य चौराहे से कार्तिक मेला ग्राउंड में जा करके अपना वाहन पार्क कर सकते हैं और वहां से फिर पैदल जो है सिद्धि चौराहा चार धाम होते हुए जो है मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार जो वाहन बड़नगर से या उन्हेल नागदा की तरफ से आ रहे हैं, बड़नगर से आने वाले वाहन जो है धर्मबड़ला से मोहनपुरा ब्रिज के नीचे से मुरलीपुरा, वहां से शंकराचार्य चौराहे के पास कार्तिक मेला ग्राउंड में अपना वाहन पार्क करके यहां से गुरुद्वारा वाली रोड से होकर के हर सिद्धि चौराहे से चार धाम होकर के और मंदिर दर्शन का जो रास्ता है वहां से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार जो उन्हेल नागदा की तरफ से आ रहे हैं वो भी जो है साढ़ू माता की बावड़ी से सिंहस्थ बाईपास से मोहनपुरा ब्रिज से लेफ्ट उतर करके और सर्विस रोड से लेफ्ट होकर के मुरलीपुरा से शंकराचार्य चौराहा होकर के कार्तिक मेला ग्राउंड में अपना वाहन पार्क करके और गुरुद्वारा मार्ग से हर सिद्धि से चार धाम होकर के मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार जो श्रद्धालुगण जो है आगर रोड से आने वालों को चौपाल सागर से साढ़ू माता की बावड़ी सिंहस्थ बाईपास होते हुए मोहनपुरा से शंकराचार्य कार्तिक मेला ग्राउंड में आकर अपना वाहन पार्क करके और गुरुद्वारा रोड से हर सिद्धि से चार धाम होते हुए मंदिर दर्शन के लिए जाना उनको। और इसी प्रकार अगर कोई चिंतामन तरफ से आ रहा है तो वो सीधे जो है चिंतामन ब्रिज लाल पुल टी से मुरलीपुरा से शंकराचार्य चौराहा कार्तिक मेला ग्राउंड में जाकर के अपना वाहन पार करके और गुरुद्वारा रोड से हर सिद्धि होते हुए मंदिर दर्शन के लिए सुविधाजनक जा सकते हैं। जो सवारी रहती है, सवारी का समय है 4 बजे निकलने का रहता है, तो दोपहर 12 बजे से हम जो है हरी फाटक टी से वाहनों का आवागमन जो है महाकाल घाटी बेगमबाग के लिए बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो है पीछे दौलतगंज से जो है चार पहिया वाहनों का प्रवेश और लोहा पुल से महाकाल घाटी और गुदरी तरफ के लिए वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो हर सिद्धि पाल से रामानुज कोट और गुदरी रोड में जो है वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो दानी गेट चक्रतीर्थ से दानी गेट की तरफ वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है और दानी गेट से जो है कार्तिक चौक की तरफ ये भी प्रवेश बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें दर्शनार्थियों खड़े होने की दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जाती है, तो इस कारण से यातायात बंद किया जा करके बैरिकेडिंग लगाया जाना शुरू किया जाता है। और इसी प्रकार जो है गोपाल मंदिर से पटनी बाजार की तरफ बंद किया जाता है और फिर कमरी मार्ग से ढाबा रोड और टंकी से कमरी मार्ग, छतरी से आपके जो है गोपाल मंदिर की तरफ और कंठाल से सती गेट और छतरी वाले मार्ग पर भी यातायात जो है पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। इसलिए आम जनता से ये अपील है कि 12 बजे के बाद जो है इन मार्गों पर ना जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए जो डाइवर्टेड मार्ग रहते हैं उसमें आपको अगर कोई तपोभूमि से आ रहा है और उसको रेलवे स्टेशन जाना है तो हरी फाटक के से जो है कचरा घर से नीलगंगा से हनुमान नाका मंछामन होके जा सकता है, और या तो उसको बहुत पहले से ही जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से राइट टर्न लेकर के और पाइप फैक्ट्री से सीधे तीन बत्ती से टावर से फ्रीगंज ब्रिज होकर के और चामुंडा होते हुए रेलवे स्टेशन जाना उसके लिए उचित रहेगा। इसी प्रकार देवास बस स्टैंड के लिए भी यही मार्ग रहेगा। और अगर किसी को नलखेड़ा आगर की ओर जाना है तो वो शहर में ना आते हुए चंदेसरी से गरोड़ बाईपास

0: होकर के और बाहर बाहर आगरा के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी को बड़नगर की तरफ जाना है तो तपोभूमि से ही बड़नगर रोड फोर लेन होकर के जा सकता है, और यदि किसी को उन्हेल नागदा की तरफ जाना है तो वो बड़नगर बाईपास से चंदूखेड़ी और चंदूखेड़ी से धर्मबल्ला रेलवे ओवरब्रिज होते हुए और सिंहस्थ बाईपास से साढ़ू माता की बावड़ी होकर के जा सकते हैं, या कि फिर आगे इंगोरिया से जो उन्हेल रोड है उसका भी उपयोग वो कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। सवारी के दौरान लगभग 350 यातायात पुलिस यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैनात रहती है। तो जो आपको डायवर्सन मार्ग बताए जा रहे हैं उनका उपयोग करें। इसी प्रकार यदि कोई आगर से बड़नगर या उन्हेल नागदा की तरफ जाने के लिए तो चौपाल सागर से ही टर्न करके और साढ़ू माता की बावड़ी होते हुए चला जाए मंडी चौराहे से पंड्याखेड़ी, पंड्याखेड़ी से पाइप फैक्ट्री, पाइप फैक्ट्री से नागझिरी होकर के देवास की ओर जा सकते हैं और इंदौर की तरफ भी उसी रोड से निकले और इन्हीं मार्गों का उपयोग करें। इसी प्रकार यदि कोई मक्सी से आ रहा है और उसको अगर दर्शन के लिए जाना है तो वो भी जो है पंड्याखेड़ी, पंड्याखेड़ी से विक्रमनगर उद्योगपुरी होते हुए पाइप फैक्ट्री, पाइप फैक्ट्री से इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से महामृत्युंजय द्वार, आस्था, आस्था से हरी फाटक और फिर कर्कराज पार्किंग की तरफ जा सकता है। आप सभी को इस श्रावण मास की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने यातायात संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सुनी। बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन का सबसे बड़ा धार्मिक और जन आस्था से जुड़ा आयोजन है। सवारी के दौरान शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सवारी मार्ग से लेकर प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों तक पुलिस की तैनाती, भीड़ का प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है, पुलिस बल की तैनाती किस तरह की गई है और श्रद्धालुओं से पुलिस की क्या अपील है, इन तमाम विषयों पर हमने उज्जैन के पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा से विशेष बातचीत की है। आइए सुनते हैं सवारी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कहा।
2: जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल मंदिर में सावन के इस पवित्र माह में आप सभी का स्वागत है। सावन की सवारियों को देखते हुए उज्जैन पुलिस के करीब 1500 से ज्यादा जवान और अधिकारी लगातार आपकी सुरक्षा व्यवस्था में 24 घंटे तैनात हैं। इसके अतिरिक्त पूरे मार्ग पर करीब 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बैरिकेड्स के माध्यम से बड़े वाहनों का और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस सवारी से हम 3 जगह से ड्रोन के माध्यम से लगातार 24 आवर्स मॉनिटरिंग भी करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से समय समय पर जारी किए गए डायवर्जन प्लान्स, पार्किंग प्लान्स का पालन करें, सभी श्रद्धालुओं को दर्शन सुगमता से हो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, और अगर आप पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे तो आप सभी को निर्बाध तरीके से सहज और सुगम दर्शन होंगे। जय श्री महाकाल।
1: बाबा महाकाल और सावन मास की सवारी के दर्शन करने के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अभी आपने सुना पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा जी को। बाबा महाकाल की सवारी केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उज्जैन की पहचान भी है। सवारी में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में नगर निगम की भूमिका भी अहम रहती है। सवारी मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाएं और शहर की स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने क्या तैयारियां की है, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कौन कौन से विशेष इंतजाम किए गए हैं और सवारी के दौरान शहर को व्यवस्थित एवं स्वच्छ रखने के लिए निगम की क्या कार्य योजना है, इन्हीं तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर हमने उज्जैन के महापौर श्री मुकेश टटवाल जी से विशेष चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: जय श्री महाकाल। हमारे उज्जैन की पावन धरा पर बाबा महाकालेश्वर की सावन के माह में प्रत्येक सोमवार को बाबा भ्रमण पर निकलते हैं, बाबा की सवारी निकलती है। भादो माह में भी 2 सवारी निकलती है, एक को हम शाही सवारी, राशि सवारी कहते हैं। इस सवारी के माध्यम से बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से निकल करके मार्गों पर आते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैन ही नहीं पूरे देश से करोड़ों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और बाबा की झलक पाने के लिए आते हैं। इसको लेकर के हमारे प्रशासन द्वारा समस्त प्रकार की व्यवस्था की जाती है। इस बार हमने बाबा के दर्शन अच्छे से लोगों को मिले, बाबा के झलक लोग अच्छे से देख सके, बाबा का दर्शन कर सके, इसको लेकर के हमने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। उस पर हमारे जो जिला प्रशासन है वो कार्रवाई भी कर रहा है। विशेष करके हमारी नगर निगम की हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब बाबा की सवारी का समय होता है निकलने का, तो उससे कई दिनों पहले या उसके पहले भी हम सफाई की पूरी व्यवस्था करते हैं, और सवारी निकलने के तुरंत बाद भी हमारे नगर निगम के हमारे सफाई मित्र, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण बिल्कुल सफाई का कार्य दुरुस्त करते हैं। और ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ बाबा की सवारी के बाद में किसी प्रकार की कोई सफाई में कोई त्रुटि रह गई हो या पहले कोई त्रुटि रह गई हो। इस प्रकार की सारी सफाई का व्यवस्था का कार्य, आने वाले श्रद्धालुओं किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनको पीने के पानी की व्यवस्था, उनको लेकर के जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, चाहे मूत्रालय हो शौचालय हो, इनको लेकर के भी काफ़ी व्यवस्थाएँ की जाती है। चौराहों पर मार्गों को लेकर के भी हमारे नगर निगम के माध्यम से व्यवस्था की जाती है। पूरे सवारी मार्ग में हमारे नगर निगम के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। पूरे मार्ग को दूधिया लाइट के साथ सजाया हुआ है। नगर निगम के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी पार्षद साथी सवारी को लेकर के सभी लोग अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। जहाँ शिप्रा के तट पर बाबा का पूजन होता है, वहाँ की भी सारी व्यवस्थाएं नगर निगम के माध्यम से की जाती है। वहाँ पर हम स्थाई हमने एक मंच बनाया हुआ है, जहाँ आने वाले सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उनकी सारी व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा की जाती है। बाबा महाकालेश्वर की सवारी के पूर्व नगर निगम को एक चुनौती थी। हमने ढाबा रोड वाला मार्ग को सवारी के पूर्व हमने कम्प्लीट कर दिया है। हमारा जो हरसिद्धि घाटी वाला जो मार्ग है, जो माँ शिप्रा पर जाता है, उसका भी चौड़ीकरण हमने पूरा करके सवारी हमने उसी मार्ग से निकाली है। नए मार्ग बनने के कारण सवारी में लोगों को अधिक स्थान मिला है, अधिक जगह मिली है, और उस नए मार्ग का भी लाभ इस सवारी पर लोगों को मिल रहा है। मैं मुकेश टटवाल, उज्जैन महापौर, सवारी में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और बाबा महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, आप सबको स्वस्थ रखे, आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।
1: आज उज्जैन की धरती एक बार फिर भक्ति, आस्था और संस्कृति के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। श्रावण मास की दूसरी सवारी में राजाधिराज भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। आज की सवारी में अवंतिका नाथ अपने भक्तों को दो दिव्य स्वरूपों में दर्शन देंगे। रजत पालकी में भगवान श्री चंद्र मोलेश्वर विराजित होंगे, जबकि गजरथ पर भगवान मन महेश विराजित होंगे। मंदिर की सभा मंडपम में विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात शाम 4 बजे बाबा की पालकी भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेगी। इस बार सवारी को भव्य सांस्कृतिक और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। सवारी की विशेष थीम है सांस्कृतिक और जनजातीय दलों की प्रस्तुति। अलीराजपुर की प्रसिद्ध जनजातीय प्रस्तुति अपनी पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से सवारी मार्ग पर श्रद्धालुओं को मालवा और जनजातीय संस्कृति की मनोहारी झलक दिखलाएगी। वहीं रामघाट पर शिप्रा आरती और पूजन के दौरान स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। पिछली सवारी में 1100 वेद पाठी बटुकों ने वेद घोष के साथ रामघाट से बाबा महाकाल की सवारी का स्वागत किया था। दूसरी सवारी में लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। देश प्रदेश के कोने से पधारे सभी श्रद्धालुओं का आकाशवाणी उज्जैन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए बाबा महाकाल की इस दिव्य सवारी के साक्षी बने, आस्था के इस महासागर में श्रद्धा के साथ सहभागी बने और एक स्वर में कहें
4: बाबा महाकाल की द्वितीय सवारी पर केंद्रित इस विशेष चर्चा के बाद आइए हम भी शिवमय होते हैं इस सुंदर से शिव भजन के साथ।

इस शिवमय वातावरण में कांवड़ यात्रा भी सावन की भक्ति को एक नया रंग देती है। दूर दूर से शिव भक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं और अपने आराध्य को जल अर्पित करने की भावना के साथ उज्जैन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में गूंजता भोलेनाथ का नाम, भक्ति से भरे कदम और चेहरे पर दिखाई देता उत्साह, ये दृश्य सावन को जन जन का पर्व बना देता है। कांवड़ यात्राओं से लेकर महाकाल की सवारी तक, 84 महादेव के दर्शन से लेकर शिप्रा के पावन तट तक, सावन में उज्जैन सचमुच एक ऐसा नगर बन जाता है जहां हर दिशा से एक ही स्वर सुनाई देता है, हर हर महादेव।

श्रोताओं, इसी के साथ ये था हमारा कार्यक्रम उज्जैन दर्शन और आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 10:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। नमस्कार, मैं हूं आपकी सखी कीर्ति। सखियों, आज है सावन का दूसरा सोमवार। सावन का महीना तो हम सभी को बहुत ही प्रिय होता है। चारों ओर फैली हरियाली, रिमझिम बारिश की फुहारें और प्रकृति का मनमोहक सौंदर्य मन को एक अलग ही आनंद से भर देता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, सावन का महीना केवल प्रकृति की खूबसूरती का ही नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम, तप, धैर्य और समर्पण का भी पावन प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमवान और माता मैना के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने जंगलों में रहकर वर्षों तक तप किया, अनेक उपवास रखे और धूप, वर्षा, शीत, हर कठिनाई को प्रसन्न मन से सहन किया। मान्यता है कि श्रावण मास में माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से सावन का महीना शिव पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है और आज भी इसी कारण अविवाहित कन्याएं मन चाहे जीवन साथी की कामना से और विवाहित महिलाएं अपने परिवार के सुख, सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। और सखियों, जब बात उज्जैन की पावन नगरी की हो तो सावन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ स्वयं बाबा महाकाल सावन के प्रत्येक सोमवार को अपनी शाही सवारी के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि अपने भक्तों को आशीर्वाद देने, उनके सुख समृद्धि का संदेश देने की अद्भुत परंपरा है। जब बाबा महाकाल अपनी शाही सवारी के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो पूरा उज्जैन हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। तो आइए इसी भक्ति और आस्था के भाव को महसूस करते हुए सुनते हैं भगवान शिव को समर्पित एक बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: सखियों, आज 10 अगस्त को मनाए जा रहे राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के अवसर पर हम जानेंगे कि बच्चों में कृमि संक्रमण क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली अखंड, जो कि कम्युनिटी आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं।
1: डॉक्टर वैशाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम महिला सभा में।
2: धन्यवाद करती जी।
1: डॉक्टर वैशाली, जब हम कृमि या पेट के कीड़ों की बात करते हैं तो कई लोग इसे सामान्य समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्या वास्तव में यह समस्या उतनी ही सामान्य है या इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं?
2: पेट के कीड़े या हेलमिंथियसिस केवल एक साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह बच्चों के विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। जब बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो वे बच्चों द्वारा खाए गए भोजन के आवश्यक तत्व जैसे आयरन, विटामिन और प्रोटीन को खुद सोख लेते हैं। लंबे समय तक नजरअंदाज करने पर काफी बीमारियां हो सकती है।

0: जैसे एनीमिया, कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट आना, शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से स्कूल में उनका कम प्रदर्शन, पेट की गंभीर जटिलताएं भी हो सकती है।
1: जी, अक्सर माता पिता कई बार यह समझ नहीं पाते कि बच्चे के पेट में कृमि हो सकते हैं। ऐसे कौन से शुरुआती संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
0: बच्चों में कृमि संक्रमण के शुरुआती संकेत दिख सकते हैं, जिसे माता पिता विशेष रूप से ध्यान दें, जैसे गुदा के आसपास विशेष रूप से रात में तेज खुजली होना, पेट में बार बार दर्द होना, मरोड़ उठना और पेट का फूला हुआ महसूस होना। मल में जीवित या मृत कीड़े भी दिखाई दे सकते हैं। बच्चों को या तो अचानक बहुत अधिक भूख लगती है या बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। वजन का लगातार कम होना, उम्र के हिसाब से उनका वजन न बढ़ना, रात में सोते समय दांत किटकिटाना या मुंह से लार टपकना, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, रात में ठीक से नींद ना आना और लगातार थकान महसूस होना।
1: जी डॉक्टर वैशाली, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। जैसे कि राष्ट्रीय कृमि निवारण अभियान के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दवा दी जाती है, तो कई अभिभावकों के मन में इसे लेकर डर या भ्रम रहता है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी?
0: राष्ट्रीय कृमि निवारण अभियान के तहत दी जाने वाली एल्बेंडाजोल की दवा पूरी तरह से सुरक्षित, प्रमाणित और मुफ्त है। यह दवा WHO और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुशंसित है। 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली पीसकर या सिरप के रूप में दी जाती है, जबकि 2 से 19 साल के बच्चों को एक पूरी गोली चबाकर खानी होती है। यदि किसी बच्चे के पेट में कीड़ों की संख्या बहुत अधिक है, तो दवा खाने के बाद कीड़ों के बढ़ने से हल्का पेट दर्द होता है, जी मचलाता है या उल्टी भी हो सकती है। यह इस बात का संकेत है कि दवा काम कर रही है। यह स्थिति कुछ घंटों की ही होती है और इसके बाद यह स्वतः ही ठीक हो जाती है।
1: जी डॉक्टर वैशाली, जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए घर की महिलाएं किन छोटी-छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें?
0: मानसून के दौरान नमी और कीचड़ के कारण कृमि के अंडे मिट्टी और पानी में तेजी से फैलते हैं। घर की महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चों के हाथ खाने से पहले, बाहर से खेल कर आने के बाद और शौचालय के उपयोग करने के बाद साबुन से कम 20 सेकंड अच्छी तरह से धुलवाएं। बच्चों के नाखून को नियमित रूप से काटें और साफ रखें, क्योंकि नाखूनों की गंदगी में ही कीड़ों के अंडे छिपे होते हैं। बच्चों को हमेशा उबला हुआ और अच्छे से फिल्टर किया हुआ पानी ही पिलाएं। कच्चे फल और हरी सब्जियों को नल के बहते पानी में बहुत अच्छे तरीके से धोएं और पकाएं और खाने को दें। बच्चों को हमेशा ढककर रखा हुआ भोजन दें। बासी या खुला हुआ स्ट्रीट फूड बिल्कुल न दें। बच्चों को गीली मिट्टी या पानी में नंगे पैर न खेलने दें। बाहर जाते समय हमेशा जूते या चप्पल पहनाएं।
1: जी, अगर हाइजीन का ध्यान रखा जाए तो बच्चों और बड़ों दोनों को ही संक्रमण से बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर वैशाली, एक कम्युनिटी आयुष मेडिकल ऑफिसर के रूप में जब आप लोगों के बीच जाती हैं, तो कृमि निवारण को लेकर सबसे आम भ्रांतियां या सवाल कौन से सुनने को मिलते हैं?
0: एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जब क्षेत्र में काम करते हैं तो अनेक भ्रांतियां सुनने को मिलती हैं, जैसे बच्चा केवल मीठा या गुड़ या चॉकलेट ही खाता है इसलिए उसके पेट में कीड़े हुए हैं। मीठा खाने से सीधे कीड़े नहीं बनते, कीड़े दूषित मिट्टी, अस्वच्छ पानी, गंदे हाथों से और दूषित भोजन के जरिए पेट में पहुंचते हैं। जैसे दवा देने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, उसे नुकसान होगा। यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और केवल पेट के नुकसानदायक कीड़ों को ही मारती है। जैसे अगर बच्चा मोटा और स्वस्थ दिखाई दे रहा है तो उसे दवा की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं लेकिन शुरुआती दौर में बाहरी लक्षण स्पष्ट नहीं होते, इसलिए साल में 2 बार सभी बच्चों को दवा देना जरूरी है।
1: डॉक्टर वैशाली, आयुष जीवन शैली स्वस्थ पाचन और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर जोर देती है। क्या कुछ ऐसी दैनिक आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम बच्चों को अधिक स्वस्थ रख सकते हैं?
0: आयुर्वेद और आयुष जीवन शैली के अनुसार मजबूत पाचक अग्नि शरीर को बीमारियों से और संक्रमण से बचाती है। हमारे घर में भी एक छोटा औषधालय है जिसे हम रसोई घर कहते हैं। भोजन पकाते समय हम अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, हींग और काली मिर्च का उचित प्रयोग करें। यह पेट के कीड़ों को पनपने से रोकता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है।

0: सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। बासी, बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक ठंडा और स्वास्थ्यकर भोजन देने से बचें, क्योंकि यह पाचन को धीमा करता है और कीड़ों को पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। नियमित रूप से तुलसी के पत्ते, नीम के कोमल पत्ते या चुटकी भर वायुविडंग का सेवन भी प्राकृतिक रूप से कृमि नाशक का काम करता है।
1: जी, अंत में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के अवसर पर आप हमारे महिला सभा कार्यक्रम के सभी श्रोता बहनों और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: प्रिय बहनों और अभिभावकों, बच्चे हमारे परिवार और देश का उज्जवल भविष्य है। एक स्वस्थ बच्चा ही बेहतर पढ़ाई कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। पेट के कीड़ों को एक मामूली समस्या मानकर नजरअंदाज ना करें। यदि हर माँ अपने घर में 3 नियम लागू कर दे तो बच्चों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। पहला, हैंड हाइजीन। शौचालय से आने के बाद भोजन करने से पूर्व बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाना अनिवार्य करें। दूसरा, फूड एवं वाटर सेफ्टी। हमेशा पानी को उबाल कर या साफ करके पिलाएं। सब्जियां फल को अच्छी तरह से धोकर दे। तीसरा, फूड वेयर हैबिट। घर से बाहर निकलते ही बच्चों को चप्पल या जूते पहनने की आदत डालें। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को अल्बेंडाजॉल की दवा जरूर पिलवाएं। अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाएं, क्योंकि स्वच्छता और सही पोषण ही कृमि मुक्ति का आधार है। आइए मिलकर अपने बच्चों को कृमि मुक्त और स्वस्थ बनाएं।
1: जी डॉक्टर वैशाली, आपने बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, महिला सभा का सफर आगे भी जारी रहेगा इस प्यारे से गीत के बाद।

सखियों, अक्सर जब हम पर्यावरण संरक्षण या स्वच्छ ऊर्जा की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है और इस बदलाव की सबसे बड़ी भागीदार होती हैं घर की महिलाएं। हमारी रसोई से निकलने वाले सब्जियों, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन और अन्य जैविक कचरा यदि अलग अलग एकत्र किया जाए तो उससे बायोगैस और जैविक खाद बनाई जा सकती है। इससे कचरा तो कम होता ही है, पर्यावरण भी स्वच्छ होता है और प्राकृतिक संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होता है। अब देखिए, रसोई में ईंधन की बचत भी एक तरह से पर्यावरण की सेवा ही है। प्रेशर कुकर का उपयोग करना, गैस को आवश्यकता के अनुसार ही चलाना, बर्तन का आकार आंच के अनुसार चुनना और भोजन की पहले से योजना बनाकर पकाना, ये छोटी छोटी आदतें गैस की बचत तो करती ही हैं और ऊर्जा संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बायोगैस, जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़कर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आय भी बढ़ा रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि एक महिला चाहे तो अपने घर के साथ साथ समाज और पर्यावरण में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो आइए, इस विश्व जैव ईंधन दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, जैविक कचरे का सही प्रबंधन करने और ऊर्जा की बचत जैसी छोटी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जब एक घर से एक छोटा सा कदम उठेगा तभी हमारा देश स्वच्छ, हरित और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो सखियों, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

सखियों, बरसात का मौसम केवल धरती को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आता है। इस सावन एक छोटा सा संकल्प लीजिए, अपने घर, आंगन, छत या बालकनी में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाइए और उसकी देखभाल पूरे प्रेम और जिम्मेदारी के साथ कीजिए। याद रखिए, एक पौधा केवल हरियाली ही नहीं देता बल्कि शुद्ध हवा, ठंडी छांव और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार भी बनता है। तो आइए इस सावन हरियाली को केवल देखे ही नहीं बल्कि उसे अपने हाथों से बढ़ाने का संकल्प भी लें। सखियों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चटपटी, मजेदार और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

0: एप्लीकेशन पर। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने को है, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी, संपादन नेहा शर्मा और मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उजाले उनकी यादों के।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले शिव शंभु इस एल्बम का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, नवाब आरजू के बोल, नटराज दस्तीदार का संगीत है।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग।
1: इश्क की ये शम्मा अपने दिलों।
0: मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाजें, शब्दकार सुदर्शन फाकिर और संगीत है भूपिंदर सिंह का। एल्बम ये प्यार का मौसम है।
2: इश्क का मतलब लोग ना समझे ये

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: तलत अजीज की आवाज है, शब्दकार तस्लीम फाजिल, संगीत मोहम्मद अशरफ का, एल्बम ये मिलन ख्वाब सा।

रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ गाना, उस्ताद अमजद अली खां का संगीत, एल्बम वादा।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुन जरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: श्याम अनुरागी के बोल, चार्ल्स श्रीनिवासन का संगीत, विस्पी की आवाज, एल्बम तेरी मर्जी।

0: ये आवाजें थी साबरी ब्रदर्स की, शब्दकार निदा फाजली, संगीत आदेश श्रीवास्तव का, एल्बम तरकीब।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अगला गाना आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल, इस एल्बम का गाना, आवाज, गीत और संगीत शान का।

उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में पिया बसंती इस एल्बम का गाना, संगीत है संदेश शांडिल्य का।

रंग तिरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सपना अवस्थी की आवाज में परदेसिया एल्बम का ये गाना। गीत और संगीत है पी के मिश्रा का।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाजें, मदन पाल के बोल, जय विजय का संगीत। एल्बम का नाम है मोहब्बत हो गई।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको परवरिश फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत एसडी बर्मन का।
1: बाजू।

अंतराल का समय पूरा हो चुका, अब आपके लिए लेकर आए हैं पड़ोसन फिल्म का गाना, किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है आरडी पर मन का।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पैर है ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना आपने सुना। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में जो गाने आप सुन रहे हैं, अगर उन पर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के कार्यक्रम में या तो पुरुष आवाजों में जो युगल गीत हैं वो, या तीन पुरुष आवाजों में जो गाने हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। बैजू बावरा फिल्म का गाना उस्ताद अमीर खान और पंडित डी वी पलुस्कर की आवाजों में। लीजिए अब सुनिए शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

आज गावत मन सारे मापा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अरे सुनो आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
6: ये है मासूम फिल्म का गाना, भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में, गुलजार के बोल, संगीत आरडी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये समझौता फिल्म का गाना मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम शोले।

सागर फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल संगीत है आरडी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आदमी और इंसान, ये फिल्म का नाम, महेंद्र कपूर, बलबीर जोगिंदर और साथियों की आवाजें, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत है रवि का।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आज की इबारत आपको पढ़ के सुना दें। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने पोस्ट की, बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है, और जिन श्रोताओं ने फेसबुक पर जाकर इस इबारत को नहीं पढ़ा है तो उनके लिए हम पढ़ के सुना देते हैं। सजना संवरना स्त्रियों का अधिकार है, खास तौर पर जब मौसम सुहाने हो तो सजना और भी मन को भाता है। बिंदिया, काजल, कजरा, गजरा, पायल, मेहंदी, चुनर, ये सब श्रृंगार के साधन हैं। हरे कांच की चूड़ियां बड़ी सुहावनी लगती है, पर इन्हें किसी का दिल समझकर आहिस्ता आहिस्ता हाथों में डालिए। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सजाइए, जब बिंदिया चमकेगी आंखों में कयामत ढाने वाला काजल होगा। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचाकर धानी चुनरी पहन जब जाओगी तो साजन कहेंगे ही ना, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। क्या पता ये भी कह दें, तेरी बिंदिया रे के आए हाय तेरी बिंदिया रे। तो सज धज कर आइएगा जरूर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर में। ये आज की इबारत है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ी और बहुत सारी बातें उन्होंने श्रृंगार के बारे में लिख करके भेजी है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि वाह क्या खूबसूरत इबारत है, आज सावन की दूसरी सोमवारी स्त्रियां सोलह श्रृंगार, हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी, आलता से सजे हाथ पांव, हाथ में फूलों की डलिया, जल भरा कलश लेकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में जा रही है। भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरी का खूब श्रृंगार किया गया है, आज उसी श्रृंगार की बात सुरीला सफर में। एक साथी हमारी लिख रही है कि भारतीय संस्कृति में नारी का श्रृंगार केवल बाहरी रूप को सजाना नहीं है, ये संस्कार सौभाग्य, पारिवारिक परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। सोलह श्रृंगार स्त्री के जीवन के अलग अलग चरणों और उसकी पहचान को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव भाग्य का प्रतीक, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, पति की लंबी उम्र की कामना और वैवाहिक बंधन को दिखाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, चूड़ियां, बिछियां और पायल शरीर के एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर असर डालते हैं, ये शरीर में ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति या लक्ष्मी का रूप माना जाता है, श्रृंगार उसी दिव्य सम्मान को प्रकट करता है। सजना संवरना स्त्री के मन में खुशी और सकारात्मकता लाता है, परिवार और समाज के उत्सवों में उल्लास और जुड़ाव का माध्यम बनता है। जी, आपने स्त्री के श्रृंगार की बातें की, और जब श्रृंगार की बात आती है तो अक्सर श्रृंगार को स्त्रियों से ही जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, पुरुष भी तो अपना श्रृंगार कर सकते हैं, वो भी अपने आप को सजा संवार सकते हैं, बालों को अच्छी तरह से उन्हें कटवा करके और जिस तरीके से भी आपको पसंद हो वो स्टाइल, और चेहरे पर भी आजकल तो पुरुष भी जाते हैं पार्लर में और वो भी अपना श्रृंगार करवाते हैं। तो श्रृंगार सभी का अधिकार है, लेकिन हाँ, स्त्रियों से इसे खास तौर पर जोड़ करके देखा जाता है। तो और भी हम इस विषय पर बातें करेंगे और कुछ सवाल भी हैं आज हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सजने संवरने का, सजना के लिए जो गीत है वो आपको सुनवा देते हैं। सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

सजने संवरने की प्रक्रिया या सजने संवरने का जो जज्बा है उसको कितनी खूबसूरती के साथ इस गाने में बयान किया गया। गीत और संगीत ये रविंद्र जैन का है तो उनकी तारीफ तो हमें जरूर करनी होगी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि पुरुष भी श्रृंगार करने से पीछे नहीं है, बालों में स्टाइलिश जेल, चेहरे पर हर तरह के मेकअप, मसाज, फेशियल, अच्छे कपड़े, और क्यों ना रहें, जब नायिका सजेगी तो नायक को भी सजा रहना चाहिए। असल में तो नायक ही नायिका को सजाता संवारता है, इसकी नायिका सुंदर दिखे और नायिका भी इसलिए सुंदर होना चाहती कि नायक उसकी खूब खूबसूरती का व्याख्यान करे। ये प्यार और समर्पण का एक रूप है। जी हाँ, सजना संवरना ये सभी का अधिकार है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि आज आपकी जो इबारत है, मेरी धर्म पत्नी पर कल ही सार्थक हुई जब हम बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के बाद श्रीनगर कश्मीर में डल लेक में शिकारे में हम बैठे थे, जहां धर्म पत्नी ने कश्मीरी सलवार कुर्ता पहना था, बिंदिया, काजल, पायल, कश्मीरी चुनरी आदि साधनों का श्रृंगार किया हुआ था। श्रीनगर का शाम का मौसम तो सुहाना था ही, मैं शिकारे में ये गीत भी गा रहा था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। वाह क्या बात है, कितना सुनहरा वो वातावरण रहा होगा। और आपने इसको पूरी एकदम डिटेल जानकारी आपने दी है, धन्यवाद आपका। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज हमारे बीच परिपूर्णता के लिए श्रृंगार रस में सजे गीतों की माला होगी। जिस प्रकार सावन के आने से प्रकृति धीरे धीरे अपने को संवारने लगती है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पूरे शबाब पर है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सभी बड़े खुश नजर आते हैं, नारी मन भी इन्हीं सावन के पूरे सोलह श्रृंगार में रची बसी होती है। और कुछ गीतों का इन्होंने जिक्र किया है। एक साथी हमारी लिख रही है कि सजना संवरना हमें हमेशा से अच्छा लगता है, शायद इसलिए नहीं कि कोई हमें देखे, बल्कि इसलिए कि आईने में खुद को देखकर मन थोड़ा मुस्कुरा दे। सावन आए, हरी चूड़ियां खन के माथे पर बिंदिया सजे और बालों में गजरा महके, तो लगता है जैसे छोटी छोटी खुशियों ने आकर हमें फिर से थोड़ा सा संवार दिया हो। जी हाँ, ये बड़ी मुद्दे की बात है कि सजना संवरना ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम आईने में देखते हैं, अपने आप को खूबसूरत देखते हैं, तो मन वाकई में प्रफुल्लित हो जाता है और आत्मविश्वास भी मन के अंदर आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मौसम सुहाना हो तो सजना भी अच्छा लगता है। जुदाई फिल्म का ये गाना है, और हाँ, ये जो सौदागर फिल्म का ये गाना है, पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया। आपके जवाब हम तक पहुंच गए, उसके लिए धन्यवाद। और अब जुदाई फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया ये आप हमें बता सकते हैं?

में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है, क्या महत्व है इसका? हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की चुनर और बाकी भी जो श्रृंगार के साधन हो उसमें ज्यादातर जो है हरे रंग का चुनाव किया जाता है, तो इस बारे में आप हमें बताइए। और जिन लड़कियों की अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल से मायके आई है, तो वहां से ससुराल से भी कुछ उनके लिए तोहफे भेजे जाते हैं, उसमें भी हरी रंग की चूड़ियों का चुनाव खास तौर पर किया जाता है, तो इस बारे में भी आप हमें बताइए। चलिए अब हरे कांच की चूड़ियां, इस फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीतकार और संगीतकार कौन है ये आप हमें बताइए। बिस्वजीत और नैना साहू पर फिल्माया गया ये गाना।

हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना सुना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आप श्रृंगार की बातें कर रही हैं, कभी हमारी पत्नी साथ थी तो हमें इस सावन में मेघों बिजलियों बरसात को देखते थकते नहीं थे, उसके साथ भीग भी जाते थे। आज ये हरियाला सावन हमें घर में बंद रहने को मजबूर कर रहा है क्योंकि वो चूड़ी बिंदी वाली नहीं रही। क्या कहें इस बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथी की ये बात है कि जब पति शाम को थका हुआ घर पर आता है तो घर पर पत्नी इंतजार करती है, अगर पत्नी सजी संवरी मिलती है तो अच्छा लगता है, सारी थकावट और परेशानी समाप्त हो जाती है और फिर शुरू होती है श्रीमती जी की फरमाइश, जो कि उनका हक है। एक साथी लिख रहे हैं कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति के सौंदर्य, सुख समृद्धि और भगवान शिव के प्रति अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। और एक साथी ये लिख रही है कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति में प्रेम, सौभाग्य और भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है, बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरा रंग जीवन में नई शुरुआत, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से भगवान शिव को प्राकृतिक वातावरण और बेलपत्र प्रिय है, हरा रंग प्रकृति का रूप है, इसलिए इसे पहनकर भक्त शिव के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं, इसलिए नारियां हरे रंग से श्रृंगार करके भोलेनाथ की पूजा करती है। धन्यवाद आपका। और हाँ, एक साथी ने यह बात लिखी कि क्षेत्रवार सजने सवरने की प्रथा अलग अलग है, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के कुछ अलग रिवाज होते हैं। सजी सवरी जो स्त्रियाँ हैं वो अलग अलग उनका जो रूप होता है वो दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि माथे की बिंदिया में सपनों की चमक, आंखों के काजल में अनकहे जज्बात है, चूड़ियों की खनक में बसी है यादें, पायल के रुंझुन में दिल की सौगात है, नारी जब स्नेह और मुस्कान से श्रृंगार करती है तो केवल उसका रूप नहीं संवरता, उसके साथ घर, आंगन, रिश्ते और कई बिखरे हुए एहसास भी खिल उठते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन हरेक के लिए मनभावन होता है, धरती साथ श्रृंगार करके हरी भरी बन जाती है, उसी तरह महिलाएं हरी भरी साड़ी और हरे कांच की चूड़ियां पहनकर सजधज कर उनके मुख पर निखार आता है, उसी तरह विविध भारती भी प्रसारण तरंगों पर निखार आ जाता है और गीत बज उठता है, चांद जैसे आकाशवाणी के मुखड़े पर

विद भारती जैसा सितारा नहीं भूलेगा, मेरी जान नहीं भूलेगा। जी आप मत भूलिए, याद रखिए विविध भारती का ये कार्यक्रम सुनते रहिए। विविध भारती के और अन्य कार्यक्रम भी है, उन्हें भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल यहाँ करते चलते हैं कि जो नई नई बेटियों की शादियाँ हुई हैं और वो अपने ससुराल से मायके आई हैं, तो ससुराल से कुछ भेंट उनके लिए भेजी जाती, उसे क्या कहा जाता है और उसमें खास तौर पर क्या होता है जो उन बेटियों के लिए, नई शादी जिनकी हुई है, जिनका पहला साल है, ये पहला सावन है, तो उनके लिए भेजा जाता है, तो इस बारे में आपके यहाँ क्या रिवाज है और क्या भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस बारे में आप हमें बताइए। चलिए गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, नीरज के बोल है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

गैम्बलर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत एसडी परमन का। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी प्यारी सी इबारत लेकर आप आई हैं और आपने हमें सज धज के विविध भारती के इस प्रोग्राम में बुलाया है, वो भी इतने प्यार से, और अगर हम सज धज के ना आए तो क्या करेंगे आप, शामिल नहीं करेंगे हमें? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ज़्यादा सजना तो हमें पसंद नहीं है, पर चूड़ी बिंदी बहुत प्रिय है। बिंदी तो हमने लगाना आप छोड़ दी है क्योंकि अब हम बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ सजना संवरना ये हर स्त्री का अधिकार है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। धन्यवाद आपका। और हमने आपसे सवाल किया था कि जिन बेटियों की अभी शादी हुई है उनके लिए क्या भेजा जाता है ससुराल की तरफ से, तो हमारे एक साथी ने लिखी है कि हम लोगों के यहाँ उसे सावनी कहते हैं, जिसमें राखी रुमाल कपड़े श्रृंगार सामग्री और मिठाइयाँ भेजी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि श्रावण में समूची धरती ही वर्षा ऋतु के परिणाम से अपने सब धर्मी गुण से हरी भरी चादर ही ओढ़ लिया करती है, फिर ऐसे में हरे रंग का प्रयोग कोई क्यों ना करे। और एक साथी ने लिखा है कि साल होने पर जो तोहफा भेजा जाता है उसे शगुन कहा जाता है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि हरा रंग सृजन का प्रतीक है, सावन में धरती और पर्जन्य का मिलने से नव चैतन्य, हरी फसल पेड़ पौधे फूलों फलों का सृजन हो जाता है, इसलिए व्रत वैकल्य में भी हरा रंग शुभ माना जाता है और हरे रंग का श्रृंगार किया जाता है। जी धन्यवाद आपका। चलिए एक सवाल तो हमने आपसे किया था और कि क्या

अरुण गोविल और जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे साथी की बात है कि जिस कपड़े पर तिरछी लाइंस बनी हो उसे लहरिया कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि राजस्थान में नवविवाहिता बहू के लिए लहरिया भेजा जाता है, वह मुख्यतः पचरंगी या रानी कलर में होता है और उसके साथ श्रृंगार का सामान, लहरिए का चूड़ा और घेवर मुख्य रूप से भेजे जाते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि पति पत्नी का जो आपस का प्यार होता है वही सच्चा श्रृंगार होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ इसे सावनी कहते हैं और इसमें न्यूली मैरिड जो लड़कियों के लिए नई साड़ी, चूड़ियाँ और पूरा सुहाग का सामान, खिलौने, मिठाइयाँ और छोटे भाई बहनों के लिए भी कपड़े लाते हैं और मेरी बेटी के लिए भी सावनी अभी आएगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि ससुराल से आने वाला उपहार जो हमारे यहाँ आता है उसे हरियाली कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि पहले सावन पर दुल्हन को, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में, भेजे जाने वाले सामान को हमारे यहाँ संधारा कहते हैं। इसमें एक खास मिठाई, फिरनी और घेवर, तीन रंगों से बना झूले के लिए रस्सा, कपड़े, बर्तन और एक दो आभूषण भेजे जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि शादी के बाद पहले सावन या हरियाली तीज पर सिंजारा, नवविवाहिता स्त्री के मायके से जो उपहार भेजा जाता है उसे कहा जाता है, उसे सिंधारा हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जी हाँ, लहरिया के बारे में हमने बात की, खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसे पहना जाता है और विभिन्न रंगों में ये होता है और बहुत सारे रंगों की लाइनें, आड़ी तिरछी लाइनें होती है और इस तरह से वो लहरिया सावन के महीने में मुख्य रूप से पहना जाता है और बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब हम अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं, दो रास्ते फिल्म का गाना, लता जी की आवाज से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

दो रास्ते फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि मौसम कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, इस सवाल सदियों से सभी के मन में रहता है कि स्त्रियां इतना क्यों सजती है। घर में कितना भी काम धाम हो, वे सजने के लिए वक्त निकाल ही लेती है। स्त्रियों के अधिकार के अलावा एक मुख्य तथ्य यह है कि सजने से स्त्रियों में आत्मविश्वास की एक अलग अनुभूति प्रकट होती है। सलीके से लगाया गया काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी में स्त्रियों का सौंदर्य निखर कर सामने आता है। सादगी के सौंदर्य में नहाई हुई किसी स्त्री को देखिए, वे नेह में नत और विनीत लगती है। किसी भी मौसम में नेह की तरह बरसती हुई स्नेह और संवेदना के रस में सिंचित नारी का असल सौंदर्य यही है। जी हाँ, सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। ये सवाल हम आपसे करने ही जा रहे थे। सजना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं ये हमें बताइएगा। चलिए अगला गाना परिणीता फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज और अरुण कुमार मुखर्जी का इसमें संगीत है। गीत किसका है ये आप हमें बताइएगा। कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बता सकते हैं।

भरत व्यास का लिखा हुआ ये गाना है और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज तो गानों की हरियाली ही हरियाली है जी, एक के बाद एक अपने लिस्ट तो सुपर हिट है, बहुत आभार विविध भारती का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हर एक स्त्रियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, बिंदिया काजल कजरा गजरा पायल मेहंदी चुनर हरी हरी चूड़ियां ये सब पहनकर अपने आप खुश होती है और सोचती है साजन भी जरूर कहेंगे कि तेरी बिंदिया रे और गजरा लगा के गजरा सजा के ये वो कहेंगे जी। धन्यवाद आपका। चलिए अब मधु फिल्म का गाना हम आपको, देखिए हमने सोचा था कि कौन सी फिल्म का गाना है ये आपसे पूछेंगे लेकिन हमने ही बता दिया। मधु फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लायलपुरी के बोल है, संगीत किसका है आप बताइए।

एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया धानी चुनर मोरी हाय रे मधु फिल्म का ये गाना एक कालजयी गीत है। नक्श लायलपुरी द्वारा रचित इस फिल्म में चुनरी के माध्यम से यौवन और प्रेम की चंचलता को दर्शाया गया है। रोशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ इस क्लासिक को और भी मनमोहक बना देती है। एक साथी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में श्रावण महीने से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। पहले के ज़माने में स्त्रियाँ 9 गज की साड़ियाँ पहनती थी, बाद में वो 5 गज पर आ गई है। सज धज कर त्यौहार में हर्षोल्लास के साथ वो शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक फूल चार कांटे इस फिल्म का गाना है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताएं।

अभिमान फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसमें बहुत खूबसूरत सा जो ये संगीत है ये SD बर्मन का संगीत है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे, हर बात का आपने जवाब दिया और खूबसूरत आपके कमेंट्स थे और आपने ये भी लिखा कि गीत आपको पसंद आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात होगी। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए मंजू द्विवेदी को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत और कार्यक्रम का पहला नगमा, ये रहा। ये गीत हमने लिया है देशद्रोही फिल्म से, जुबीन और श्वेता पंडित ने गाया है। कमाल का ये गीत है और धुन है निखिल की।

अब आप सुनिए आर्टिकल 15 फिल्म का ये गीत, यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा ने इसे गाया है, पीयूष शंकर ने धुन तैयार की है और बोल हैं रश्मि विराग के।

0: आर्टिकल 15 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत का गलत नक्शा देखने के बाद आपत्ति जताने के लिए मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान लवलीना की सराहना की और कहा कि ये एक सोच समझकर की गई प्रतिक्रिया थी, खासकर ऐसे समय में जब वो अपनी जीत का जश्न मनाने बाहर निकली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके इस कदम को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज जबलपुर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर प्रसिद्ध संस्कार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा का जल और पौधा लेकर करीब 30 किलोमीटर की यात्रा कर कैलाश धाम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। ग्वारी घाट से शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष के साथ कैलाश धाम पहुंचकर नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। उज्जैन में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर आज भस्म आरती में भगवान महाकाल का राजा स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया गया। तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकाल का अभिषेक और पूजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती के दर्शन किए। वहीं आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की श्रावण मास की दूसरी सवारी निकलेगी। भगवान चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगर भ्रमण करेंगे और शाम 5 बजे रामघाट पहुंचकर क्षिप्रा नदी के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शेर दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास का विस्तार हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए कहा कि सामुदायिक भागीदारी के साथ वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता इस विशिष्ट प्रजाति को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। आलेख के अनुसार वर्ष 2015 में 523 रही एशियाई शेरों की संख्या 2025 में बढ़कर 891 हो गई है। वहीं शेरों का पर्यावास करीब 30,000 से बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। राजगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पारना के पास झिरी नाले में तेज बहाव के बीच एक वाहन बह गया। प्रारंभिक जानकारी के

0: अनुसार वाहन में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 3 के सुरक्षित निकलने और 8 के लापता होने की सूचना है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर तलाश अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने लोगों से जलमग्न रास्तों और नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पाडुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, गुना, शिवपुरी और शिवपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली द्वारा भारतीय हथकरघा एवं साड़ी की पारंपरिक विरासत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साड़ी ड्रैपिंग एवं हैंडलूम डेमोन्स्ट्रेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन आज शाम 4 बजे से मध्य प्रदेश भवन के ऑडिटोरियम में होगा। विक्टोरिया जिला अस्पताल जबलपुर में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष निःशुल्क जाँच और उपचार शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम 2026 में अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने जा रहे हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
5: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कही मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
2: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
6: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सब का राइट है, सत्याग्रह हम सब की ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
2: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
7: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
8: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे

0: वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि

0: एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का जो पहला गाना है तूफान और दिया। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, संगीत है वसंत देसाई का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये मीरा भजन आपने सुना, संगीत वसंत देसाई का, फिल्म का नाम तूफान और दिया। और अब श्रीमती 420 इस फिल्म का गाना आपको हम सुनवा रहे हैं। गीता दत्त की आवाज़, जानिसार अख्तर के बोल, संगीत है ओपी नैयर का।

मुझको ये भी बता।

0: बड़े रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तू मुस्कुराए जा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है।
2: कभी तो नजर मिला।
1: एक आवाज जिसके साथ जुड़ी हैं

0: जरा।
1: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अब जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं ये लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शतरंज फिल्म का गाना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

रंगीन रातें, ये फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। केदार शर्मा के बोल, संगीत है रोशन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजहट फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

लीजिए अब सुनिए सीआईडी फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, पॉकेट मार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अब आपको सुनवाते हैं। पटरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार डगमें कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल है?
1: देखिए, हम किसी से जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल। और ये हालचाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
2: बहुत जरूरी बात है। और आजकल ऐसे हो रहा है मंजू जी,
1: हाँ?
2: ये बात जो है ना, ये युवा के ना पीछे भी छूटता जा रहा है।
1: अच्छा,
2: लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए, इतने झुके रहते हैं कि वे हालचाल पूछना भी भूल रहे हैं।
1: बहुत गलत बात है ना।
2: तो हालचाल पूछते रहना चाहिए, फिर आपस में हो या फिर बुजुर्गों का हो।
1: हाँ बिल्कुल, सभी का हालचाल पूछ लेने से क्या होता है कि सामने वाले के मन में भी एक बात आ जाती कि हाँ, मेरी परवाह करने वाला कोई है। और जब ये बात बुजुर्गों के संदर्भ में आती है तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप उनके बारे में जानते रहिए, उनके हालचाल के बारे में जानते रहिए, और अगर उन्हें कोई समस्या है तो बड़े प्यार से उसे सुलझाइए, क्योंकि आखिर वे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, यानी हमारे घर की नींव हैं। और अगर हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे या उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो ये बहुत गलत बात होगी।
2: और ऐसा है ना, हर किसी को इस अवस्था से गुजरना है।
1: बिल्कुल,
2: अगर हम बुजुर्गों की परवाह करेंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देख के वो भी बुजुर्गों की परवाह करना सीखेंगे।
1: हाँ।
2: अगर हम उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो यही हमारे साथ भी हो सकता है।
1: आज सीढ़ी के जिस पायदान पर बुजुर्ग खड़े हैं, कल हम भी उसी पायदान पर खड़े होंगे। तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए आज हमने विषय चुना है कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। तो ये हट वाली जो बात है, तो ऐसा नहीं कि सभी में होती है, लेकिन कई कारण होते हैं इसके पीछे
2: वो हटेले हो जाते हैं।
1: शारीरिक अवस्था भी होती है और बाहर के भी बहुत सारे कारण होते हैं। आसपास का वातावरण हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती, कोई भी कारण हो सकता है। तो उन कारणों का आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा
2: कथासुधा, जिसका सारे श्रोतागण, सारी सखियां इंतजार कर रहे हैं, 73 भाग 1, इसे हम सुनेंगे। और व्यंजन,
1: हाँ ये तो एक बहुत ही एक मुख्य हमारा जो कहते हैं सेक्शन हो सकता है या होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि खाना पीना सभी को पसंद होता है। तो आज कौन से व्यंजन हम खिलाएंगे?
2: पश्चिम बंगाल के व्यंजन में बसंती पुलाव और संदेश, ये इसे सौंदेश भी कहते हैं।
1: जी हाँ। तो हमारा सौंदेश ये है कि आप सुनते रहिए विविध भारती सखी सहेली कार्यक्रम, सुनिए। और ये जो व्यंजन हम थोड़ी देर में बनाने वाले हैं या इसके

0: रेसिपी जो बनाने वाले हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल सजग रहिएगा कि किस, देखिए एक व्यंजन होता है लेकिन रेसिपी जो है बहुत अलग तरह से अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से बनाई जाती है, उसका स्वाद भी जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा अलग होता
1: बदलता चला जाता है। हाँ। और तो, उसकी जो उसकी मिट्टी की खुशबू है ना, हाँ, वो उस व्यंजन में नजर आती है ना।
0: लेकिन विविध भारती एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर हर क्षेत्र के श्रोता इसे सुनते हैं और अपने अपने क्षेत्र के बारे में वो बताते हैं कि वहाँ इसे किस तरह से बनाया जाता है, कब खाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसकी सुगंध कैसी होती है।
1: तो हम श्रोताओं से कहेंगे आप भी लिखकर भेजिए, हाँ, कि आपने ये बसंती पुलाव या सौंदेश बनाया है या नहीं बनाया है,
0: हाँ,
1: और अगर नहीं बनाया तो बनाने वाले हैं क्या, या फिर जिनके घर में बनता है तो वो लिखकर भेजिए। साथ ही बुजुर्गों वाली जो बात कही हमने, तो आपके घर में बुजुर्ग है क्या और किस तरह से उनका हट होता है, कभी बालहट की तरह भी होता है उनका हट, तो आप उनका हट पूरा करते हैं या नहीं, इस तरह से कमेंट्स हमें जरूर लिखकर भेजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है।
0: बिल्कुल, फिलहाल हम एक गीत का इंतजार कर रहे हैं।
1: सुनते हैं।
2: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।

0: सोनाली, गाना हमने सुन लिया और अब कथा सुधा का वक्त हो गया है। तो आज की जो कहानी है तेतर, इसका पहला भाग हम सुनेंगे। इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है कि इस ये जो शब्द है तेतर, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखा है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि तेतर महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है, जो तीन पुत्रों के पश्चात पैदा होने वाली कन्या और उससे जुड़े समाज के अंधविश्वासों पर आधारित है। और कहानी का परिचय और मुख्य बिंदु कथानक तीनों बेटों के बाद घर में बेटी यानी कि तेतर का जन्म होता है, तो उसके बारे में जो बातें हैं, बहुत मान्यताएं हैं उसके बारे में ये कहानी है। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी हमें लिख करके भेजी है, सुन लें। अपन सुनते हैं।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। कहना न होगा कि प्रेमचंद ने अपने समय के समाज में जो कुछ भी देखा उसका हूबहू सजीव चित्रण भी किया, जो आज के समय में हमें रास्ता दिखाने का भी काम करता है। लड़कियों के जन्म को लेकर बनी हुई मानसिकता और घोर निराशा व चिंता को देखते हुए एक लेखक ने इस कहानी के माध्यम से सभी को आगाह करने का प्रयास किया है। तेतर नाम की कहानी में लेखक ने तीन लड़कों के बाद जन्म लेने वाली लड़की का उल्लेख किया है, जिसे पहले से ही हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक आफत और चिंता के रूप में देखा जाता है। कहानी में मुख्य रूप से समाज में एक तेतर लड़की को लेकर फैले हुए अंधविश्वास पर चोट की गई है, जो कहीं न कहीं हमारे बीच के कुछ लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है और इस अंधविश्वास को पुख्ता करने के लिए तरह तरह का स्वांग किया जाता है। जो व्यक्ति इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता उसे भी इन अंधविश्वास से भरे समाज में डर लगने लगता है। जैसे कि कहानी में लड़की का पिता, जिसका नाम दामोदर है, वो इन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी माँ की बातों से थोड़ा घबराया हुआ था। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीन पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे।

0: पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने।
1: अरे कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहां। अरे किसी ऐसे के घर जाती जिसके औलाद नहीं है तो उसके तो दिन फिर जाते।
0: दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे।
2: अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया।
1: अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण तो उसी में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कहां उठता है।
2: अम्मा इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा।
1: उपाय बताने वाले तो बहुत तेरे हैं, और पंडित जी से पूछो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठ्ठियां गर्म हुई, यहां जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया, अब टके के रह गए पंडित जी, जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उन्हें दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की तो जरा देखो दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही, ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। हाँ
0: दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे, लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले,
2: अम्मा तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही।
1: क्या बताएं, जी तो हुलसता ही नहीं, लेकिन करूं क्या।
2: अम्मा गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं, कि हो जाएगा, अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो न कराऊंगा ना।
1: अब बुलाए लेती हूं बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया।
0: इतने में सौर में से पुकार कर लक्ष्मी ने कहा,
3: अम्मा जी, ओ अम्मा जी, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है।
1: भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी, 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुप से बैठी क्यों नहीं रहती हैं। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में जब मेमों की बराबर करती हैं तो इस बात में भी करें, कहो चुप बैठी रहें। और सुनो लक्ष्मी, जाओ जरा गाने वालियों को बुला लाओ, और हाँ सब जगह न्योता दे दो, और पड़ोस में भी कहती जाना। हाँ

0: सवेरा होते ही लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा,
1: बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ बताइए ना।
2: अरे लड़की तो हुई है बेटा।
1: क्या? ओहो हो हो हो, पैजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी? जरा मुझे दिखा दो दादी जी, थोड़ा दिखा दो ना।
2: अरे तो क्या सौर में जाएगा है, पागल हो गया क्या? चल बाहर चल, लड़के नहीं जाते अंदर।
0: लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला,
1: अम्मा अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो अम्मा।
3: कहाँ जाते हो, बच्ची भी सोई है, चलो बाद में आना।
1: बच्ची को मुझे दिखा दो, जरा दिखा दो, गोद में लेकर देखूंगा।
0: लक्ष्मी ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ वो अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाने लगा।
1: अरे छोटू सुनो, अरे छोटू सुनो, उठो उठो। अरे मैं अभी गुड़िया देखकर आ रहा हूँ।
4: कौन लगाओ भैया, नन्ही सी होगी?
1: अरे बिल्कुल नन्ही सी, एकदम गुड़िया जैसी है, गोरी तो ऐसी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा।
4: हम भी देखेंगे, कौन लगाओ।
1: देखा कैसी सुंदर है,
4: कैसा के मन करके सोए, देखो ना भैया, हमको भी दिखाओ। नहीं नहीं, हमें तो हम भी देखेंगे।
1: खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े आतिशबाजी, क्या मजा आएगा,
4: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
0: मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है, उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे।
4: फूल आविया भी होंगे, ढेर सारे फूल होंगे, हम भी फूल लेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, कितनी सुंदर है।
0: छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था, पर अब की ये आयोजनाएं न की गईं। फूल से बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो माँ उसे झिड़क देती।

0: तीन चार महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई।
1: अरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका

0: प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए।
1: अरे यहाँ क्यों ले आए, पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अब आगन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए।
2: अरे बस भी करो, मैं से बाहर ले जाता हूँ।
0: दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी, पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
2: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: सोनाली, हमने बरखा फिल्म का ये गाना सुन लिया, और उससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर उसका पहला भाग भी सुन लिया। अगला भाग हम जरूर सुनेंगे अगले सोमवार के दिन, लेकिन अभी
1: अब ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ,

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से हाजिर हैं सखियों से बातचीत करने के लिए। और अब अपने विषय पर आते हैं, उससे पहले तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है,
0: हाँ
1: मंजू जी, कि इस समय मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं डल लेक के सामने श्रीनगर के होटल के रूम में आनंद ले रहे हैं और अपने शहर अजमेर से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर ये हमारी दीवानगी विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। जो सुबह सुरीला सफर जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तब भी हमारे इन्हीं श्रोता का फोन आया, मैसेज आया था, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि वो घूमने गए हैं और वहां पर जो नजारे हैं उसके बारे में लिखा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपडेट्स जो है वो हमें देते रहते हैं। और आज हमारा जो विषय है, बुजुर्गों में बढ़ता हठीलापन, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है। पहले कुछ बात हम अपनी, यानी जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं कि कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा जीवन के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह, धैर्य और अपनापन चाहिए होता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि बचपन की जो जिद होती है वो मासूमियत भरी होती है, लेकिन बुढ़ापे की जो जिद होती है वो कई बार हट का रूप ले लेती है। यानी बच्चों की जिद तो हमें समझ में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं जिद तो करेंगे, लेकिन वही जब बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें ये कैसे हट कर सकते हैं,
1: क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। वैसे मंजू जी, आज के समय में ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे पिताजी या माताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं, लेकिन यदि इस व्यवहार के पीछे के कारणों को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि उनका हट केवल स्वभाव नहीं बल्कि परिस्थितियां, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा का ये परिणाम हो सकता है।
0: तो हमें इन कारणों को जानने के बारे में सोचना चाहिए या जानना चाहिए। तो हठीलापन वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी बात, अपनी आदत या अपने निर्णय पर अड़ जाता है और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने में उसे कठिनाई महसूस होती है। बुजुर्गों में ये जो व्यवहार, ये अक्सर उम्र, अनुभव, स्वास्थ्य और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण दिखाई देते हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है,
1: हमें समझ कारण होते हैं,
0: हमें समझना पड़ेगा।
1: अब जैसे बदलते समय में ये जो स्वीकारना है, इस बदलते समय में खुद को यानी उसके हिसाब से ढालने, इसमें उन्हें कठिनाई आ सकती है। और जिस समाज में उन्होंने जीवन बिताया, आज वही समाज पूरी तरह बदल चुका हो।

0: होता है, नई तकनीक है, नई सोच है, नई जीवन शैली है और नई पारिवारिक मूल्य उनके लिए सहज नहीं होते हैं।
1: बिल्कुल। और जैसे कि इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण दें तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ससुर, कोई भी हो सकते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि पूरा परिवार परिवार जो है वो रोज एक साथ बैठ करके भोजन करे। लेकिन होता क्या है कि आजकल जिस तरह से नौकरी लोग कर रहे हैं और उनका समय बहुत ज्यादा होता है, नौकरी का, पढ़ाई है या अलग अलग समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है। जबकि अगर वास्तविकता की तरफ अगर हम नजर डालें तो यही कहा जा सकता है कि दिनचर्या सबकी अलग अलग है, तो परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हठीलेपन का।
0: पर हम एक उसमें बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, दादाजी का मन है, उनकी इच्छा है, तो हम हफ्ते में एक बार या दो बार तो हम कर ही सकते हैं।
1: हाँ, जब संभव
0: तो कर ही सकते हैं
1: जी।
0: तो होता यूं है कि लोग खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं होता है कि खाने में नमक ज्यादा है या कुछ कम है या कुछ है, वो तो उस मोबाइल देखते हुए खाते हैं।
1: हाँ, और या तो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पूरा परिवार साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हुए भोजन करते थे, तो उसमें सुख दुख का बंटवारा भी हो जाता था, सब अपने मन की बात कहते थे, दिन भर क्या हुआ उसके बारे में एक विश्लेषण होता था, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका था जो अभी भी होना चाहिए। लेकिन जब नहीं होता है तो कई बार बुजुर्ग लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है,
0: तकलीफदायक हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और एक बात है मंजू जी कि आजकल ना सम्मान थोड़ा सा कम देने लगे हैं लोग, कि पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी हुआ करते थे वे अपने पिताजी को या उनके दादाजी को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें महत्व देते थे, हर काम में कोई भी बड़ा या छोटा काम करने से पहले उनकी सलाह ली जाती थी। पर आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे ना कि खुद की जैसी इच्छा हो उसी तरह से व्यवहार करें, पर बुजुर्गों को थोड़ा सा अगर मान सम्मान दिया, उनसे पूछ परख लिया, अगर उनसे सलाह ले ली तो उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर ऐसी बात अगर उन्हें इस तरह से उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वे नाराज हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जमाने में कैसे बुजुर्ग बैठ कर आपस में पूछते थे, परखते थे, फिर कोई घर का निर्णय लेते थे। आजकल तो हमें सब काम होने के बाद में पता चलता है कि भी नया घर खरीदा जा रहा है या फिर कोई शादी विवाह का मामला है या फिर कोई अन्य मामला है, बच्चों के एडमिशन की भी बात हो तो भी अरे हमें तो पूछा भी नहीं कि एडमिशन भी हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें ना बुजुर्गों को थोड़ी तकलीफदायक हो सकती है।
1: बिल्कुल। और पहले के जमाने की तुम बात कर रही हो तो जो बड़े लोग होते थे ना, एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है, यही होगा, तो हमारे जो पिताजी थे वो उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। लेकिन अब शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए जमाने या नई तकनीक या नए जो चाल चलन या जो तरीका जो है चलन में जो तरीका है उसके बारे में शायद बुजुर्गों को इतना पता ना हो, तकनीक बहुत कुछ बदल गई है तो हमें क्या करना है ये हमें ही ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। शायद इस सोच की वजह से भी हम पूछते नहीं हैं उनसे, और ये भी एक कारण है कि ये उनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं बुजुर्गों के मन में कि अरे अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, और फिर वो अपने महत्व को शायद ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ महत्व बताने के लिए भी हो सकता है, ये एक कारण कि उनमें हठीलापन आ जाए
0: और कभी कभी रूट भी जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो उन्हें मनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। गीत सुन लें, यहाँ
0: सुनते हैं गीत।

0: मंजू जी,
1: हम्म,
0: हमारे एक सखी ने लिखा है, मैं इस समय बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। इस समय यहाँ 12:05 हुए हैं, इंडियन टाइम से 3.5 घंटे पीछे हैं।
1: क्या
0: कितना
1: बात
0: अच्छा लगता है
1: है।
0: ना।
1: हाँ, समय कोई भी हो, लेकिन अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आनंद की बात
0: बात
1: है।
0: है।
1: चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के मोबाइल और डिजिटल युग में सबसे बड़ा बुरा हाल जो है वो उम्र दराज और बुजुर्गों का है। जो कभी समाज के ऊपरी पायदान पर होते थे, उसे आज समाज कोई पूछता भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले समाज और परिवार के सभी बड़े काम जिन वडिलों को पूछे, वडिल यानी बड़े लोगों से पूछे बिना
0: बुजुर्ग।
1: नहीं होता था, आज उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये गलत है। अगर आप किसी भी घर में ऐसा होता है
0: तो वो
1: तो ये
0: गलत
1: नहीं
0: है
1: होना चाहिए।
0: जी। एक साथ ही लिखते हैं मंजू जी कि मैं भी 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मुझमें कोई हठीलापन नहीं है। घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन सभी की खबर ख्याल रखता हूँ। सुबह विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। इन सभी के अलावा विविध भारती फेसबुक पेज से कई श्रोता मित्र, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और उनके लिए विविध भारती के लिए यही कहता हूँ कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए नहीं, जिंदगी की हर घड़ी के लिए गम जाने किधर चला जाता है पता ही नहीं
1: क्या
0: चलता।
1: बात है। जिंदगी के प्रति हमारा जो नजरिया होता है ना,
0: जी,
1: वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल, शारीरिक अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जवान हो या ढलती उम्र हो या बुढ़ापा हो, लेकिन जब हमारा नजरिया सही होता है तो जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ तो बदलाव आ ही
0: आ
1: जाता
0: ही
1: है।
0: जाता है यानी, और है ना, छोड़ देने की आदत कि ठीक है उनके हिसाब से चलो, या फिर है ना कि हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
1: हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र इतनी बड़ी है तो परिस्थितियों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। उन परिस्थितियों से अगर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, अपने नजरिए को थोड़ा बदल दिया जाए कि हाँ, ये बदलाव तो होगा ही, हमारे जमाने में ऐसा होता था लेकिन इस जमाने में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी इस समय के अनुसार चलना है। ये अगर सोच थोड़ी सी कर ली जाए तो भी बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। भाई, बढ़ती हुई उम्र एक तो वैसे ही खतरे की घंटी है, ऊपर से उनका हठीलापन, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे सोने पे सुहागा नहीं। ये हमारा सोचना ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात नहीं है ये। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि हठीले लोगों से लगता है कि आप सभी का पाला पड़ा नहीं है, और इस तरह की बात लिखी है। हमारा इनसे ये कहना है कि बुजुर्गों के बारे में आप इस तरह से

0: लिखना थोड़ा ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा आदर भाव से
1: कहें,
0: उनकी समस्या, बिल्कुल उनकी जो समस्या है उसकी तरफ हमारी नजर होनी चाहिए और उसे कैसे दूर किया जा सकता है और उनकी समस्या को समझने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। कि जैसे कई बार होता है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो सिर के बहुत सारे अंग होते हैं वो थोड़े से मंद पड़ने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, भूलने लगते हैं, तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं उससे भी ये समस्या होती है। हमें ऐसा लगता है कि हठीलापन है जबकि ऐसा वो करते नहीं है, बल्कि ऐसा हो जाता है कि वो अपनी एक बात से चिपक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हठीलापन कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की जिद से निपटने के उपाय धैर्य से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, उन्हें महसूस कराए कि उनकी राय क्या में महत्वपूर्ण क्या है, सम्मान दे, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, आदेश देने के बजाय प्यार से सुझाव दे, सक्रिय रखे उन्हें, सैर योग या पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करे।
0: बिल्कुल, एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का हठीलापन कोई बीमारी नहीं बल्कि उनके जीवन के इस पड़ाव की एक पुकार है जो अपनों का साथ और सम्मान चाहती है, उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस व्यवहार को धैर्य और प्रेम से संभालना ही एक परिपक्व समाज और परिवार की पहचान होता है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिखी है, और भी कोई बात अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के बता सकती हो हमें।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में हठीलापन आना एक बहुत ही मुख्य समस्या है, आम समस्या है। मुख्य कारणों में बढ़ती उम्र तो है, इसके चलते मुख्य कारणों में स्वतंत्रता खो देने का डर होता है, शारीरिक या संज्ञात्मक कमी, डिमेंशिया के कारण पराधीन होने का मनोवैज्ञानिक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उनमें बच्चों की तरह हठीलापन का एहसास होने लगता है। खासकर जब बढ़ती उम्र में उनकी उपेक्षा होने लगती है तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्यार से समझाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
0: बिल्कुल, अब हम संगीत का भी सम्मान करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: ये फिल्म अगर देखी हो ना, तो इसमें जो ये गाना है ना, दादी अम्मा मान जाओ, तो दादी के जो पोते होते हैं वो किस तरह से बड़े प्यार से दादी अम्मा को मनाते हैं, तो वो वाकई में देखने लायक है।
1: और ऐसे ही अगर दादी को या दादा को मनाया जाए तो दादी या दादा रूठेंगे नहीं, बिल्कुल से मान जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सम्मान उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए।
1: आज हम पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले हैं।
0: हाँ, जो बसंती चावल और सौंदेश की हम बात कर रहे हैं, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बसंती चावल पंजाब के बहुत सारे प्रांत में बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, जिसमें बासमती चावल को घी में पकाते हैं और उसमें केसर, ड्राई फ्रूट और चीनी का सिरप मिलाकर बनाते हैं, और मैंने अपने पड़ोसी के घर ये खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सौंदेश तो खाने के लिए मिठाई की दुकानों से मिल जाता है, बंगाली सहेली के घर पर बहुत सारे हमने बंगाली व्यंजन खाए हैं।
1: एक ने सौंदेश की रेसिपी लिखकर भेजी है हमारे एक साथी ने। इसकी सामग्री और तैयारी, तो दूध 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है, इलायची पाउडर छोटा आधा चम्मच और बुकरस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना बनाए, दूध को उबाले, फिर गैस बंद कर दे और नींबू के रस या सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे दूध में डाले ताकि वे आराम से फट जाए। अब पानी निकाल ले। अब फटे हुए दूध को सूती कपड़े में छान ले और साफ पानी से धोकर अतिरिक्त पानी निकालकर उसे निचोड़ ले। अब उसको अच्छे से मैश करना है, उसको मसलना है। छेने को प्लेट में निकालकर हथेलियों से 7 से 8 मिनट तक चिकना होने तक मस ले। अब इसको पकाना है। इसमें अब पकाने के लिए इसमें पीसी चीनी डालना है मसलने के बाद में, और इलायची पाउडर मिलाए और मिश्रण को पैन में धीमी आंच तक 3 से 4 मिनट तक नरम होने तक पकाए और ठंडा करें और इसे आकार देना है। हाथों में घी लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाएं और मनचाहा आकार देकर पिस्ता से या फिर काजू या फिर बादाम से सजा दे।
0: बिल्कुल सही बात तुमने कही है कि किस तरह से सजाया जाए। लेकिन सोनाली, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में चाहे कोई त्योहार आए या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो घर में ही सारी मिठाइयां
1: बनाई जाती थी।
0: हाँ, और वो बड़ी स्वादिष्ट भी लगती थी और कई कई दिनों तक हम उसे खाते थे। स्वाद मुंह से जाता ही नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि बनाने का समय ही नहीं है तो बस बाजार से ले आओ और खा लो
1: और फ्रिज में रख दो।
0: हाँ, फ्रिज में रख दो। तो इसकी बजाय हम कभी कभी ये बनाने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घर की बनी हुई जो मिठाइयां होती है उसका स्वाद एकदम अलग होता है और शुद्धता की भी तो बात है ना। हमें पता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर मिलाई है, किस तरह से बनाया है। और अगर घर में बनता रहेगा तो ये जो रेसिपी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहेगी। अन्यथा अगर आगे हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कि इन पर्वों पर, इन उत्सवों पर क्या बनता था हमारे घर में और कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एक बात है ना।
1: और जब हम घर में बनाते तो अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं। साफ हाथ धोकर फिर हम ढक कर रखते हैं, उसमें कुछ कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम कितना ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ध्यान रख के बनाना बहुत जरूरी है।
0: और पहले के जमाने में तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये ऐसे पर्व उत्सव आते थे तो अपने घर में क्या बना है, एक प्लेट भर के हम अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के घर भी देने के लिए जाते थे और वहां से भी प्लेट भर के आता था। तो हमें ये पता चलता था कि वहां क्या बनता है और उनकी उसी जो मिठाई है उसका स्वाद वहां का कैसा है। अगर हमें ऐसा लगता था कि नहीं, ये हमारे स्वाद से ज्यादा अच्छा है, तो हम कोशिश करते थे कि वैसा बनाया जाए।
1: यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान पहले हुआ करता था,
0: होता था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि घर में इस तरह की रेसिपी बनाना चाहिए हमें। चलिए, बसंती पुलाव किस तरह से बनाया जाए, हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी है। तो बसंती पुलाव एक पीले सुनहरे रंग का सुगंधित मीठा सा चावल का व्यंजन है। बसंती नाम इसके सुंदर पीले रंग से जुड़ा है। इसे विशेष अवसरों, पूजा और पारिवारिक समारोहों में बनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिखी कि आमतौर पर सुगंधित चावल का इस्तेमाल किया जाता है। घी, हल्दी या केसर से इसका आकर्षक रंग और खुशबू आती है। इसमें किशमिश और काजू जैसे मेवे डाले जा सकते हैं। इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता आदि मसाले इसकी सुगंध बढ़ाते हैं और बंगाली भोजन में इसे अक्सर आलू की या दम या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और बसंती पुलाव की खासियत यह है कि इसमें मीठे और मसालेदार स्वाद का एक सुंदर संतुलन मिलता है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है। और अगर इसकी रेसिपी भी हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है तो

0: वो भी हमें बताना चाहिए
1: कि कितना उसमें, यानी 2 कटोरी चावल है तो उसमें कितना तेल लेना है, फिर कौन से खड़े मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, कि पानी कितना डालना है, इस तरह से भी अगर लिख के भेजे ना तो अन्य श्रोता जो घर में सुन रहे हैं उन्हें भी और भी सहूलियत होगी बनाने
0: बिल्कुल।
1: में।
0: और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन व्यंजनों की इन्होंने बात की कि इसमें गर्म मसाले भी मिलाए जाते हैं और मीठा भी स्वाद आता है, तो जो गर्म मसाले एक संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हितकर होते हैं। तो पहले के जमाने के जो भी मीठे व्यंजन, चाहे कोई भी और व्यंजन हो, तो उनमें स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा खजाना छिपा हुआ था। तो ये इसलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बनाएंगे तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे।
1: और है ना, जो घर में मंजू जी जो बनाए जाते हैं ना मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं, कि जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते थे उस जमाने में, फिर अभी बारिश का मौसम आएगा तो अभी मकई आ रही तो मकई के व्यंजन बनते ही थे, क्योंकि हम साल भर उस वक्त सब चीजें नहीं मिलती थी।
0: बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं।

0: सोनाली, इस गाने में जो एक शब्द है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ा प्यारा लगता है। घर में भी जब कोई अच्छी सी कोई मिठाई मम्मी दादी नानी के हाथ से बनती है और वो हमें पसंद हो तो धीरे से एक मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पर आती है ना,
1: और वो खुशबू है ना, हाँ, वो खुशबू से ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यानी खाने के पहले, चखने के पहले ही उस खुशबू से जो घर में इतनी खूबसूरत महक आ जाती है ना कि हमें ऐसा लगता है अरे वाह, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें।
0: बिल्कुल।
1: और एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि हम जो संदेश है वो हम गुड़ का हमारी सहेली बनाती है।
0: अच्छा।
1: तो आजकल जो हेल्दी ऑप्शन लोग चुन रहे हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कहते हैं कि रसोई घर तो एक प्रयोगशाला होती है, जितने प्रयोग करेंगे उतनी नई नई बातें हमें पता चलेगी। चलिए, अब एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब

0: हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर संजय भदादा से, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, यानी ऐसे विशेषज्ञ जो हार्मोन्स, ग्रंथियों और एंडोक्राइन सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। तो चलिए करते हैं बातें डॉक्टर संजय भदादा से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने ही की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भदादा, जो चंडीगढ़ के पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च का काम भी किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बुलाने के लिए विविध भारती से।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है, इसका काम क्या है?
1: अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है, हार्मोन से डील करती है।
0: जी।
1: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफ़ी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस ख़राब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी के अंदर और नए नए और निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
0: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज्यादा देखी जाती है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशंस होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
0: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के, और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर की आपने बातें की, तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा।
0: जी,
1: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज किया या अपन ने जो चूज किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है, जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या महावारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है, और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है। तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है, अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है, और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑलमोस्ट 30-40% 50% महिलाओं को होता है, और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
0: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और ज़्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज़ को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है या मोटापे को देखता है। तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देख रेख करते हैं। उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है, और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं, और इन दोनों इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में जो इनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो, उसके अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है, समझी जाती है, वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो वो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप एक बार ज़रूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 4 साल के, या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे ही एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से, जब हार्मोन ज़्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज़्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है, और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसके जड़ में नहीं पहुंच रहे। और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से, कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये
0: यहां
1: दूसरा
0: मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
1: तो मैं सबसे पहले ही आपको बोलता हूँ, अपन एक ही क्वेश्चन में 3-4 आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
0: जी,
1: तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रोमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो
0: जो
1: उसके
0: टूट फूट हुई है।
1: टूट फूट हुई उसके ले जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग है ना, तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
0: जी
1: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया, फ्रैक्चर हो गया, दो सीढ़ी स्किप हो गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास, पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के
0: बिल्कुल
1: पास।
0: साफ कर दिया आपने
1: बिल्कुल।
0: इस मामले को।
1: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में,
0: जी
1: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पर पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है, पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
0: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है, अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन है ना, ये तमाम चीजें हैं, तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
1: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं,
0: जी
1: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया, तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों की हेल्थ का ध्यान रखती है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो, और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
0: जी
1: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे हम हमारे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती, तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूँ कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि माहवारी कैसी चल रही है। माहवारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर माहवारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी माहवारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया, तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
0: तो डॉक्टर के पास तुरंत
1: बिल्कुल जाना चाहिए, बताना चाहिए ये। और बहुत सारी चीज़ें शक्ल देख के डायग्नोज कर सकते हैं हम।
0: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोस
1: बिल्कुल
0: करते हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा।
1: बिल्कुल
0: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
1: हाँ, तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है।
0: क्या बात है, हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तर्ज। सुनते हैं ये गाना।

0: बहन।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
2: और
1: है।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह
1: जी। जी
2: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते हैं।
1: अरे गजब।
2: तो अब वो
1: ऑब्जर्वेशन
2: उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
1: जी जी।
2: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जांपल देता हूँ, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए
1: जी,
2: तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
1: अच्छा,
2: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में महिलाएं बहुत झुक जाती है, हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया। अगर उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे
1: जी। कई बुजुर्गों को दिखाई कि उनकी कमर दोहरी हो जाती है,
2: बिल्कुल
1: पुराने जमाने में
2: ज्यादा होता था,
1: देखा जाता था।
2: और दूसरा बीमारी होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी जी।
2: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी छोट हल्का चोट लगी तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
2: ये बिल्कुल, कॉर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि
1: जी,
2: अगर
1: जी।
2: आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, ये, तो वो कम हो तब हैप्पी है आदमी।
2: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए।
1: जैसे
2: कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए, अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कॉर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके।
2: हाँ, तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या बात,
2: सब चीज वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित।
2: जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ,
2: अगर आप अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको

0: बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
0: और चेहरा देखने से जैसे कि हॉर्मोन्स होते हैं, जिन हॉर्मोन्स को मेल हॉर्मोन्स और फीमेल हॉर्मोन्स बोलते हैं
1: जी,
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे
1: जी,
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज्यादा बना रहा है।
1: ओके,
0: तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा सात फीट का हो सकता है और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे।
1: अच्छा।
0: जैसे आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी वो ज्यादा है, उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ गए।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो एशिया के सबसे लंबे,
0: वो पंजाब में भी कुछ है
1: जी,
0: वो भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप वो हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीजें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहाँ एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी, तो जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट, जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो बोला कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह पर, कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे केवल पूरी दुनिया के अंदर।
1: इतनी दुर्लभ।
0: अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो इलाज कैसे किया जाए
1: जी।
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया, और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर और उसकी मामी मामा जी उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें?
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है
1: जी,
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो एकदम एग्जेसरबेट हो जाती है।
1: ओ,
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपोज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है। जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज जिसको हम बोलते हैं वीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन है जहां पे वीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का।
1: मालिश करना कितना गलत हो गया।
0: हाँ, मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया।
1: ओहो।
0: और जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए,

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए?
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीज़न ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूँ मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं, समझ गए?
0: जी
1: मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी,
0: जी
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रूमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है,
0: संधिवात जैसी कुछ
1: संधि।
0: चीज़ है।
1: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो
0: जी
1: उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा, घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल,
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए।
0: जी
1: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
0: जी,
1: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
0: दो तरह के हो गए।
1: अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले, आज के कुछ सालों पहले, ज्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही जरूरी होता है।
0: ये बहुत याद रखने वाली बात है सभी श्रोताओं के।
1: बिल्कुल, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को

0: कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं कि आपको कब्ज रह रहा है, अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है। उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है,
1: जी,
0: जैसे कि आपका चेहरे का एक, भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है, तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया चेहरे का कंप्यूटर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है।
1: जी
0: लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए, तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है। जैसे आपने फोटो कोई खींचा है, फोटो हिल गया है, तो जो
1: जी
0: धुंधला हो जाता है, तो वो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है,
1: नूर चला जाता है।
0: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। फिर
1: महिलाओं में भी इस समस्या को
0: महिलाओं
1: लेकर,
0: में दूसरी समस्या, उनका अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है,
1: जी
0: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
0: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूंगा कि यस, 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 99.9% लोगों, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
1: जी
0: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप,
1: अच्छा, वो सील ही बना
0: सील
1: लिए।
0: लगा दी, क्योंकि अब मरीज को कभी कभी बताना भूल जाते, तो सील लगा दी कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ
1: जी
0: लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है।
1: बहुत ध्यान
0: कुछ,
1: रखना है।
0: हाँ, कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है, बट जनरली नहीं होता है,
1: ये कौन सा
0: क्यों,
1: वाला है? हाइपो,
0: हाइपोथायरॉयडिज्म बात
1: जी
0: करें।
1: जी
0: अब दूसरा इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई, उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है।
1: जी
0: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
1: ओके,
0: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था, इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से, उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो
1: जी
0: इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया, आपको सिम्टम्स आ गए, तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना
1: और इस
0: पड़ेगा।
1: 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते?
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ
1: जी
0: होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली,
1: जी
0: ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा, ये तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा।
1: जी
0: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज़्यादा है, तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है, उसमें पसीना ज़्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है, उसमें काफ़ी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें डायरिया होता है,
1: जी
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफ़ी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा
0: बिल्कुल,
1: आपने जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे
0: हाँ,
1: अच्छा उपाय
0: मतलब
1: है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो
1: जी
0: ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है।
0: डायबिटीज़ एक तरह से, कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे।
1: जी,
0: क्या बोलते थे? राज रोग, मतलब ये
1: मतलब
0: राजा
1: बहुत
0: महाराजाओं
1: शाही
0: में
1: लोगों
0: होते
1: को
0: हैं, शाही लोग।
1: होता था।
0: अभी ये क्या हो गया? आम रोग।
1: जी
0: अब हर
1: हाँ,
0: किसी को डायबिटीज हो रहा है,
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल
0: आप
1: बनता
0: ये
1: जा
0: कह
1: रहा है।
0: सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है, बट
1: जी
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है।
1: जी
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ

0: बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होती है, ये
1: बिल्कुल
0: नेचर एंड नर्चर।
1: नर्चर
0: तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम, वो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रिडिस्पोज्ड हैं जेनेटिकली। और उसका बेस्ट आइडिया, जैसे आप दुबला पतला पर्सन है, उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा। तो जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे बी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, तो उसको
1: जी
0: हम हेल्दी बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं, वो अनहेल्दी है।
1: जी
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है, ये एक तरह से प्रिडिस्पोज करता है डायबिटीज को। तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है
1: जी
0: और सबसे बाद में यहां से जाता है। तो
1: जी
0: ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से,
1: जी
0: तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों?
1: जी
0: कि हम खान पीने उधर, जैसे सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता
1: अरे
0: है ना।
1: गजब जी,
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के
0: तो
1: जरिए खाना मंगा रहे
0: ऐप
1: हैं।
0: के जरिए खाना मंगा रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया, और खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है।
1: जी
0: इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना। जैसे खास तौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते, और सुबह में टाइम पे। तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग,
1: जी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत
0: वो
1: ज्यादा चल
0: इस पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोगों ना अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं,
1: रहा है
0: ठीक है।
1: जी
0: अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है,
1: जी
0: जैसे रमजान रखते हैं तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते हैं, 12 घंटा भूखे रहते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके
1: जी
0: अंदर आप दिन में खाना नहीं खाते हैं, आप फलाहार लेते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है। तो ये पहले से कंसेप्ट है, या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती हैं वो कॉमन है, उनको भी अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे वो दूसरों का उतना शायद पता नहीं। तो ऐसे फास्ट रखते थे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी, पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, अरे इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए,
1: जी,
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से ही
1: ऑलरेडी
0: इंटरमिटेंट
1: है
0: फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज हो सकता है कि हम ये एक हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी
0: तो उसका रीजन ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए। तो आप हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो
1: क्या बात
0: और
1: है
0: उसका बहुत अच्छा असर होने वाला आपकी हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे यही सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह
0: उसमें
1: 8 बजे
0: लंच
1: एक
0: आप,
1: ब्रंच जैसा कुछ
0: हाँ
1: है
0: नहीं, उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं, कि जैसे
1: जी
0: आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं, या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया
0: कुछ
1: हल्का
0: लाइट ले
1: सा,
0: लिया तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही हो गई इंटरमिटेंट
0: ये
1: फास्टिंग,
0: इंटरमिटेंट
1: बारह
0: फास्टिंग
1: बारह
0: होगी,
1: तेरह घंटे
0: बारह
1: की।
0: तेरह घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल, तो अब यहां एक गाना सुनते हैं
0: हाँ,
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आप सुन, चांद सा रोशन चेहरा,
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है,
0: बिल्कुल
1: ओपी नय्यर का संगीत, सुनते हैं
0: ये चांद।

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक।
0: आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी,
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता थी।
1: सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा।
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है।
0: अच्छा।
1: कि आप कितने बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितने बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, दोनों
0: जी
1: पेयरिंग में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से
0: जी,
1: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
0: प्रजनन का काम है,
1: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहाँ से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स।
0: तो पूरा शरीर कवर हो गया।
1: पूरा शरीर कवर हो गया। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो रह गई है, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है
0: जी,
1: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि बाकी सब चीजें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से।
0: जी जी,
1: ऐसा शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है। तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो MD स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना। हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने पैंक्रियास का जिक्र किया। इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
1: तो पैंक्रियास का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पैंक्रियास से रिलेटेड डायबिटीज है। पैंक्रियास का टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैंक्रियास से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है
0: जी जी,
1: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है। क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
0: क्या वजह होती होगी इसकी?
1: इसकी वजह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कि वजन ज्यादा होना।
0: अच्छा,
1: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वजन ज्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को खराब कर लेते किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, अल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है। तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
0: दोनों हो रही है, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी,
1: हाँ, फिर से बैलेंस की जरूरत है। बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उससे महिलाएं कैसे निपटें खासतौर पर?
1: या अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मेनोपॉज में जो चेंजेज होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है, या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है, या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे। तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हमारे को। तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे। तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होता है। तो सीवियरिटी ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
0: ये दवाएँ हार्मोन्स की होती हैं?
1: हाँ, एक तरह से हार्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट, उसके लिए हार्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है। तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है। तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
0: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
1: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हार्मोन्स बहुत जरूरी है बालों के हेल्थ के लिए। क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उनका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज़्यादा। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले हार्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उनका देख रेख करेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उसके बाद में बाहर की चीज़ों पर आएगी।
0: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना।
1: बिल्कुल, अगर बैलेंस सही नहीं चलना ज्यादा जरूरी है। जैसे थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन एक्सेस में तो बाल गिर सकते हैं। तो ये इस तरह के अगर उनका हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में। तो ये दोनों चीज़ों का जो अनुभव है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
1: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं जो आम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
0: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स देखते हैं?
1: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन के 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग।
0: अरे 1200?
1: हाँ, तो ये 3 दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
0: अनुभव बढ़ेगा,
1: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में। आपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोस कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे, अरे ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा। तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
0: जी जी।
1: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोस करते हो, आप ट्रीट करते हो, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं। या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिंस हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीज़ों का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ आई कहाँ से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज
0: नेचर के जरिए
1: कहीं कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में, या जैसे हमारा यजुर्वेद है वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीज़ है। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया उसके लिए हमने हड्ड जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: तो रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेडिकल की दुनिया।
1: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना, ऐसा लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते हैं, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एंजॉय दैट। पेशेंट एक्सपीरियंस तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है, पर बाहर भी कभी जाते तो दे लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है, वो सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस तरह।
0: वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा।
1: ख्वाजा मेरे ख्वाजा।
0: क्या बात है, सुनते राजस्थान कनेक्शन सामने आ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: राजस्थान मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सब रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: रहना ही चाहिए।
0: ये गाना सुनते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बॉटम लाइन ये है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें नियमित रूप से कराने चाहिए, खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को?
1: या तो मैं ये बोलता हूं कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज और थायराइड।
0: जी,
1: बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज़ होती है पर उनको पता नहीं चलता है।
0: जी, तो इसलिए टेस्ट बहुत
1: तो मायने टेस्ट
0: रखता है।
1: से ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज़ पता चलता था, बात है कि वो आँख का ऑपरेशन कराने के, तो आँख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ और शुगर आ गया, है ना, या कोई हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन की चेकलिस्ट दी भी ये टेस्ट कराओ तो डायबिटीज़ का टेस्ट कराया तो आ गया। तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज़ चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो डायबिटीज़ के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का रीडिंग देता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
0: जी,
1: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं।
0: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है?
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज़ को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जग रहे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा।
0: जी,
1: तो ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका ज़रूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है। पर मुझे खास तौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, निकलोगे नहीं। तो उसका वही है कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है। और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, उसमें T3, T4, TSH एक टेस्ट होता है।
0: जी,
1: थायराइड का ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय भदादा, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इशू है जो कि आपने क्वेश्चन की जरा हाईलाइट किए, उनको फायदा होगा उसे। धन्यवाद,
0: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदारा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

FM 102.5 MHz न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण। शाम के 5 बजे हैं, आपके साथ हूं मैं प्रणाली। समय है कार्यक्रम युववाणी का। दोस्तों, आज है लाइव फोन इन प्रोग्राम युववाणी का सजीव प्रसारण।

0: नमस्कार। महाकाल की पावन और उज्जवल नगरी के सभी ऊर्जावान और नौजवान श्रोताओं को आकाशवाणी उज्जैन के आपके अपने सबसे चुलबुले पसंदीदा और धमाकेदार कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र आशुतोष।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र प्रतिभा। आशुतोष, आज की शाम हमारे छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक बहुत ही व्यवहारिक चर्चा लेकर आई है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर उस युवा के दिल और दिमाग से जुड़ा है जो करियर की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम का हमारा विषय है कोचिंग, जरूरी है या नहीं।
1: वाह आशुतोष, ये तो आज के दौर का एक ऐसा सवाल है जिस पर हर घर में, हर क्लासरूम में और दोस्तों की हर चाय की टपरी पर बहस चलती ही रहती है। एक तरफ जहां स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है, वहीं दूसरी तरफ हर मोड़ पर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के बोर्ड टंगे नजर आते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। आज स्कूल या कॉलेज खत्म होते ही स्टूडेंट सीधे कोचिंग की तरफ दौड़ पड़ता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट हो। ऐसा लगता है जैसे बिना कोचिंग के सफलता मिलना लगभग नामुमकिन सा मान लिया गया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है?
1: यही तो सबसे बड़ा सवाल है आशुतोष। क्या स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अब इतनी काफ़ी नहीं रहे कि हमें अलग से हजारों लाखों खर्च करने पड़ेंगे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए? या फिर क्या सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ाई करने का तरीका आज भी कोचिंग के इस चमक धमक पर भारी पड़ गया है?
0: बिल्कुल प्रतिभा, हम अपने श्रोताओं से यही जानना चाहते हैं। कई लोग मानते हैं कि कोचिंग में एक रेगुलर डिसिप्लिन मिलता है, सही गाइडेंस और शॉर्टकट ट्रिक्स मिलती हैं जो एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी टॉपर्स के उदाहरण हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के केवल अपनी मेहनत और सेल्फ स्टडी के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षाएं क्रैक की हैं।
1: जी हाँ, इसके साथ ही कोचिंग की वजह से स्टूडेंट्स पर बढ़ता मानसिक दबाव, समय की कमी और आर्थिक बोझ भी एक बहुत बड़ा पहलू है। तो हमारे प्यारे श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह से आपका है। हम आपके अनुभव, आपकी सोच और आपके किस्से सुनना चाहते हैं।
0: अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हमें बताइए कि क्या कोचिंग ने सचमुच आपकी मदद की या सेल्फ स्टडी आपके लिए ज्यादा बेहतर रही। और अगर आप एक अभिभावक हैं तो इस कोचिंग कल्चर पर आपका क्या नजरिया है? उठाइए अपना फोन और सीधे हमारे साथ लाइव जुड़िए। हमारे साथ लाइव जुड़कर अपने विचार साझा करने के लिए हमारा दूरभाष क्रमांक है 4054191, साथ ही उज्जैन का एसटीडी कोड है 0734।
1: यानी आपको अपने मोबाइल या लैंडलाइन से डायल करना है 0734405411। फोन लाइंस पूरी तरह खुल चुके हैं और हमारे साथ आज के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं।
0: आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
2: जी नमस्ते आशुतोष जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूं, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
2: थैंक यू सो मच आशुतोष जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: प्रेम सिंह जी, जैसा कि आज हमारा विषय है, हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है कोचिंग। हम बात कर रहे हैं आज के समय में जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनमें पढ़ाई करने के बाद बच्चे शाम को अक्सर कोचिंग चले जाया करते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या आज के समय में कोचिंग वाकई जरूरी है?
2: जी आशुतोष जी, बताना चाहेंगे कोचिंग वास्तव में तो जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़े से कुछ बच्चे ऐसे समझिए कि थोड़े पढ़ाई में कमजोर है या फिर थोड़ा उनका ध्यान कम जाता है पढ़ाई की ओर, तो उन लोगों के लिए कोचिंग करना थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे का युग इतना कंपटीशन वाला हो गया है कि आपको मतलब कमजोर अंक मिले हैं या आप थोड़े पीछे हो, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में आपको तो कोचिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन काफ़ी स्कूल इतने अच्छे हो चुके हैं अभी और बच्चे भी काफ़ी टैलेंटेड हो गए हैं कि उन्हें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई प्रेम सिंह जी आपने। और इसी के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके स्कूली दिनों में आपने कोचिंग या इस प्रकार की एक्स्ट्रा क्लासेस कभी ज्वाइन करी हैं?
2: जी बताना चाहेंगे आशुतोष जी, एक्स्ट्रा क्लास तो हमने ज्वाइन किए बट कोचिंग तो नहीं किए। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास भी कई है ना, हमने कुछ जैसे कि मैथ्स के सवाल नहीं आए समझ में या फिर ऐसे कुछ अंग्रेजी वाले टॉपिक जो होते थे ना उनमें थोड़ी सी कोई समस्या आती थी ना, तो उन विषय के लिए हमें अलग से मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी।
0: जी प्रेम,
2: लेकिन हाँ कोचिंग के लिए तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितना हो सके बच्चे अगर कंपटीशन के साथ पढ़ाई करेंगे और आगे निकलना चाहेंगे, हाँ उन बच्चों के लिए थोड़ी सी कोचिंग की जरूरत होती है, थोड़ा जो मतलब कमजोर होते हैं पढ़ाई में उन लोगों के लिए। लेकिन अगर बच्चा आपका टैलेंटेड है, होशियार है, समझदार है, तो उसे कोचिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
1: जी जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।
2: जी थैंक यू सो मच प्रतिभा जी और आशुतोष जी, आपको जय श्री महाकाल।
0: जय
1: श्री महाकाल। जैसा कि प्रेम सिंह जी ने हमसे बातें साझा की, स्कूल और कॉलेज हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत मजबूत नींव है आशुतोष, जहां हम केवल विषय नहीं सीखते, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पर क्या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं उसके लिए, हाँ हो सकता है कि कुछ कुछ विद्यार्थी जो थोड़े से कमज़ोर हों उनके लिए ज़रूरी हो सकती है, बट जहाँ तक हो सके पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें जितना मार्गदर्शन हो सके वो देना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। और इसी के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो दोनों व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो स्कूल हो या चाहे कॉलेज हो, दोनों की अपनी अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और क्षमताओं को पहचाने, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया हर विचारशील कदम सफलता के नए द्वार खोलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। और इसी के साथ
0: आइए जुड़ते हैं हमारे अगले श्रोता से।
1: जी जी नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
3: जी नमस्कार, जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
0: आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
3: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं इस वक्त।
0: राकेश जी, जैसा कि हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं, हमारा विषय है कोचिंग, हम बात कर रहे हैं जो स्कूल और कॉलेज के अलावा जब हम हमारी पढ़ाई में थोड़ा सा मदद के लिए कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो आज का जो समय है जिसमें अक्सर जितने लगभग बच्चे हैं वो कोचिंग की तरफ ही दौड़ रहे हैं, लगभग बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है?
3: जी जी जी आज का जो समय है पहले का समय में बहुत अंतर है, लेकिन आजकल जो कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है एकदम से ये थोड़ा मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि
1: जी।
3: हाँ एमरजेंसी के लिए तो एक हिसाब से कोचिंग सही भी है, जैसे कि मानो कि कोई बच्चे किसी कारणवश या मौसम के कारण या बीमार होने के कारण नहीं जा सकते, पर वो अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादातर तो क्या कहते हैं आजकल ये सोचते कि हम घर का काम भी कर लेंगे और हम कोचिंग भी कर लेंगे, लेकिन स्कूल और कॉलेज का जो समय है वो बहुत अच्छा है, क्यों इसलिए भी पढ़ाई करना भी अच्छा है और सेहत के लिए भी पैदल चलना भी अच्छा होता है और लोगों से मिलना दोस्तों से मिलना ये चीज अच्छी होती है, अगर घर से कोचिंग करेंगे ये तो थोड़ा डिफरेंट जो है मेरे को थोड़ा ये
0: पढ़ाई की होंगी तो आपने किस प्रकार से स्कूल अटेंड किए थे, चूंकि आप दृष्टिहीन हैं तो आपके स्कूलों में क्या अंतर होता है और आज के जो दूसरे नॉर्मल स्कूल हैं वो कैसे होते हैं?
3: जी मैं पूरी पढ़ाई तो नहीं कर पाया, हाँ मैं दृष्टिबाधित ब्लाइंड स्कूल में मैं गया था, तो हमारे पहले जमाने में जो है जो ब्रेल लिपि होती है वो नहीं थी, तो हमारे जो है एक जो है स्लेट होती थी उसमें स्टाइल होती थी, उस स्टाइल में और लकीर बनानी थी, उसमें जो है बिंदु होते थे और बिंदु के अक्षर पे भी जो है लिखना पड़ता था, वो बड़ा ये होता था, लेकिन आजकल जो है हम जैसे दृष्टि पर चार तो ब्रेल लिपि से जो है मतलब सुन के हम याद कर सकते।
0: जी जी राकेश जी,

0: तो इसी के साथ आप हमें ये भी बताइए कि आपके समय में जो आपका स्कूल होता था, जहाँ ब्रेल लिपि में पढ़ाई होती थी या नहीं भी हो पाती थी तो इस प्रकार से स्टाइल के ऊपर लिख के होती थी, तो आपके समय पे कोचिंग वगैरह होती थी क्या, या जो आपके इधर के विद्यार्थी होते हैं वो किस प्रकार की एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर पाते थे?
1: जी, वो भी एक्स्ट्रा क्लास इसलिए ज्वाइन करते थे कि जैसे हमारे जो हॉस्टल होते थे तो इस क्लास से ज्वाइन करते थे। कई बार जो है जिनको ज्यादा आता था तो फिर हम एक दूसरे की हेल्प लेते थे। जैसे कि 15 बच्चे, इनमें से अगर 2-3 बच्चे होशियार होते तो उनके साथ हम फ्रेंडशिप करके फिर उनसे सवाल पूछते थे, तो फिर उस हिसाब से जो है अपना जो है काम कर लेते थे।
0: जी राकेश जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात हमें बताई, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जैसा कि हमसे राकेश जी ने साझा की बातें, एक दूसरे की मदद करके भी हम सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जैसे पढ़ाई चाहे कोचिंग से हो रही हो या केवल स्कूल से, सेल्फ स्टडी यानी खुद से किया गया अध्ययन ही सीखने के लिए असली कूंजी मानी जाती है
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: आशुतोष।
0: प्रतिभा,
2: और क्लास में सीखी गई बातें जो हो हम घर पर खुद दोहराते हैं और समझते नहीं, तब तक वह ज्ञान पूरी तरह से हमारे लिए स्थायी नहीं बन पाता
0: बिल्कुल
2: है।
0: सही कहा प्रतिभा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। स्वयं अध्ययन करने से सोचने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। मार्गदर्शन चाहे किसी भी स्रोत से मिले, लेकिन खुद की मेहनत और नियमित अभ्यास ही किसी भी परीक्षा के सफर को आसान और सुलभ बनाता है।
2: जी, और इसी के साथ आज सुनते हैं अगला गीत।

0: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार,
1: आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: जी सर नमस्कार, मैं महेश बात कर रहा हूँ उज्जैन से।
1: नमस्कार, एक बार आपका नाम पुनः दोहरा दीजिए।
2: जी मेरा नाम महेश है और मैं आपका ये प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
1: जी महेश,
2: बड़ा अच्छा प्रोग्राम है।
0: महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया,
2: और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, नियमित रोजगार और ये सब चीजें लेकर के हम लोगों के लिए काफी बेहतर काम कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम आपका होता है आकाशवाणी से।
0: जी महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। महेश जी आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं कोचिंग की जरूरत के बारे में। क्या स्कूल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट की जो कोचिंग होती है उनके इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया जाता है उसके बावजूद कोचिंग लेना वाकई सार्थक है?
2: सर

0: मुझे ऐसा लगता है कि देखो, पहले के समय पर जब हमारे पिताजी स्कूल जाते थे, उस समय कोचिंग का कोई रोल नहीं था, ना के बराबर चीजें थी।
1: जी जी बिल्कुल
0: लेकिन अब आजकल दौर बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो मेरे ख्याल से अब चीजें और ज्यादा सुलभ और सरल होती जा रही
1: जी।
0: है ना। और पहले आपने अगर देखा हो तो पहले इतना कंपटीशन ना ही था, बिल्कुल भी नहीं था, तो चीजें बहुत इजी थी, आसानी से उपलब्ध थी। और परीक्षा में भी जो प्रतियोगी परीक्षा हो गई है, कोई से भी परीक्षा हो, उसमें भी जो छात्रों की संख्या थी वो बहुत लिमिटेड थी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन अब
1: जी
0: चूंकि दौर बदला है, 21वीं सदी है, और इस सदी में अब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर के इस पर अपना राज कायम किया, या हम कहें कि दोनों ने मिलकर जो है वो देश को संभाला है पूरे विश्व के अंदर।
1: बिल्कुल जी महेश जी, जैसा कि आपने
0: तो
1: हमें जैसा कि आपने हमें बताया कि टेक्नोलॉजी और जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, दोनों ने एक दूसरे का साथ लिया है और एक अच्छी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। इसी विषय पर महेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे थोड़ा समय पहले की अगर हम बात करें, तो जो कोचिंग क्लासेस होती थी, जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, वो फिजिकली होती थी, हमारे शहर में ही होती थी, या अधिक से अधिक हम पास के
0: बिल्कुल
1: शहर में जाते थे। तो जो आज के समय में ऑनलाइन कोचिंग का एक बढ़ता दौर है, तो वो कहाँ तक अच्छा है बुरा है, आपका उस पे क्या परिप्रेक्ष्य है?
0: दरअसल सर, बात ऐसी है कि ऑनलाइन कोचिंग मुझे ऐसा लगता है अफोर्डेबल भी है, बिल्कुल सस्ती भी है, और सहज भी है, और हर जगह उसकी पहुंच भी है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये इसके लाभ है कि घर में बैठा व्यक्ति, गांव में बैठा व्यक्ति भी बहुत ही नॉमिनल सी फीस में, वो घर पे अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहा है बेहतर कंटेंट के साथ।
1: जी
0: और इसके दुष्प्रभाव भी है, इसके लाभ है। तो देखो, जैसे विज्ञान अच्छा भी है और बुरा भी है, तो वैसे ये भी है। कई बार बच्चे जो है ऑनलाइन कोचिंग करते करते वो रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, और कब समय हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। और आजकल तो हम भी, अगर हमने एक रील देखी, दो देखी, तीन देखी, तो कब आधा घंटा से एक घंटा हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, आपने बहुत
0: तो
1: अच्छी बात बताई जी।
0: पर ये है कि अगर कोई बच्चा ठान ले, अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे ये टारगेट करना ही है, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती भी है और सुलभ भी है और आसानी है, हर कंटेंट आपके पास में है। और आजकल AI मॉडल्स चलने लग गए हैं, आपको क्या सूचना प्राप्त करना है तुरंत आप प्राप्त कर सकते हैं, पर एक गाइडेंस होना जरूरी है। इसलिए किसी को तो हमें गुरु मानना ही पड़ेगा, इसलिए कोचिंग के दौर में जरूरत अभी फिलहाल है केवल और केवल एक गाइडेंस के तौर पर। बाकी पूरी निर्भरता हम कोचिंग पे नहीं रख सकते, क्योंकि व्यक्ति भी खुद अपना भी दिमाग लगाएगा तभी वो प्रतियोगी परीक्षा या फिर अपने जीवन में कुछ सफल कर पाएगा।
1: बहुत अच्छी बात आपने हमसे साझा की, जरूरी है गाइडेंस, जरूरी है, पर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। आज के डिजिटल दौर में आशुतोष, इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं हमारे पास और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, एजुकेशन रिलेटेड, और आसानी से उपलब्ध हो ही जाती हैं। जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स हों, डिजिटल लाइब्रेरी और ई बुक्स के माध्यम से स्टूडेंट्स घर बैठे किसी भी विषय में गहराई से समझ सकते हैं कोई भी विषय, जैसा कि हमसे महेश जी ने भी बात साझा की।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। और इसी के साथ आधुनिक तकनीक से जो शिक्षा के अवसर हम हर घर तक पहुंचा पा रहे हैं, चाहे कोई छात्र स्कूल हो या कोई छात्र स्कूल जाता हो या कोचिंग हो, डिजिटल संस्थानों का जो डिजिटल संसाधन होते हैं,
1: जी
2: उनका
1: जी
2: सही और नियंत्रित उपयोग हर किसी की अध्ययन यात्रा को सुगम बना सकता है।
1: जी जी बिल्कुल सही बात आपने कही। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: जी नमस्कार, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, मैं परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
2: टेकचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
2: बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ मौसम कैसा है? वहाँ छिंदवाड़ा परासिया में तो बहुत ही हरियाली और बहुत ही अच्छा मौसम होता है, कैसा है आज आपके यहाँ?
3: सर अभी परसों के दिन से कुछ थोड़ा सा बारिश चालू हुई है, इसके पहले थोड़ा सा 4-6 दिन का जो अंतराल हो गया उसमें काफी गर्मी और उमस थी, लेकिन अभी परसों रात से जो है सर बारिश कंटिन्यू हो रही है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है।
2: बिल्कुल टेकचंद जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसके साथ टेकचंद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि आज का हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं कोचिंग की जरूरत के बारे में। क्या वाकई संस्थानों की पढ़ाई के बाद में कोचिंग लेना, जो आज के समय में लगभग बच्चे शाम के समय कोचिंग जाते हैं अपने स्कूल की स्टडीज के बाद में, ये क्या जरूरी है?

0: देखिए सर, आज का जो समय है उसमें तो सर कोचिंग की आवश्यकता जरूरत पड़ ही रही है
1: जी जी,
0: क्योंकि जो आज का माहौल है सर, या जिस हिसाब से जो आजकल स्कूलों में या मतलब संस्थानों में जो पढ़ाइयाँ होती है उसके हिसाब से ज़रा बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। लेकिन सर जैसे कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ
1: जी,
0: तो हम अपने जमाने में जो पढ़ते थे सर, तो हमारे नाम पे हमारे समय में सर कोचिंग नाम ही नहीं था
1: जी जी, स्कूल की पढ़ाई पे ही पूरे डिपेंडेंट होते
0: जी
1: थे।
0: जी, क्योंकि सर मैं 60 साल से ऊपर 6 साल और रुका है, तो आप भी समझ सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। तो उस समय सर कोचिंग तो हम जानते ही नहीं थे। हाँ, ट्यूशन के नाम पर सर कभी कोई ऐसे जो सब्जेक्ट हमारे रहते थे जैसे मैथ्स वगैरह है, जो कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती थी, तो हम अपने गार्जियन से बोलते थे कि भाई हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कहीं आप किसी टीचर से हमें उसकी कोचिंग वो करवा दी थी, ट्यूशन करवा दी थी जी जी। लेकिन सर मैडम, हम लोगों ने तो कभी कोचिंग का नाम सुने थे और ना ही हमने कभी ट्यूशन लिए है।
1: जैसे अभी कुछ साल पहले तक ऑफलाइन कोचिंग काफी चलती थी, बट अभी अब ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड ज्यादा है और काफी मुफ्त मतलब एजुकेशनल कंटेंट हमें इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है, तो इनमें से आपको क्या लगता है ये उपयोगी है ऑनलाइन कोचिंग्स?
0: मैडम पढ़ाई के हिसाब से तो मुझे उपयोगी लगती है कि आज के बच्चों को ऐसा लगता है कि हम इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे करके
1: जी, और इससे काफी काफी टीचर्स तक भी पहुंचना और काफी वैरायटी में कंटेंट भी मिल जाता है जैसा आपने बताया।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ आपकी बातें साझा करने के लिए, धन्यवाद।
0: शुक्रिया मैडम।
1: जैसा कि आशुतोष हमसे बात की, इन्होंने कई बार छात्र ये सोचते हैं कि दिन में 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ना ही एक सफलता का एकमात्र जरिया है, लेकिन मुझे लगता है वास्तव में पढ़ाई की घंटों की संख्या से ज़्यादा उसकी क्वालिटी और आप कितने फोकस से पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
2: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। जैसे कि 4 घंटे की पूरी एकाग्रता और समझ के साथ की गई पढ़ाई बिना मन के किए गए 10 घंटों की पढ़ाई से कहीं ज़्यादा फायदेमंद होती है। गुणवत्तापूर्वक अध्ययन ही कम समय में अधिक और बेहतर देता है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सही है, रिफंड ही नहीं आया।
1: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
0: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से।
6: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
7: नमस्कार, मैं इंदर सिंह जादौन ग्राम मताना कला जिला उज्जैन से बोल रहा हूं।
5: इंदर सिंह जी,
7: और
5: मैम
7: जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए
5: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
7: बढ़िया। आज का जो टॉपिक है, आप भी देखिए कि अपन स्कूल में 45 मिनट का पीरियड रहता है, किसी को भी ज्ञान की बात अपना ब्रेन आधे घंटे 45 मिनट से ज्यादा नहीं झेल पाता। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पीरियड जो लगते हैं वो 45 मिनट से ज्यादा नहीं रहते, या किसी महापुरुष के प्रवचन भी होते हैं तो वो 45 मिनट से ज्यादा नहीं होते। लेकिन आज क्या हो रहा है, सुबह 7 बजे से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर 2 बजे छुट्टी होती है, जिस गाड़ी से आते हैं घर पहुंचते हैं तो 3 बज जाते हैं, फिर घर पे कुछ हाथ मुंह धोए, भोजन किया थोड़ा बहुत, और फिर उनको कोचिंग का टाइम हो जाता 4 बजे से, तो फिर वो 7 बजे, तो सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक 12 घंटे, तो आप बताइए कैसे वो बच्चा इतना वो कर ले, कितना लोड रहता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल इंदर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों के ऊपर काफी सारा प्रेशर आ रहा है, वो सुबह 7 बजे से उठकर रात के 8 बजे तक, 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक अपना पूरा समय। जी
7: हाँ जी, हाँ जी। दूसरा आपने बोला कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है, पर बच्चों को आप मोबाइल समय से दीजिए, बच्चों को टीवी देखने का भी समय के नहीं, आप आधे घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे, आधे घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं देखेंगे, तो वो ऑनलाइन सब्जेक्ट के चक्कर में मोबाइल देखने लग जाते हैं, तो ये मोबाइल भी जो है पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा एक उनका दुश्मन है।
5: बिल्कुल।
7: और इसके अलावा आजकल गुरु शिष्य परंपरा नहीं रही, हम जब पढ़ते थे तो हमने जो है स्कूलों में लिपाई की, पूरे स्टाफ के लिए हमने चाय बनाई, और वो एक जमाना अलग था। तो बच्चों के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, प्लस उसके साथ उनको खेलकूद भी जरूरी है, पर आजकल खेलकूद संयुक्त परिवार रहे नहीं, एकल परिवार हो गए, बच्चे घर में बोर होते हैं, तो ये जो माहौल आजकल का जो चल रहा है पढ़ाई का, इतना माँ बाप जो दबाव दे रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है उनके लिए।
5: बिल्कुल बिल्कुल इंदर सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई कि जो समय का मैनेजमेंट है वो बच्चों का काफी बिगड़ चुका है, और आज के समय में प्रेशर इतना है, लोड इतना है कि वो पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। इंदर सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें आप रोज शाम को कोचिंग जाते हुए देखते होंगे, तो क्या उनकी पढ़ाई में वाकई वो कोचिंग काफी हेल्प करती है, या ये सिर्फ आज के समय में जब सब बच्चे जा रहे हैं तो दोस्तों को देख कर जाने वाली फीलिंग हो गई?
7: ये कोचिंग तो करती है मदद, पर क्या है, आप मेरे बात का अन्यथा कोई स्कूल वाले ना लें कि जो मैडम स्कूल में पढ़ा रही तो उनके लिए उसमें कोचिंग घर पे करना जरूरी है, क्योंकि एक बिजनेस भी हो गया आजकल
5: जी,
7: तो वो पढ़ने वाले बच्चे तो घर पे भी मेहनत कर सकते हैं, पर सब्जेक्ट भी इतने टफ हो गए हैं कि उसको कवर करना, जो बच्चे कमजोर है उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। ICSE CBSE के बाद अब ICSE आ गया, जो बच्चा कवर नहीं कर पाता पेरेंट्स उसको भी ICSE दिलवा देते हैं, फिर वो बच्चा पिछड़ता है, फिर माँ बाप उनके दिमाग पे दबाव बनाते हैं, वो खुद तनाव में रहते हैं, बच्चों को टेंशन रहती है,
6: इसके
7: तो ये कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य
6: जी ये जरूरी है कि पेरेंट्स दबाव ना बनाए, और थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने दें, जैसे खेल कूद में भी बहुत सारे आजकल हो चुके हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज हो, बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज में भी पढ़ाई से हटके भी बच्चों को ओलंपियाड
7: सब कुछ जरूरी है। मैम, मैं कल सुशील दोषी जी की कमेंट्री को यूनुस खान जी वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि मुझे भी पूरक मिली, मैंने भी पेरेंट्स की मार खाई, और आज देखो पद्मश्री मिला, इतने जो है इतने बड़े कमेंटेटर हुए, तो आदमी में वो काबिलियत, जो काबिलियत हो उस विषय पर उनको सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। अभी हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को बोला था कि खेलेंगे तो खेलेंगे, तो पढ़ाई के साथ में खेलकूद भी जरूरी है।
5: बिल्कुल बिल्कुल इंदर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, ये वाकई हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख की तरह काम करेगी। और इसके साथ इंदर सिंह जी, हम आपसे जाते जाते ये पूछना चाहेंगे कि जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं, जितने युवा हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आज के इस प्रेशर भरे समय में, इतनी भागदौड़ भरे समय में, आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
7: मेरी यही सलाह है, जैसे टीन एज बच्चे रहते हैं, आपने देखा हो बड़ी बड़ी कोचिंग में भी आजकल सुसाइड कर रहे हैं, तो ये एक बच्चों की एक उम्र रहती है 28 से 23 साल,

0: अपने जो है जिंदगी से खिलवाड़ करके सुसाइड कर लेते हैं, जबकि पिछड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब जो है किस चीज में पिछड़ेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए और मतलब दबाव में रहकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा को जो है जीवित रखना चाहिए। पहले देखो गुरुकुल में पढ़ते थे, कितना मान सम्मान जो है टीचरों का होता था, आज वो बात रही नहीं।
1: जी,
0: टीचर भी यदि कुछ बोल देगा तो पेरेंट्स उनके घर पे लड़ने चले जाते हैं।
1: जी जरूरी है, बट हम ये भी कहना चाहेंगे कि बच्चों को कंपैरिजन या फिर कंपटीशन से हटकर भी खुद पर ध्यान देना चाहिए।
0: जी जी
1: धन्यवाद।
0: जिस फील्ड में बच्चे की रुचि है ना, उसी फील्ड में उसको जो है उतारा जाए तो ज्यादा बेटर रहता है।
2: बिल्कुल इंदर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद आप सबको भी, और आज बहुत अच्छी बरसात हुई इंद्रदेव, मेहरबान है, महाकाल की सवारी, जय श्री महाकाल,
2: जय श्री महाकाल।
1: जैसा कि हमसे हमारे श्रोता ने बात की आशुतोष की, बच्चे आजकल कंपटीशन देख के और घबरा जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे लिए एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता भी खुला होता है। ये बच्चों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चों पर दबाव ना बनाकर उन्हें उस सिचुएशन में संभालें और मोटिवेट करें, जिससे वो सिचुएशन को समझें और आगे और पढ़ाई करके हासिल कर सकते हैं चीज़ें। और अक्सर छात्र और स्कूल कॉलेज जो कोचिंग के होते हैं वो समय संतुलन उनका बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट को भी उन्हें सिखाना चाहिए और कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है बच्चों को वो बताना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, एक संतुलित दिनचर्या मानसिक तनाव को दूर रखती है। पढ़ाई के साथ साथ सही नींद, पौष्टिक आहार और खेल कूद के लिए समय निकालना भी उतना ही आवश्यक है, जिससे फोकस और कार्यक्षमता दोनों बनी रहती है।
1: और इसी के साथ हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं धीरज लबारी गुजरात से बात कर रहा हूँ।
2: धीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में, कैसे हैं आप?
3: हम अच्छे, और आप युवाणी पूरी टीम और आकाशवाणी उज्जैन परिवार सब कुशल हो गई।
2: बिल्कुल धीरज जी, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे आजकल जो डेली रूटीन में हमारे आसपास के लोग हैं उनसे बहुत ही खास तरीके से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कोचिंग के बारे में, जो स्कूल कॉलेजेस जो दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उसके लिए जो आजकल के बच्चे एक बहुत बड़ी तादाद में कोचिंग लगा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कोचिंग संस्थान चल रहे हैं मार्केट में, तो आपका इस पूरे विषय पर क्या विचार है, आपका क्या सोच है कि क्या वाकई कोचिंग ज़रूरी है या स्कूल की पढ़ाई पर्याप्त होती है?
3: जी सर, हम हमारे ज़माने की बात करें, अभी मेरी आयु साल 57 है, जब हम अभ्यास करते थे तो हम गाइड भी नहीं रख पाते थे, यानी रखते नहीं थे। हम हमारे जो अभ्यासक्रम के जो पुस्तक थे, मान लो कि गुजराती है, हिंदी है, उसमें से हम ढूंढ के हम प्रश्न के जवाब देते थे, उत्तर देते थे सर, और वही समय पर हम अपेक्षित के कोई और सहायक के लिए कोई पुस्तक नहीं रखते थे और हमें बढ़िया सा उसमें से हमको सॉल्यूशन मिल जाता था। आज की दौर की बात करें सर, तो आज के दौर में एक मानसिक तनाव रहता है बच्चों को पर, और इसके बच्चों को तनाव की वजह से उनको कई बार स्कूल में आने के बाद वो याद नहीं रहता कुछ भी, वो फिर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, यानी जो भी है कोचिंग। तो मेरे ख्याल से जो पुस्तक में है, जो हमें पढ़ाया गया है, उसमें से जो उत्तर मिलता है वो मेरे ख्याल से कोचिंग में मेरे ख्याल से नहीं मिलता, लेकिन अभी जमाने का जो मांग है, डिमांड है, वो अपने माँ बाप पूरी कर रहे हैं। और पहले जैसे माँ बाप, कई ऐसे भी माँ बाप हैं, माता पिता, जो बच्चे को पढ़ाते थे घर पे, और कई दादा दादी भी उनको सलाह सूचन करते थे, तो पहले जरूरत नहीं पड़ती, अभी समय के डिमांड के अनुसार ये सब आवश्यकता हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल से अपने जो स्कूल में या स्कूल में जो पढ़ाते थे उसमें से हमको सरल उत्तर मिल जाते थे।
1: जी जी, और आजकल जैसे ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग का एक जो अलग अलग, पहले ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा जाते थे और अब ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड है, बच्चे घर पर ही मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू पढ़ लेते हैं, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
3: देखा जाए तो एक दो बातें हैं इसमें, अगर मोबाइल में पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आँखों को भी नुकसान होता है और इसमें अक्सर भी जो वो बिल्कुल छोटे होते तो नुकसान तो होता है, लेकिन समय ऐसा है तो अभी बड़ी स्क्रीन पर नहीं है, मोबाइल से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आँखों को भी नुकसान होता है। लेकिन अगर उसकी जगह वो जो पुस्तक होते हैं वो जो उसमें से अगर पढ़े तो बहुत सही रहेगा, लेकिन समय ऐसा आ गया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़े, सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़े, मोबाइल का उपयोग करना, तो ये करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो स्कूल वाला, स्कूल वाला जो मैं तो जानता हूँ, तब तक के हम स्कूल के आने के बाद वहाँ पढ़ाई करते थे, फिर बाद में छोड़ा पड़ते थे, उसके बाद खेल कूद में ध्यान देते थे, तो वो सारा मगज का जो बोझ था वो स्कूल खेल कूद में चला जाता था, और हमारी जो मगज शक्ति थी वो जो स्कूल वाले जो पाठ्यक्रम है उसमें से हम सवाल ढूंढ पाते थे, जवाब दे देते थे।
1: जी जी, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी जानकारी साझा करने के लिए।
3: जी धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद और पूरी यूनिट टीम का धन्यवाद।
1: धन्यवाद। जैसा कि हमसे हमारे श्रोता ने बातचीत की और कहा कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं आशुतोष, बट हमें ऐसा लगता है कि आजकल ऑनलाइन कोचिंग तो है ही, बट ऑफलाइन कोचिंग का जो दौर था वो भी ठीक था, पर ज़्यादा ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे भी गौर करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही प्रतिभा।
1: और एक टेक्निक मुझे याद आ रही है जो पोमोडोरो टेक्निक, जो जैसे स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, इसमें कहा जाता है कि 25 मिनट पूरी तरह से फोकस से पढ़ाई करने के बाद कुछ 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लिया जाए, जिससे हमारा दिमाग हमेशा तरोताज़ा रहता है और थकान महसूस नहीं होती है बच्चों को।
2: बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है प्रतिभा। लंबे समय तक बिना रुके पढ़ने के बजाय जो छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ना, जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें याद रखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसके साथ की गई ये स्मार्ट पढ़ाई हमेशा बेहतर रिजल्ट देती है। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आशुतोष, जैसा कि आज का हमारा विषय है, क्या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, जय श्री महाकाल। शिवा लोहट MP से बात कर रहा हूँ।
2: शिवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: जी सर जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक ठाक।

0: शिवा जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, हमारा विषय है कोचिंग के बारे में, जो आज का बदलता समय है। पहले इतनी कोचिंग वगैरह नहीं होती थी, पर आजकल के समय में हर 10 में से 9 विद्यार्थी स्कूल से कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, और इस पूरे विषय पर आपका क्या विचार है?
1: सर जी, देखिए कोचिंग तो बच्चे आजकल के बगैर कोचिंग के चल ही नहीं सकते हैं। चाहे वो छोटी से छोटी क्लास में भी क्यों ना होंगे, तो उनके लिए कोचिंग बहुत जरूरी होती है। तो और मेहनत करने वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि मीट जैसी परीक्षा घर से ही पास हो जाते हैं सर। बहुत से बच्चे ऐसे मेहनत करने वाले होते हैं सर।
0: जी जी शिवाजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दोनों प्रकार के विद्यार्थी होते हैं हमारे बीच, जो घर से भी पढ़ाई करके एग्जाम पास कर लेते हैं और जो कोचिंग की सहायता से एग्जाम पास कर पाते हैं। शिवाजी, इसी के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके स्कूली समय में क्या आपके आसपास इस प्रकार की कोचिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी? अगर थी तो क्या आपने भी कोचिंग जैसा कुछ अटेंड किया है?
1: नहीं सर, देखिए हमारे समय पे तो ऐसी कोचिंग वगैरह से नहीं थी, पर ये थी कि माता पिता जितना पढ़ाते थे उतना ही याद रहता था। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं सर जी कि माता पिता अगर कोई समझाएंगे ना किसी टॉपिक पे या कोई सब्जेक्ट के बारे में उनके पास जानकारी, तो बच्चे उनको बेवकूफ समझते हैं।
0: जी, बिल्कुल, आपने शिवाजी काफ़ी अच्छी बात हमें बताई कि आजकल सभी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और इसी के साथ हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जैसा कि हम बात कर रहे हैं, क्या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं, वैसे आशुतोष, प्रतियोगी या फिर बोर्ड परीक्षाएं की तैयारियों के दौरान जो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा लोग टेंशन ले लेते हैं पढ़ाई, और उसी के कारण हमारी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसलिए मन को शांत और खुश रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने प्रतिभा। ध्यान, हल्का व्यायाम और अपनों के साथ की गई कई कन्वर्सेशन मानसिक शांति बनाए रखने में बहुत मदद करती है। एक स्वस्थ और प्रसन्न मन से की गई पढ़ाई हमेशा अधिक प्रभावी और सुखद होती है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी
1: नमस्कार,
2: नमस्ते
1: आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप?
2: जी बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: योगेश जी, जैसा कि आज हमारा विषय है, हम बेहद ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। हमारा विषय है कोचिंग। क्या कोचिंग क्लासेस वाकई जरूरी हैं?
2: देखिए, हर चीज का जैसे दो पहलू होता है, तो मेरे हिसाब से इनका भी दो पहलू है, जरूरी भी है। और हम लोग जैसे हमारे समय में तो कोचिंग वगैरह का ऐसे कोई व्यवस्था या फिर उस तरह का प्रयास नहीं हुआ है, तो हम लोग तो अपने स्वयं के मतलब अध्ययन करके ही आगे बढ़े हैं। लेकिन अब जैसे काफी प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, तो मतलब एक अतिरिक्त पढ़ने का एक जरिया माना जा सकता है कि जो छूट गया तो वो अच्छे अनुभवी जो शिक्षक वगैरह हैं उनका एक और मार्गदर्शन मिल सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसी के साथ योगेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपके समय में कोचिंग वगैरह नहीं होती थी, पर फिर भी कठिनाइयां तो हर विषय में होती हैं, तो आप उनका हल कैसे निकालते थे? क्या आपके यहाँ पे ग्रुप स्टडी होती थी या क्या तरीका अपनाते थे आप?
2: हमारे यहाँ उस समय की बात अगर करें तो ज्यादातर तो स्व अध्ययन ही मुख्य चीज था, क्योंकि शिक्षकों की कमी और आने जाने में भी थोड़ा सुविधाओं का अभाव, तो सबसे ज्यादा चीज तो स्वयं पढ़ना था मेरे हिसाब से।
1: जी जी, और जैसा कि आपने कहा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपके हिसाब से क्या बिना कोचिंग के भी सही रणनीति और नियमित मेहनत से सफलता पाई जा सकती है?
2: पाया जा सकता है, वो तो हमारे शिक्षा पर निर्भर करता है, हम कितने समय पढ़ाई करते हैं, कितना हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। ये रहता है कि हम जो चीजें वर्तमान में अपने आसपास देखते हैं, तो अभी जितना मैं अनुभव करता हूँ कोचिंग संस्थान काफी है और काफी ज्यादा बच्चे भी मतलब पढ़ने जाते हैं, तो वर्तमान दौर देखे तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा बहुत फायदेमंद है।
0: बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो कोचिंग क्लासेस होती हैं, उसमें जो एक माहौल बनता है आजकल, जैसे हम स्कूल में रहते हैं, हम क्लासों में रहते हैं, तो हमारे आसपास कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं और कोचिंग क्लासेस में अलग अलग स्कूलों से अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, तो जब एक वहाँ एक माहौल बनता है, हम आसपास के स्कूलों से समझ पाते हैं, नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, तो इस पूरी चीज़ पर आपका क्या कहना है?
2: एक इसमें भी सामाजिकता का एक समावेश कर सकते हैं, और जो एक जैसे कहावत है ना, बहुत सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, तो ये ठीक उसी तरह से है कि कई अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग सिटी के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल योगेश जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, और इसी के साथ आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जैसा कि हमारे साथ हमारे कॉलर ने बातें साझा की पढ़ाई के दौरान भी हम कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें, बट उसके दौरान ऐसा होता है ना कि शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत होना, जो हमारे आखिरी रिवीजन के वक्त में काम आए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों, माइंड मैप्स हों, जो अपने शब्दों में लिखना परीक्षा के समय रिवीजन को बहुत बेहद आसान बना देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, जैसा कि हमें योगी जी ने बताया भी कि सेल्फ स्टडी अगर की जाए और बच्चा अपनी स्मार्ट स्टडीज़ के ऑप्शन चुनने में सही निर्णय ले, तो वो सही तरीके से बिना कोचिंग के भी एग्जाम पास कर सकता है। खुद के बनाए नोट्स न केवल समय चाहते हैं बल्कि अवधारणाओं को दिमाग में पूरी तरह स्पष्ट भी कर देते हैं। ये छोटी सी आदत हर विद्यार्थी की तैयारी को गति देती है। इसी के साथ हमसे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
3: नमस्कार मैडम, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा उज्जैन से।
0: लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप?
3: बस बिल्कुल मस्त हैं और स्वस्थ हैं। अभी प्रोग्राम आप युवाणी सुन रहा हूँ अभी एफएम के माध्यम से।
0: जी जी लोकेंद्र जी, काफी समय बाद आपसे बात हो पा रही है।
3: हाँ जी, और भी मेरे दोस्त मित्र लगाते हैं फोन, तो थोड़ा मैं बीच में रुक जाता हूँ ताकि अन्य श्रोताओं को भी मौका मिल सके।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है लोकिन जी। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो कोचिंग क्लासेस से जुड़ा हुआ है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपका इस पूरे परिप्रेक्ष्य पर क्या विचार है कि कोचिंग क्लासेस आज के समय में वाकई ज़रूरी है या फिर ये बस सभी बच्चे एक दूसरे को देख कर जा रहे हैं और इसका कोई खास अर्थ नहीं है।
3: हाँ जी, कोचिंग क्लास तो आज के समय में जैसे कि अभी देख रहे हैं कि कोचिंग क्लास तो बहुत ज्यादा हो गई है और कोचिंग क्लास में बच्चे आजकल जाते भी हैं। मैंने तो मेरे बच्चों को पढ़ाया है तो करीब 8वीं क्लास तक तो घर में ही वो बच्चे पढ़े हैं। जब थोड़ी आगे की क्लास आई तभी मैं अपने बच्चों को मतलब कोचिंग क्लास में पढ़ाया है, बाकी घर पर ही पढ़े 8वीं क्लास तक। तो
1: आपका क्या मानना है जो जी जैसे कोचिंग पे डिपेंडेंसी होने से बच्चों का रिजल्ट ज्यादा बेहतर आता है या फिर सेल्फ स्टडी से?
3: हाँ, सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए घर पे, क्योंकि अपन जितनी मेहनत करेंगे उतना फल हमें उस क्लास में मिलेगा और हमारी पढ़ाई पे हमें ध्यान भी ज्यादा केंद्रित करना पड़ेगा। तो कोचिंग क्लास एक ऑप्शन है अपने लिए कि अगर हमें लगता है कि हम ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है तो फिर हम कोचिंग क्लास की ओर जा सकते हैं। अगर हमारा लगता है कि हमें अब पूरा कोर्स हम घर पे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसमें कोचिंग क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने हमें बताया लोकिन जी, बहुत अच्छा लगा है जानकर। और जैसा कि आपने बताया कि हम घर पे भी रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, कोचिंग की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। लोकिन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे घर पर जब छोटे भाई बहन होते हैं तो जो बड़ी कक्षा में होता है या जो कोई छोटी कक्षा में होता है वो एक दूसरे की सहायता भी कर पाते हैं, जैसे कि जो हमारे युवा साथी हैं अनिकेत, इशिका और अर्पिता, वो भी एक दूसरे की आपस में मदद कर पाते होंगे पढ़ाई में?
3: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आप सही बात कही है। जैसे मेरा लड़का बड़ा, मेरी बिटिया छोटी थी जब, तब वो बड़ी दो क्लास आगे था तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता था तो मेरा लड़का मेरी बिटिया को समझा देता था। ऐसे करके वो 8वीं तक दोनों रहे मतलब पढ़ाई में। उसके बाद में कोचिंग क्लास हुई और कोचिंग क्लास आजकल आपने देखा होगा हाईटेक कोचिंग क्लासेस भी हो गई हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास हो गए हैं। उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर उस विषय के अंदर कमजोर है, जिसमें अपने को लगता है कि हाँ ये विषय इससे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसको उसी विषय की कोचिंग क्लास ज्वाइन करवाना चाहिए। जैसे कभी कोई मैथ्स की भी करवा दी उसको, दूसरी साइंस की भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करवा दी, मतलब 2-3 जगह उसको कोचिंग क्लास पढ़ने के लिए जाना है तो यह अत्यधिक दबाव हो जाता है बच्चे के ऊपर।
1: जी जी, बिल्कुल सही बात कही। और इसी के साथ ये भी जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाई की कोचिंग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर वाली कोचिंग भी लगवाई जाए पेरेंट्स के माध्यम से, कि जिससे बच्चे अलग एक्टिविटीज में भी भाग लेकर सीखें और बढ़ें,
0: चाहे वो खेल कूद हो कि या फिर संगीत हो।
3: जी जी जी बिल्कुल। और आजकल छोटे बच्चे, अपन 2-2.5 साल में आजकल बच्चों को स्कूल में प्रवेश के लिए माता पिता भेज देते हैं, पर उस 2-2.5 साल में आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो आजकल कलर और उसमें के कुछ कास्ट आ गए हैं घर में पढ़ाने के लिए बच्चे। मेरे पड़ोस में एक गुड़िया है, 2-2.5 साल की है
1: जी जी।
3: वो सारे कलर के कलर जो रहते हैं ना उसको वो देख के बता देती है ये किस कलर का कार्ड है, मतलब टोटल कलर, टोटल ABCD देख के बता देती है। तो बच्चे अभी वो भर्ती नहीं करा है उसको स्कूल में, पर घर पे ही उसको इतना तैयार कर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: छोटी उम्र में ग्रैस्पिंग पावर भी काफी अच्छी होती है बच्चों की, तो सीखते भी जल्दी हैं।
3: जी जी जी जी,
1: धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए।
3: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जैसा कि आशुतोष हमारे कॉलर ने बात की और बताया, वैसे मेरे हिसाब से बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो डालना ही चाहिए, और उसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये सही भी है पर कहीं ना कहीं गलत भी होता है कि बच्चों को इतनी जल्दी स्कूल नहीं भेजना चाहिए। आजकल प्ले स्कूल का ट्रेंड भी बहुत हो गया है, पर उससे बच्चों का जो बचपन है वो धीरे धीरे छिनने लगता है। और जैसे बच्चे मॉक टेस्ट और परीक्षा हॉल में के माहौल को समझकर और टाइम मैनेजमेंट करके मॉक टेस्ट हल करना भी आजकल बच्चों के लिए बहुत

0: ज़्यादा उपयोगी हो गया है, जैसे समय सीमा के भीतर कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, जिससे मेन एग्ज़ाम के दिन बच्चों को घबराहट ना हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिभा, कि जैसे हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो न केवल हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को सुधार लेते हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से इस प्रश्नों को चुनने का कौशल भी सिखाते हैं।
0: जी
1: यह
0: जी
1: निरंतर अभ्यास ही किसी भी छात्र को निपुण बनाता है। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आशुतोष, समय कितनी तेज़ी से भागता है ना, और हमारे आज के इस स्पेशल फ़ोन इन कार्यक्रम का यह 1 घंटा इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। सच में आज कोचिंग ज़रूरी है या नहीं विषय पर हमारे श्रोताओं ने जो व्यवहारिक बातें और अपने अनुभव साझा किए, अपनी बातचीत साझा की, उन्होंने दिल जीत लिया। बिल्कुल
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। आज का कार्यक्रम सच में बहुत ही एनर्जेटिक और आंखें खोलने वाला था। हमारे श्रोताओं के कॉल्स ने साबित कर दिया कि आज का युवा केवल भेड़ चाल में नहीं भागता, बल्कि बहुत ही समझदारी से अपने फैसले लेता है।
0: बिल्कुल आशुतोष, प्यारे श्रोताओं, आज जितने भी श्रोता हमसे लाइव जुड़े और जो लाइंस व्यस्त होने के कारण बात नहीं कर पाए, आप सभी के इस एक्टिव सहभागिता और प्यार के लिए आकाशवाणी उज्जैन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हर कहानी ने आज की हमारी इस चर्चा को बेहद सार्थक बना दिया।
1: बिल्कुल साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन और हमारा यह चुलबुला मंच युववाणी, जो कि फिर लौटेगा कुछ और नई तरंगों, मजेदार विषयों और उमंगों के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ हम थे आपके रेडियो मित्र आशुतोष
0: और मैं प्रतिभा। हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, ये था सजीव फोनिन कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 MHz प्रसार भारती के अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 6 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ भक्ति गीत कार्यक्रम भजन

संध्या में सर्वप्रथम आपको सुनवाते हैं ये सरस्वती वंदना मेनका मिश्रा के स्वर में, संगीत से सजाया है हृदयनाथ मंगेशकर ने और इसे लिखा है राकेश धामा ने।

श्रोताओं, जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना होता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज थोड़ी देर मंत्र ध्यान करना बहुत अच्छा होता है। मंत्र उच्चारण और ध्यान को नियमित दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इससे अपने भीतर करुणा, प्रेम और सेवा की भावना भी जागृत होती है। अब आपको सुनवा रहे हैं ये गणपति वंदना, गार्गी वोरा के स्वर में। संगीत आलाप देसाई का है और लिखा है दिलीप रावल ने।

कहते हैं कि कोई साधना भी तभी पूरी होती है जब हम अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जब हम किसी के साथ अपना समय, सहयोग और स्नेह साझा करते हैं तो खुद भी भीतर से समृद्ध होते हैं। मन की शांति प्राप्त करने के लिए केवल जंगल, आश्रम या पहाड़ों पर जाना ही आवश्यक नहीं है। कुछ मिनटों के मंत्र जाप, ध्यान, योग के नियमित अभ्यास से भी मन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। मंत्र जाप की प्रक्रिया में सुबह या शाम को शीतल, स्वच्छ और शांत वातावरण में बैठकर प्रभु स्मरण करके सरल से आसन, श्वास तकनीक और ध्यान की शुरुआती विधियों से शुरू करके आप जपमाला से मंत्र जाप भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे लय में गाकर भी अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको सुनवाते हैं ये अगला भजन, राम सीता का भजन, स्वर और संगीत रतन मोहन शर्मा का है।

चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रे।

0: नदी किनारे इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं धरती की खुशियां लौटाएं।
2: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
3: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
2: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
3: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास।
2: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
3: और उसको पिएं छानकर उबालकर।
2: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
3: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
4: पानी रे पानी,
2: आओ मिलकर करें प्रयास,
3: शुद्ध पानी हो सबके पास।
5: आकाशवाणी उज्जैन से भजन संध्या के इस कार्यक्रम में अब सुनिए बजरंग बली हनुमान का ये भजन।

स्थिर करते हैं। आंतरिक ध्वनि से मन में बदलाव होते हैं। जीवन में छोटे छोटे अच्छे कदम ही परिवर्तन लाते हैं। साधना के लिए कोई भी शर्त नहीं होती है। प्रेम भाव और सेवा ही जीवन का आधार होते हैं। अनुशासन और नियमित अभ्यास से जीवन को सफलता मिलती है। तो लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम भजन, जो है राधा रानी का भजन, अनूप जलोटा के स्वर में। संगीत है अक्षय राजू सक्सेना का और गीतकार हैं राजन लियालपुरी।

श्रोताओं, इसी अंतिम भजन में हमने राम और श्याम दोनों को याद कर लिया है। तो अब बस इसी भक्ति गीत के साथ ही अब संपन्न होता है भजन संध्या का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी उज्जैन है, शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं तेरे मेरे सपने, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में, संगीतकार हैं SD बर्मन और गीतकार हैं नीरज।

अभी आपने सुना तेरे मेरे सपने फिल्म जो 1971 में आई थी, इसका गीत लता मंगेशकर के स्वर में। अब आपको सुनवाएंगे आ गले लग जा फिल्म जो 1973 में आई थी, इसका गीत जो किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में है। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

श्रोता, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी उज्जैन है, FM 102.5 MHz पर। कुछ ही पलों में क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम आजकल भोपाल से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुनिया के विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद को नई दिशा देते हुए भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 का सफल समापन हुआ। 5 अगस्त से शुरू हुए इस आयोजन में संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, रचनात्मक उद्योगों, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। भोपाल में 3री ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप

0: मीटिंग हुई। बैठक में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर के डिजिटलीकरण और सतत विकास में संस्कृति की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के जिम्मेदार उपयोग, सांस्कृतिक विविधता और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण पर भी विचार किया गया। बैठक में अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। भोपाल में आयोजित ये बैठक केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रही। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत की सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत से परिचित कराने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भ्रमण कराया गया। इसके बाद 2 दिवसीय ब्रिक्स कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि ये आयोजन प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है।
1: राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे।
0: भोपाल में आयोजित 11वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इस पूरे कल्चर ट्रैक का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रही। भारत सहित 10 ब्रिक्स सदस्य देशों और 4 साझेदार देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति मंत्री बैठक में मौजूद रहे, जबकि मिस्र वर्चुअल माध्यम से जुड़ा। बैठक के अंत में भोपाल डेक्लरेशन को अपनाया गया। भोपाल डेक्लरेशन में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज के दौर में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता रचनात्मक क्षेत्र को तेजी से प्रभावित कर रही है, भोपाल डेक्लरेशन में कलाकारों और रचनाकारों के अधिकारों, पारदर्शिता और कॉपीराइट सामग्री के AI प्रणालियों में इस्तेमाल के संबंध में उचित और समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल डेक्लरेशन को आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट बताते हुए आयोजन की व्यवस्थाओं और अतिथियों के सत्कार के लिए मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।
2: भोपाल डिक्लेरेशन में जैसा मैंने कहा, पहली बार आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट बना है। अब इन आउटकम्स पर जब कभी भी चर्चा होगी, अगली मीटिंग में, अगले साल पूरे चाइना में, पूरे साल भर संस्कृति समूहों की बैठक में भोपाल डिक्लेरेशन गूंजेगा, और उसके बाद जब कभी भी चर्चा होगी तब निश्चित रूप से भोपाल का नाम इस सारे आउटकम्स के साथ में हमेशा के लिए जुड़ गया। तो मैं मानता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, इन सब ने जो भाव व्यक्त किया, मैं भी उसके लिए मध्य प्रदेश का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ।
0: भोपाल डिक्लेरेशन के साथ भारत ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा भी की, वॉलंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री की पायलट परियोजना। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के कलाकारों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, पेशेवर नेटवर्क को मजबूत करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए अवसर पैदा करना है। इस तरह संस्कृति को केवल विरासत के संरक्षण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था, डिजिटल बाजार और लोगों के बीच संपर्क से जोड़ने की दिशा भी दिखाई गई। भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चर ट्रैक में भारत ने अपनी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के साथ साथ दूसरे देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को समझने और उनके संवाद करने का अवसर भी दिया। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। पहले बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की।

0: भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसके तहत 9 से 17 अगस्त 2026 तक देशवासी अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का उत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।
1: 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान का जो शुरुआत की, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों के किए गए बलिदान, संघर्ष, साथ अहिंसक आंदोलनों के भरोसे से पूरे देश में जो ज्वार उमड़ा, यही कारण रहा कि 42 के 5 साल बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद इस आजादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें, हमारे सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें, सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आजादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आजादी का आनंद भी मनाएं, अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें और दुनिया के सामने भारत की शक्ति और भारत की अंदर की ताकत जो वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर है, हम कामना करें चिर युवा भारत रहे और चिर अमर इसकी स्वतंत्रता रहे। सबके लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामनाएं।
0: तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है अशोकनगर जिले से, जहां महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को बाल चौपाल का नाम दिया गया है। पेश है अशोकनगर से हमारे संवाददाता नीरज शुक्ला की ये रिपोर्ट।
2: ग्रामीण स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को बाल चौपाल का नाम दिया गया है। इस बाल चौपाल के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों की बौद्धिक और कलात्मक क्षमता को निखारा जा रहा है तथा माताओं व अभिभावकों को बच्चों की देखरेख के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है। बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में बुलाकर स्कूल में बैठने की आदत डाली जा रही है, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा के प्रति आकर्षित रहें और प्रतिदिन स्कूल जाने की आदत डालें। वहीं ग्रामीण अंचल की माताओं को भी शिक्षा के महत्व, स्वच्छता, बच्चों के विकास के लिए दिए जाने वाले उचित पोषण की भी जानकारी दी जा रही है। अशोकनगर महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रसेना भिड़े ने बताया,
3: पूरे महीने में जो बच्चों को सिखाते हैं वो उनके माता पिता को पता चले कि हमने बच्चों को क्या सिखाया है, ताकि माता पिता की सोच आंगनवाड़ी के लिए सकारात्मक बने। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल चौपाल कार्यक्रम प्रारंभ किया है। माह में 2 मंगलवार को माता पिता को बुलाते हैं और उन माता पिता को हम दिखाते हैं कि आपके बच्चों ने पूरे महीने भर में क्या सीखा, वो क्या क्या बोल सकते हैं।
2: अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
0: श्रोताओं, हमारी दूसरी खबर है सीधी जिले से। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में सीधी दूसरे पायदान पर है। जिले ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले वर्ष की तुलना में बीमा कवरेज क्षेत्र में 28.13% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं फसल बीमा योजना में किसानों के पंजीयन में 31.97% की बढ़ोतरी भी की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: कृषि के क्षेत्र में सीधी जिले की बात की जाए तो एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में सीधी दूसरे पायदान पर है। जिला प्रशासन द्वारा सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को मिशन के तौर पर क्रियान्वित किया गया है। किसान हितैषी कलेक्टर विकास मिश्र ने सीधी जिले में कृषि विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत वर्ष 2025-26 के आउटकम इंडिकेटर्स में सीधी जिले ने देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में से दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि कृषि विभाग के साथ साथ जिले के किसानों के लिए भी गौरव की बात है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, दलहन और तिलहन के उत्पादन का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, भंडारण अधोसंरचना विकसित करना और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सीधी जिले ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले वर्ष की तुलना में बीमा कवरेज के क्षेत्र में

0: 28.13% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं फसल बीमा योजना के में किसानों के पंजीयन में 31.97% की बढ़ोतरी हुई है। खरीफ और रबी दोनों सीजन में स्वीकृत फसल बीमा दावों के भुगतान का आंकड़ा 100% दर्ज किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण के क्षेत्र में भी जिले के उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में पिछले वर्ष की तुलना 6.78% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण में 11.53% की वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
1: हमारी अगली खबर है आगरमालवा से, जहां शिवालयों में भगवान शिव की पूजन अर्चन रुद्राभिषेक के साथ ही कीर्तन भजन के आयोजन किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आगरमालवा से हमारे संवाददाता महेश शर्मा।
2: आदिदेव महादेव की पूजा आराधना और जप तप के विशेष श्रावण माह के दौरान आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में पूरे माह भगवान भोलेनाथ का विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जा रही है। आगरमालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय श्री वैजनाथ महादेव मंदिर पर इन दिनों देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता देखा जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित महाकाल, मंगलनाथ, अचलेश्वर महादेव, कमलकुंडी, शंकर टेकरी, मंगलेश्वर महादेव के साथ ही जिले के ग्राम गोंदल महू स्थित 1111 शिवलिंग वाले शिवालय शिवतोड़ा महादेव, पांडवकालीन पंचदेवलिया महादेव मंदिर में शिव आराधना की जा रही है। वहीं श्रावण माह के अंतिम सोमवार के दिन जिला मुख्यालय पर बाबा श्री बैजनाथ महादेव की भव्य शावी सवारी मंदिर प्रांगण से निकाली जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं शिवपुरी जिले की तरफ, जहां स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 से 15 अगस्त 2026 तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। पेश है हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता की ये रिपोर्ट।
3: शिवपुरी जिले में स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 अगस्त से 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। पखवाड़े की थीम स्वनिधि से समृद्धि है, आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर रखी गई है। इसी क्रम में पिछले दिनों शिवपुरी के कम्युनिटी हॉल के ऊपर स्थित शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान नए आवेदन लिए गए और लंबित तथा पहले अस्वीकृत प्रकरणों का निराकरण किया गया। पखवाड़े के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम, विशेष शिविर, बैंक समन्वय बैठकें, हितग्राही संपर्क अभियान और डिजिटल संचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधक रमेश सिंह ने बताया कि पखवाड़े के दौरान पात्र पथ विक्रेताओं को योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शिवपुरी जिले में अभी तक 6500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। पखवाड़े के दौरान अधिक पात्र वेंडर्स को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों ने बताया कि इस योजना से उनके कारोबार में वृद्धि हुई है और उनकी आय भी बढ़ी है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
1: हमारी अगली खबर है विदिशा से। जिले में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से 16 अगस्त को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में कृषि वैज्ञानिक द्वारा किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन, नवीन कृषि अनुसंधान और उत्पादकता बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
4: प्रदेश के कृषि प्रधान विदिशा जिले में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने हेतु 16 अगस्त को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शामिल होने की संभावना है। साथ ही कार्यक्रम में जिले भर के 2 से 5 हजार किसानों के सहभागिता करने का अनुमान लगाया है। महोत्सव में कृषि वैज्ञानिकों को उन्नत तकनीकों, आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन, नवीन कृषि अनुसंधान तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कृषि एवं संबद्ध विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिनमें किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों, नवाचारों और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों को शासकीय योजनाओं, अनुदान, कृषि यंत्रीकरण, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तथा किसान हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। महोत्सव के दौरान किसानों को विशेषज्ञों से संवाद करने और अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर भी मिलेगा।

0: इस महोत्सव के माध्यम से किसानों को खेती में नवाचारों के साथ उनकी आय में वृद्धि तथा शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
6: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
5: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
7: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और herghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये उज्जैन केंद्र है। अब कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आज शाम 7:21 से सुन सकेंगे कार्यक्रम माटी री बात, जिसमें होंगे मालवी समाचार और कुछ निमाड़ी लोकगीत। रात्रि 8 से संसद समीक्षा दिल्ली से और 8:15 से सुर्खियों में कार्यक्रम भोपाल से रिले किया जाएगा। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग रात्रि 10 से दिल्ली से अनुप्रसारित होगी। फिल्म संगीत सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से उज्जैन केंद्र से। रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक होगा दिल्ली से और भोपाल से।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी रात्रि 10:30 से। अब सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हमारी प्रातःकालीन सभा प्रतिदिन सुबह 5:50 पर संकेत धुन के साथ आरंभ होती है। वंदे मातरम और मंगल ध्वनि के बाद विविध भारती से प्रसारण होता है। तत्पश्चात सुबह 7:00 महाकाल वंदन उज्जैन से होता है। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सुबह 7:20 से सुप्रभात उज्जैन, 8:30 पर उज्जैनी आरजे और 9:30 से बॉलीवुड बीट्स का प्रसारण होता है। कल सुबह 10:00 से सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो श्रोताओं के पत्रों पर आधारित होता है। सुबह 11:00 से आप सुन सकते हैं विविध भारती मुंबई के प्रसारण से रंग बिरंगे विविध कार्यक्रम। दोपहर 2:00 भोपाल केंद्र से फिल्म संगीत सुन सकेंगे। प्रतिदिन शाम को 5:00 होता है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। 6:00 से भजन संध्या में मधुर भजनों की श्रृंखला का आनंद और फिल्म संगीत रात्रि 8:30 पर। शाम 6:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की, और मालवी कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज मालवी समाचारों और लोकगीतों के साथ शाम 7:21 से उज्जैन से। कल रात्रि 8:00 से संसद समीक्षा दिल्ली से और 8:15 से सुर्खियों में ये कार्यक्रम भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत रात 8:30 पर उज्जैन से सुन सकेंगे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा भोपाल से रात 9:30 पर संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग रात 10:00 से दिल्ली से और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी रात्रि 10:30 पर भोपाल से अनुप्रसारित होंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी उज्जैन है।

FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस के नवनियुक्त और पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों का किया सम्मान। पेट्रोलियम मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 20% से अधिक बढ़ाने का फिलहाल कोई फैसला नहीं। राजगढ़ में कार के बहने से 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में मध्य प्रदेश पुलिस में नवीन भर्ती और पदोन्नति के उपलक्ष्य में आयोजित आभार एवं सम्मान समारोह में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों और पदोन्नत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और रैंक प्रदान कर शुभकामनाएं प्रदान की।
1: सबकी तरफ से आप सबके लिए ये पदोन्नति का रास्ता खुला है। 58 वर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया देश के अंदर किसी राज्य ने, तो वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सभी पदोन्नत साथियों को शुभकामना देता हूँ।
0: कार्यक्रम से पहले पुलिस जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने कहा कि एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के संबंध में भविष्य में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों और ऑटोमोबाइल्स निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों OMC सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम को नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माताओं, OMC और तकनीकी संस्थाओं को शामिल करते हुए एक चरणबद्ध वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया है। लोकसभा ने अभिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी करने, तिरंगा फहराने, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने और वंदे मातरम का गायन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हर भारतीय के गौरव, एकता, बलिदान और साझा आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभियान का महत्व और भी बढ़ गया है। वहीं नीमच और देवास में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत देशभक्ति और राष्ट्र एकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। नीमच जिले में 17 अगस्त तक विद्यालयों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में आज स्कूलों में तिरंगा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों से तिरंगे के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और नागरिक कर्तव्यों से जुड़े सवाल पूछे गए। वहीं देवास जिले में 12 अगस्त को सुबह 9:30 बजे श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संस्कार कावड़ यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ श्रद्धा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आज जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में सम्मिलित होकर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और दादा गुरु के साथ कावड़ उठाकर यात्रा में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि सावन भगवान शिव की आराधना और भक्ति का पर्व है। मानवता का जल लेकर निकले कावड़ियों का उत्साह अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति से प्रदेश में

सुख शांति और समृद्धि का संचार हो, यही उनकी कामना है। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश शिवमय नजर आया। भोपाल समेत प्रदेश के मुख्य शिवालयों में बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। उज्जैन में भगवान महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम 4 बजे से बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली गई, जो नगर भ्रमण के बाद रामघाट पहुंचेगी। रायसेन के भोजेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का 6 क्विंटल फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। दमोह के बांधवपुर में सुबह 10 बजे तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। वहीं ओमकारेश्वर में तड़के 4 बजे से ही दर्शन के लिए कतारें लग गईं। जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। सतना, खंडवा, शहडोल, आगरमालवा जिलों में भी श्रद्धालुओं ने आज मंदिरों में पूजा अर्चना की। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ जिले में आज सुबह तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा हुआ। सारंगपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के गुजरते समय एक कार तेज बहाव से बह गई। कार में सवार 11 लोगों में से 9 की डूबने से मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसा झिरी नाले के निर्माणाधीन पुल पर हुआ। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला और क्रेन की मदद से कार को भी निकाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट को अधिसूचित किया है। इनमें 9 लैंड पोर्ट और 2 हवाई अड्डे सम्मिलित हैं। इसके साथ ही ई वीजा धारकों के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है और कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश का अनुमान है। भोपाल में रात भर बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ, जबकि VIP रोड पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। सीहोर में नदी नाले उफान पर है। बारिश को देखते हुए भोपाल, डिंडौरी और राजगढ़ समेत कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी की गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने संबंध में विज्ञापन संख्या 10/2026 अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार UPSC के ऑनलाइन भर्ती आवेदन पोर्टल के माध्यम से 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के अधीन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितम्बर है। उम्मीदवार से विज्ञापन में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मद्देनजर सभी विभाग पूरी तरह अलर्ट रहें और मैदानी स्तर पर सतत निगरानी रखें। बैतूल में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत सेक्टर स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के साथ साथ संबंधित विषय से जुड़ी अन्य शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए। और शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज TL बैठक में विभागीय कार्यों, CM हेल्पलाइन की समीक्षा की और जन समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा

0: इंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
2: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: FM 102.5 MHz न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी री बात।

सिर्फ है साफो हाथ में हल, चलियो किसान खेतों की ओर, मेहनत से सोनो उपजाएगा, चमकेगी अब नई भोर, नदिया की कलकल बहती धारा, पंछी गावे मीठो गान, रेडियो ऑन करो सब मिली के, जागो जागो ओ किसान, मिट्टी की महक सजई के लायो, आपको अपनो यार, खेती बाड़े की बात होगी, आ गयो तमारो पसंदीदा शो फिर एक बार। राम राम सा प्रणाम महारा देश का सभी प्यारा प्यारा भाई ना बेन ना और खेत में पसीनो भाई के पूरा देश को पेट भरवा वाला महारा अन्नदाता यानी कि महारा किसान भाई ना के प्यार भरो नमस्कार। मैं हूँ तमारो दोस्त, तमारो साथी, तमारो हम सफर और इन शो को होस्ट लखन मालवी और तम सुनी रहा हो आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ से तमारो पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम माटीरी बात। श्रोताओं, आज कैलेंडर की तारीख है 10 अगस्त। सुबह सुबह जब मैं चाय की चुस्की ली रहो थो और खिड़की के बाहर देखो तो ठंडी ठंडी हवा चली रही थी और बरसात की बूंद भी गिरी रही थी। तब मैंने सोचो कि आज अपना किसान भाईना के लिए रेडियो पे कई सौगात लेके जाऊं। फिर याद आयो कि अरे आज तो 10 अगस्त की तारीख है, कोई आम तारीख नहीं है। आज का दिन तो कुदरत के ताकत को और महारा खेत उनकी बरकत को एक अनोखो संगम है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया एक साथ दो दो दिन मना रही है। पहलो है अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस और दूसरो विश्व जैव ईंधन दिवस। अब हमारा सारा कई सारा किसान भाई ना ये सोच ही रहा होगा कि यो कई ताना बाना बुनी रहो है, कहाँ जंगल को राजा शेर और कहाँ यो जैव ईंधन और कहाँ हम मिट्टी में पसीनो भावा वाला किसान, तो हमारा इनसे कई लेनो देनो। तो यहाँ ठहर जो भाई ना, क्योंकि अपनी चाय को कुल्लड़ थाम जो और ट्रैक्टर की चाबी के जरा जेब में रख जो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे बतावा वालों हूँ कि कैसे जंगल का राजा शेर की धाड़ तुम्हारा खेत की फसल उनने मानसून की गारंटी देगो और कैसे तुम्हारा खेत को उ कचरो अरे उ पराली जिके तम आफत समझी ने माचिस लगे दो हो वह असल में कालो सोनो जो तुम्हारे पैसा कमाए के दी सकतो है, तम के अन्नदाता से देश को ऊर्जादाता बनी सकतो है। तो दिल थामी के बैठ जो, क्योंकि आज को यो सफर बड़ो सुहानो हुआ वालो है। कहीं जाओ जो मत, बने रहो जो आकाशवाणी उज्जैन का साथ, ली के अपनी दिल की बात। पीपल की वह छाँव पुरानी और पनघट को ऊ पानी, याद आवे ऊ खेत खलियान अपना की मीठी वाणी। चाय की चुस्की संग चौपाल पे खबरें सुनी की होगी बात विचार, तो शुरू करा मालवी में आज का प्रदेश का समाचार।

प्रणाली की दक्षता में सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इन विधायक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना को भी प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्यों है कि संस्कार कावड़ यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का साथ श्रद्धा और सामाजिक एकता को प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आज जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में शामिल हुई के कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करी के उनको स्वागत करियो। दादा गुरुओं का साथ कावड़ उठे के यात्रा में सहभागिता करी। उनने क्यों कि सावन भगवान शिव की आराधना और भक्ति को पर्व है। माँ नर्मदा को जल लेके निकले कावड़ियों का उत्साह और अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने क्यों है कि भगवान शिव की भक्ति से प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि को संचार होगो, यह उनकी कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल का रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश पुलिस में नवीन भर्ती और पदोन्नति के उपलक्ष्य में आयोजित आभार और सम्मान समारोह में सहभागिता करी। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थी और पदोन्नत पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनके प्रमाण पत्र और रैंक प्रदान करी के शुभकामना दी। उनने बतायो कि प्रदेश का 58 संवर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है। कार्यक्रम का पहला पुलिस जवान ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दियो है। सावन का दूसरा सोमवार में प्रदेश शिवालय नजर आ रही है। भोपाल समेत प्रदेश का प्रमुख शिवालयों में बारिश का बीच भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्मा आरती में दिव्य श्रृंगार कियो गयो तथा शाम के बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकली जो नगर भ्रमण करी के बाद पुनः महाकाल में लौटी। रायसेन में का भोजेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की 6 क्विंटल फूल से विशेष श्रृंगार करियो गयो है। वहीं ओंकारेश्वर में तड़के 4 बजे से ही दर्शन के लिए कतार लगी गई है। जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुआ है। प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लियो है और कई जिला में तेज बारिश को दौर जारी है। भोपाल मौसम विभाग ने आज 21 जिला में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में अगले 24 घंटा में 8 इंच तक बारिश को अनुमान है। भोपाल में रात भर बारिश से कई इलाका में जल भरा हुआ है जबकि VIP रोड पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुई गयो है। सीहोर में नदी नाले उफान पर है और बारिश के देखते हुए भोपाल, डिंडोरी और राजगढ़ समेत कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगरमालवा जिला का प्रभारी नागर सिंह चौहान ने क्यों है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना केंद्र और प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रेरणा है। श्री चौहान ने आज सुसनेर में एकात्म मानववाद से प्रणेत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को अनावरण करियो। उनने क्यों है कि केंद्र और प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना का साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही। इन्हीं भावना का साथ सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। ये था आज का प्रादेशिक समाचार।

साथियों, तुम्हारा सगला को इन खूबसूरत शाम में फिर से स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन का खास कार्यक्रम माटेरी बात में। भाइयों, आज को यो सफर आपकी सोच और तुम्हारा जीने का अंदाज के बदलवा वालो है, क्योंकि हम शेर की संरक्षण की बात भी करांगा और पराली से नोट छापवा की सरकारी योजना की भी बात करांगा। पन इन बेहद खास और बड़ी चर्चा की शुरुआत करवा से पहला आओल माहौल में थोड़ी मिश्री घोला। सुना मारी माटी की सौंधी खुशबू से सराबोर उमंग और जोश से भरियो यो लजाओ लाजवाब लोकगीत।

0: भाइयों,
1: आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस मनायो जा रियो है। इको मकसद शेर को संरक्षण करनो और उनकी घटती आबादी के प्रति लोग उनके जागरूक करनो। अब तम कहोगा कि भाई शेर तो जंगल में रहे, मारे इससे कहीं। पर सच तो यो है कि हमारा देश का किसान और देहाती भाई ना, जो सदियों से जंगल और वन जीवों को सबसे बड़ो रक्षक रियो है। हमारा गुजरात का गिर जंगल उनके ही देख लो। देश पर्यावरण की फूड चेन को राजो है। अगर जंगल में शेर सुरक्षित रहेगा तो जंगल बचो रहेगो, और अगर जंगल बचो रहेगो तो हमारा खेत में समय पे मानसून को पानी मिलतो रहेगो, शुद्ध हवा मिलेगी और पर्यावरण को संतुलन भी बनियो रहेगो। वन जीव की रक्षा करनो हमारी संस्कृति को हिस्सो है। तो आज का दिन आओ उन जंगलों और शेर की सुरक्षा की प्रार्थना करा, जो परोक्ष रूप से हमारी खेती की रक्षा करे। चलो इन सुंदर विचार का साथ लेवा एक छोटो सो म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि जंगल बचेगा तो हवा पानी शुद्ध हम पावांगा। अगर जंगल बचेगा तो हवा शुद्ध पानी हम पावांगा, पर्यावरण रहेगा संतुलित तो खेत में सोनो उगे पावांगा। चला एक खूबसूरत सा नगमा की ओर, लोकगीत का बाद फिर मिलांगा, मचाने थोड़ो और शोर।

0: श्रोताओं, शेर की धाड़ का बाद अब बात करांगा खेत का ऊ काना काला सोना की, जिके हम जैव ईंधन बोला। आज ही का दिन यानी कि 10 अगस्त 1893 के वैज्ञानिक सर रुडोल्फ डीजल ने दुनिया को पहलो डीजल इंजन चलायो थो। और कमाल की बात यह थी कि वो डीजल से नहीं बल्कि मूंगफली का तेल से चलायो थो। उनने तभी बता दियो थो कि आने वाला समय में गाड़ियों चलावा का जो ताकत है वह हमारा किसान भाई उनका खेत से आवेगी। सीधा शब्दों में बोलूं तो जैव ईंधन को मतलब हमारा खेत की फसल को कचरों जैसे धान की पराली, गेहूं का डंठल या गन्ना की खोई और ढेर जो गोबर है उको, इन सब चीज़ों ने प्रोसेस करी के ईंधन बनावे है उके जैव ईंधन बोलियो है, जिके हम कचरों समझी के खेत में छोड़ी देता था और फेंकी देता था। वी असल में देश की गाड़ियों को पेट भरवा की ताकत रखे हैं। तो श्रोताओं, विश्व जैव ईंधन दिवस का अवसर पर सेवानिवृत्त बॉटनी प्रोफेसर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से हमारे यहाँ डॉक्टर मधुबालाजी पुरोहित, जिनसे हुई जैव ईंधन पर चर्चा और जानियो कि जैव ईंधन क्यों जरूरी है, आइए उनसे हुई बातचीत का अंश सुना।
1: आज विश्व जैव ईंधन दिवस है, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रकृति के पास हमारी ऊर्जा जरूरतों का कितना बेहतरीन और हरित समाधान छुपा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के घटते भंडारों और बढ़ते प्रदूषण के बीच जैव ईंधन यानी कि बायोफिल भविष्य की एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। लेकिन पौधे, फसलें और शैवाल कैसे हमारी गाड़ियों का ईंधन बन सकते हैं, इसी वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बॉटनी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर मधुबालाजी पुरोहित, जिनको 40 वर्षों का अध्यापन का तथा पर्यावरण प्रदूषण पर अनुसंधान का 50 वर्षों का अनुभव है। आइए उनसे करते हैं चर्चा। मैडम, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: मैम। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैव ईंधन क्या है और यह जीवाश्म ईंधन से कैसे अलग है और हम क्यों जैव ईंधन को प्राथमिकता।
2: जैव ईंधन हमारे क्रॉप प्लांट के वेस्ट से बनाए जाने वाले ईंधन होते हैं जैसे इथेनॉल और बायोडीजल, जबकि जीवाश्म ईंधन जो पृथ्वी की गर्त से निकाले जाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि जैव ईंधन हम बार बार बना सकते हैं और इसमें कहीं हम नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म नहीं कर रहे होते हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन जिसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है इनका पृथ्वी के गर्त में बहुत कम मात्रा में स्टोरेज है और उसे हम बेतहाशा तरीके से उपयोग करते रहे हैं, तो धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो निश्चित ही हमें जैव ईंधन की ओर मुड़ना जरूरी हो गया है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि जिस हिसाब से आज जीवाश्म ईंधन का दोहन हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक दिन वो खत्म हो ही जाएगा। मैम, मेरा अगला क्वेश्चन था कि बायोडीजल या एथेनॉल किन चीजों से बनाया जाता है।
2: बायोडीजल और इथेनॉल आज के समय में काफी चीजों से बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगी इथेनॉल को उन फसलों से बनाया जाता है जिनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है जैसे गन्ना, मक्का, टूटे हुए चावल, खराब अनाज। दूसरा जो सोर्स है जिनसे एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अवशेष और फसल के कचरे से इथेनॉल बनाया जाता है,

0: इसके अलावा असम में बांस से भी बायो इथेनॉल बनाया जा रहा है। इसी तरह मक्के के कटाई के बाद बचे हुए कचरे से मध्य प्रदेश में आजकल इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। पंजाब बठिंडा में कपास के डंठल और पत्ते और वेस्ट से भी इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। गन्ने के सह उत्पाद जिसे मोलेसिस कहा जाता है और वह पर्यावरण प्रदूषण में एक समय बहुत बड़ा कारण हुआ करता था, उससे भी बायोडीजल बनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर कुछ अलग तरीके से बायोडीजल बनाया जा रहा है। अमेरिका में 90% बायोडीजल सोयाबीन से बनाते हैं। एशियन कंट्रीज मलेशिया इंडोनेशिया में पाम ऑयल से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। यूरोप और कनाडा में रैपसीड और कैनोला से बायोडीजल बना रहे हैं। यूरोप के कुछ कंट्रीज में सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर ऑयल से भी बायोडीजल बनाया जाता है। हमारे देश में बायोडीजल बनाने के लिए गैर खाद्य तिलहन पौधे जैसे जेट्रोफा जिसे बोलचाल की भाषा में रतनजोत कहते हैं, करंज नीम और महुआ के बीज, इनसे तेल निकालकर बायोडीजल बनाया जाता है। इसके अलावा इन दिनों समुद्री शैवाल से भी थर्ड जनरेशन के बायोडीजल बनाने पर काम हो रहा है, प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है।
1: मैम मेरा अगला क्वेश्चन था कि जैव ईंधन का उपयोग हमारे लिए क्यों जरूरी है?
0: जैव ईंधन आज की सबसे बड़ी जरूरत हो गया है और निश्चित ही इससे किसानों को आय भी बढ़ेगी क्योंकि ये कमाई का एक नया जरिया है। आज तक करंज के पेड़ों की कीमत किसी ने नहीं पहचानी और कि करंज के पौधे के लिए उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे बंजर भूमि पर भी उपजाया जा सकता है। इसलिए बहुत कम पानी में जो वेस्टलैंड पड़े हुए हैं या जो बंजर भूमि उनके खेतों के आसपास या गांवों के आसपास पड़ी है वहां ये करंज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो उनकी आय में वृद्धि होगी। जब इनसे इथेनॉल या बायोडीजल बनाया जाएगा तो उनकी आय में तो निश्चित ही वृद्धि होगी। दूसरी बात, इससे अपने एग्रीकल्चर वेस्ट जो उनके यहाँ अभी तक वो या तो फेंक देते थे या जला देते थे, कि बहुत आय बढ़ जाएगी यदि वे इसे इथेनॉल प्रोडक्शन या बायोडीजल बनाने के लिए बेचेंगे तो उनकी अतिरिक्त आय होगी। तीसरी बात कि क्यों हम बायोफ्यूल्स का उपयोग करें, तो इनसे हमारे पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे क्योंकि जिस तरह से अभी तक पराली और वेस्ट को जलाया जाता था उससे एयर पोल्यूशन की बहुत गंभीर समस्या बनती थी। बायोडीजल या बायोफ्यूल बनाने में एक ही एडवांटेज है कि इनमें सल्फर नहीं होता है जिसके कारण उनके जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगी जो एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण होता है और जिसकी अधिकता के कारण कई प्रदेशों में एसिड रेन्स भी रिपोर्टेड है। चौथी इम्पोर्टेंट बात कि हम क्यों जैव ईंधन का उपयोग करें, वेस्ट डिस्पोजल। खेती में बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट जनरेट होता है जिसका निपटान किसान के लिए सिवाय आग लगाने के होता नहीं है, पर इस विधि के द्वारा जहां वेस्ट का उपयोग बायोडीजल या इथेनॉल बनाने में किया जाएगा तो निश्चित ही बायो वेस्ट की मात्रा कम हो जाएगी, न ही उन्हें उसके लिए अपने खेतों में आग लगानी पड़ेगी और न आग लगने से एयर पोल्यूशन की भी समस्या नहीं खड़ी होगी।
1: मैम मेरा अगला क्वेश्चन था कि जैव ईंधन के उपयोग से क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा?
0: जी बिल्कुल, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राज्य की भी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमारा देश विदेश से पेट्रोल और डीजल महंगे भाव में इंपोर्ट कर रहा है और अभी आप सब ने फेस किया है कि युद्ध हो जाता है तो हमारी सप्लाई कट जाती है। बायो ईंधन फ्यूल या जैव ईंधन के उपयोग से हम पराश्रित नहीं होंगे, हम स्वयं अगर इसका प्रोडक्शन चालू कर पाएंगे तो निश्चित ही हमें विदेश का मुंह नहीं जोहना पड़ेगा। दूसरी बात, यह इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगा कि ये इंपोर्ट कम होगा। दूसरा, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है तो कृषि में निकले वेस्ट को यदि हम इस तरह से ईंधन में कन्वर्ट कर पाए तो निश्चित ही हमारे काफी पैसे में इजाफा होगा, आय में इजाफा होगा, तो यह निश्चित ही बहुत उपयोगी होगा शहर के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर भी।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। मैम मेरा अगला क्वेश्चन था कि जैव ईंधन के उत्पादन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?
0: चूंकि ये हमारे देश के लिए अभी नया प्रोजेक्ट है तो उसमें कई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होंगी, जिसमें सबसे

0: पहले समस्या आएगी कि एग्रीकल्चर वेस्ट को खेतों से इकट्ठा करके फैक्ट्री तक पहुंचाना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना जरूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है टेक्निकल समस्याएं, क्योंकि अभी हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सब जगह, तो निश्चित ही हमें पहले प्लांट्स सब जगह लगाने पड़ेंगे, जिससे कि प्रोसेसिंग प्लांट अगर खेतों के करीब या किसानों के पहुंच के क्षेत्र में होंगे तो निश्चित यह समस्या सुलझ जा सकती है। चौथी जो समस्या है कि इन प्रोसेसिंग यूनिट्स का इंस्टॉलेशन, उनको खड़ा करना बहुत महंगा होता है, तो शुरुआत में निश्चित ही हमारे देश में इस पर काफी खर्चा करना पड़ेगा, पर भविष्य में इसका बहुत फायदा हमें मिलेगा। एक और समस्या जो मैं देख पा रही हूँ कि हमारे देश में जागरूकता की कमी है। किसान आज भी यह बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके खेतों से बचा हुआ कचरा उनको इतनी अतिरिक्त आय दे सकता है, तो उसको वो जलाए नहीं और कोशिश करें कि उससे नया आय का साधन बनाए।
1: मेरा अंतिम प्रश्न था, विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ऊर्जा का इतना बेहतरीन विकल्प मिला है, उसे हमें जरूर उपयोग में लेना चाहिए, और इससे दो बहुत महत्वपूर्ण फायदे हमें मिलेंगे। ये पहला, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, और दूसरा, हमारे किसानों को अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त होगा। इसलिए मेरा इस विश्व जैव ईंधन दिवस पर सभी वाहन चालकों से एक ही अनुरोध है कि अपनी गाड़ियों में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाएं, पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करें, और किसानों से यही आग्रह होगा कि वे अपने एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाए नहीं, क्योंकि हमें प्रकृति का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। जब तक हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी, हमारी भूमि और हमारा आकाश, वायु ये सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित है। अंत में मैं यह संदेश देकर अपनी बात को विराम दूंगी। गो ग्रीन, सेव नेचर। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यह है हमारे विक्रम यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त बोटनी के प्रोफेसर डॉक्टर मधुबाला जी पुरोहित, जिन्होंने बेहद आसान शब्दों में हमें समझाया कि कैसे पेड़ पौधे और वनस्पतियों के जरिए हम एक स्वच्छ और हरे भरे भविष्य की नींव रख सकते हैं। जैव ईंधन न सिर्फ हमारे पर्यावरण को बचाएगा बल्कि हमारे किसानों के लिए भी तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। तो श्रोताओं, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपनी प्रकृति का ख्याल रखिए और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था डॉक्टर मधुबाला जी पुरोहित, जिनसे हुई बातचीत का अंश आपने सुनिया। आगे बढ़वा से पहला सुनांगा एक प्यारो सो लोक गीत, लेकिन पेड़ पौधा की ओर या फसलें मिली के एक नयो वरदान लाएगी। जैविक ईंधन की यह ताकत हमारी गाड़ियों के दौड़ाएगी, हवा भी होगी साफ, आसमान भी मुस्कुराएगो, जब हर इंसान इन धरती के हरो भरो बनाएगा।

0: घड़ी की सुइयां इशारों करी रही है कि मारे इन खूबसूरत सफर को वक्त अब खत्म हो वालो है। पर आज जो बात हमने करी है विश्व जैव ईंधन दिवस की, जो मैंने चीख चीख के याद दिलावे है कि मारा खेत की पराली, मारा ढोर उनको गोबर कोई कचरो नहीं है, वो इन देश को कालो सोनो है। तो आज इन रेडियो का मंच से मैं तुम्हारे एक छोटो सो वादो मांगू हूँ, इन बार जब खेत में कंबाइन मशीन चलाओ तो माचिस की तीली खिसका खिसा से मत निकालो, जो अपनी पराली ने मंगा हूँ बंडल के बदले जो, और उन्हें बायोगैस प्लांट तक पहुँचाओ जो, पर्यावरण ने जहरीला धुआं से बचाओ जो, और अपना खिसा ने खुशहाली का नोट भरियो जो। और आज 10 अगस्त के इन ऐतिहासिक दिन पे चलता चलता तुम्हारे मारा भाई उनके दोस्त को तुम्हारे सिर्फ आखिरी बात बोलूँ हूँ कि उगता हुआ सूरज की लाली हो तम, इन देश की भूखी थाली की खुशहाली हो तम, मत जलाओ अपना ही हाथ से अपना खेत के नसीब, क्योंकि इन माटी की असली हरियाली हो तम। इन्हीं खूबसूरत एहसास का साथ आकाशवाणी उज्जैन से मैं अब तुमसे विदा लूँ, पन बातों को और गानों को यो सिलसिलो आकाशवाणी उज्जैन पे यूं ही चलतो रहेगो। तब तक तुम्हारे अपना और अपना खेत को ख्याल रख जो, खुश रहो, मुस्कुराता रहो। जय राम जी की। FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन केंद्र। अभी आप सुन रहे थे मालवांचल का खास कार्यक्रम माटीरी बात। कुछ समय
1: अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है PTI भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेनदेन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभू शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉ कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, UPPL के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में UPI लेनदेन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। UPI पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जय संघ भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।
उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉक्टर के लक्ष्मण और बाबूभाई जयसंगभाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृहमंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही

0: चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी के भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज आकाशवाणी रिव्यू।
2: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
4: नमस्कार। संसद में आज जिन विधेयकों पर चर्चा हुई, जिन्हें पारित कर दिया गया और जिन्हें आज इंट्रोड्यूस किया गया, हम इस पर चर्चा आज करेंगे। और इन विधेयकों में प्रमुख हैं न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 और बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन मौजूद हैं। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
5: धन्यवाद।
4: सबसे पहले हम चर्चा करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक यानी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पर, जिसे आज लोकसभा ने पारित कर दिया। सबसे पहले आप ये समझाएं कि दरअसल इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मौजूदा न्यायाधिकरण व्यवस्था में ऐसी कोई समस्याएं हैं जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है?
5: इस विधेयक की

0: सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक पुराना लॉ है जो 2021 में पास किया गया था, रिलेटेड लॉ है, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट, जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में. और उस चैलेंज के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी. कोर्ट ने यह कहा था कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इस लॉ के माध्यम से ज्यादा नजर आ रहा है, शॉर्ट टेन्योर्स का मामला है जो चेयरपर्सन है ट्राइब्यूनल्स के. तो अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रहता है तो काम करने का जो इंडिपेंडेंस है ट्राइब्यूनल्स का वो कम होता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक ऑर्डर पास किया था. उन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये ट्राइब्यूनल्स क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं. तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये इच्छा जाहिर की थी कि इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को हटाकर इसको डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. और यही हिदायत दी गई थी उस जजमेंट में कि एक नया लॉ लेकर आया जाए, ऐसा लॉ जो इनएफिशिएंसी ट्राइब्यूनल्स की, वजह बहुत सारी हैं उसकी, वजह यह भी है कि वैकेंसीज बहुत रहती हैं, उनको भरने में बहुत वक्त लगता है, दूसरा चेयरपर्सन के टेन्योर्स को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, अलग अलग ट्राइब्यूनल में अलग अलग समय सीमाएं हैं, तीसरा ये है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा है. उन सब चीजों के मद्देनजर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अब ये नया बिल लिया है जो पुराने लॉ को रिपील करता है और एक पूरा नया मसौदा तैयार करता है.
1: यही वजह है कि सरकार ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी NTCP बनाने का प्रस्ताव किया है.
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा. वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है, जो चेयरपर्सन हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स की समय अवधि की कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग है. अब इस मसौदे में ये प्रपोज किया गया है कि चेयरपर्सन का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए, और या फिर वो 70 साल की उम्र तक होने चाहिए, और जो बाकी लोग हैं वो 67 ईयर्स तक होने चाहिए जो मेंबर्स हैं. ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया गया है, अब ये कमीशन चेयरपर्सन को सिलेक्ट करेगा. एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, और कमीशन को ये भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमेटी में. उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा.
1: और साथ में ये भी चर्चा अक्सर होती रहती है, बल्कि शिकायत होती रहती है कि मामले जो हैं बहुत लंबे समय तक ट्राइब्यूनल्स में भी लंबित रहते हैं. क्या इस विधेयक से न्यायाधिकरणों में मामलों के निपटारे में गति आएगी?
0: इस विधेयक से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने जा रही है कि एक कमीशन पूरा का पूरा बन जाएगा, तो जो सरकार को वक्त लगता है वैकेंसीज भरने में, चेयरपर्सन अपॉइंट करने में, मेंबर्स बनाने में, वो पूरा का पूरा काम एक डेडिकेटेड कमीशन आगे से करेगी. उससे क्या होगा कि वैकेंसीज भरने में आपको बहुत विलंब नहीं होगा क्योंकि एक डेडिकेटेड आपने अपैरेटस बना दिया जिसके माध्यम से ये सब चलेगा. दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि डेफिनेटिव टेन्योर्स होंगे. जैसे सब जगह तय कर दिया गया है कि हर जो ट्राइब्यूनल है उसमें एक स्टैंडर्डाइज टर्म्स ऑफ सर्विस होंगे, चेयरपर्सन के भी और मेंबर्स के भी. उससे चेयरपर्सन और मेंबर्स को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलती है, चेयरपर्सन को, किसी भी कमीशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को. इसके पीछे मंशा ये है. और तीसरी बात जो है कि अकाउंटेबिलिटी का एक स्टैंड अलोन मैकेनिज्म क्रिएट हो गया है क्योंकि नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन ही जितनी भी इंक्वायरीज अभी तक, कंप्लेंट्स भी आपको पता है ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ बहुत आती हैं, मेंबर्स के खिलाफ आती हैं, फिर वो लिटिगेशन में चला जाता है जिसकी वजह से केसेस लंबित हो जाते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है. तो इन सब चीजों के निपटारे के लिए भी नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन को अधिकृत कर दिया गया है. इससे ये उम्मीद है सरकार को कि ना सिर्फ केसेस बहुत जल्दी निपटारे हो जाएंगे, बल्कि क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया है ट्राइब्यूनल्स की पूरी फंक्शनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, चेयरपर्सन सिलेक्शन से लेकर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तक, तो चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती चली जाएंगी.
1: बिल्कुल. ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 यानी न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 आज लोकसभा से पारित हुआ. और जैसे कि हमने चर्चा की, इस विधेयक से तेज न्याय, स्वतंत्रता और जवाबदेही, इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित होगा और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल पाएगा. इसके साथ ही अदिति, खान एवं खनिज यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 ये आज लोकसभा में पेश किया गया. भारत के खनिज संसाधन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. इस विधेयक के जरिए सरकार खनन क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव लाना चाहती है?
0: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम सब जानते हैं कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट का बहुत सारा जो हक है या राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हैं। जो माइन रिच मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनको अभी तक ये अधिकार रहता है कि वो

0: किसी भी तरीके का टैक्स इम्पोज कर सकें मिनरल डेवलपमेंट पर या यू नो माइनिंग राइट्स पर. उसकी वजह से ऐसा महसूस हुआ है, मतलब लंबे समय से ये एक्सपीरियंस केंद्र सरकार का रहा है कि टैक्स बर्डन जो है इस इंडस्ट्री पर वो बढ़ गया है. टैक्स बर्डन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि एक डिसइंसेंटिवाइजेशन हो रही है सेक्टर की. लोग इसमें आने से घबरा रहे हैं, पैसा लगाने से घबरा रहे हैं. इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब केंद्र सरकार ने ये प्रपोज किया है इस बिल में कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, इसका अधिकार लेगी और जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है टैक्स रेजिम्स में मिनरल डेवलपमेंट में वो खत्म हो जाएगी. मतलब कहने का है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा. आपने अभी कहा कि क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है, जैसे हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है. हम कितना इम्पोर्ट डिपेंडेंट रह सकते हैं. हमें अपने देश में ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है. उसके लिए सरकार को ये लगा है, इसी वजह से आया है कि थोड़ा सा अधिकार जो इस वक्त टैक्स इंपोज करने का स्टेट्स के क्षेत्र में वो खुद वो ले लें.
1: तो जैसा अदिति आपने बताया कि आज भारत कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों से उसे आयात करने पर निर्भर है, तो क्या आपको लगता है कि इस विधेयक के बाद भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा ये कदम साबित होगा?
0: देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम साबित होने जा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए जो चार बड़े मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जिनका जिक्र आजकल स्ट्रेटेजिकली भी होता रहता है, लिथियम हो गया, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, यूरेनियम है,
1: जी.
0: हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है. हमने ग्रीन एनर्जी के इतने बड़े बड़े गोल्स सेट किए हुए हैं, यू नो हम कार्बन एमिशन फ्री होना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारा जो मिनरल डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको एक तरीके से एनर्जाइज किया जाए. इस महत्वपूर्ण विधेयक का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है वो ये है कि एक माइनिंग लीज के तहत आप बहुत सारे मिनरल्स अब कवर कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि माइनिंग लीज होल्डर्स जो हैं वो एक ही लीज में अलग अलग एडिशनल मिनरल्स को माइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये सुविधा अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में नहीं है. हर एक नए मिनरल के लिए आपको एक नया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. तो मुझे लगता है ये जो ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट दी है, इससे बढ़ावा मिलेगा मिनरल डेवलपमेंट को.
1: और अभी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एक तरीके से आप कहें कि 6 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं है. क्या इस विधेयक के बाद इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आएगी और निजी क्षेत्र का निवेश भी आएगा?
0: हाँ बिल्कुल, इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही ये बोल दिया गया है कि इसका जो पर्पस है वो है माइनिंग सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ज्यादा निवेश अट्रैक्ट करना और ज्यादा इक्विप्ड बनाना हमारी कंट्री की बढ़ती हुई क्रिटिकल मिनरल्स की नीड्स के साथ अलाइन करने के लिए. तो जैसा कि आपने कहा कि एक देखिए सरकार का ओवरऑल अप्रोच भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह ईज ऑफ बिजनेस के लिए बहुत से ऐसे विधेयक लाए गए हैं जिसमें नीडलेस कानून जो हैं उनको या तो हटा दिया गया है या बहुत हद तक डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है या डीरेगुलेट कर दिया गया. ये जो बिल है ये उसी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण आगे जाने वाला बिल है और इसमें क्रिटिकल मिनरल माइनिंग के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है. जैसे कि हमने जो चार मिनरल्स का जिक्र किया और गोल्ड और सिल्वर उसमें जोड़ दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि जो लीज होल्डर्स हैं उनको कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग लीज में इन मिनरल्स को माइन करने के लिए. कौन से मिनरल्स? लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड और सिल्वर. इनके लिए ये स्पेशल इंसेंटिव दिया गया. ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं. तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही देश में क्रिटिकल मिनरल माइनिंग को इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं.
1: आपको क्या लगता है सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच कैसे संतुलन स्थापित करेगी?
0: इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए और रूल्स और रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. वही एग्जिस्टिंग माध्यम से ही सारे के सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं. एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक बहुत रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है. तो उम्मीद यही रहती है हर नए विधेयक से कि जहां ये डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा वहीं हमारी प्रकृति को बहुत हार्म नहीं करेगा.
1: साथ ही एक और बिल है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, हिंदी में कहें तो बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026. ये आज संसद से पारित हो गया, आज राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी. क्या है ये कानून? क्योंकि ये 135 साल पुराना है, 1891 का कानून है, इसे बदलने की जरूरत अब क्यों महसूस की गई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं.
0: इंडिया पूरे विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर पूरे दुनिया में हो रहे हैं तो वो इंडिया में हो रहे हैं. तो ये जाहिर सी बात है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है बैंकिंग बुक्स को लेकर, उसमें प्रावधान ये है कि लीगल फ्रेमवर्क में सपोज कोई बैंक का मैटर कोर्ट

में चला जाए तो इस वक्त के प्रावधानों के हिसाब से सिर्फ मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जो बैंकिंग सिस्टम में है वही लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ये जो बिल है इसको बदलने जा रहा है। हम आपने कहा कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया जब माननीय राष्ट्रपति

0: है कि जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम में वर्चुअल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब लीगल फ्रेमवर्क के तहत आ जाएं, ताकि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, अभी तो उनको प्रैक्टिकली फ्री रन मिला हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि मैनुअली डॉक्यूमेंट आएगा कोर्ट में, केस लंबित रहेगा, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर ही नहीं है, लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है. तो वो सब जो गैप्स हैं सरकार ने आज इस बिल के माध्यम से भर दिए हैं, और साइबर फ्रॉडस्टर के लिए ये एक नेचुरली एक चैलेंज के रूप में काम करेगा.
1: अगर आम बैंक ग्राहक की दृष्टि से देखें तो क्या इस नए कानून का एक बड़ा व्यवहारिक फायदा उनको मिलने जा रहा है? अगर हाँ तो वो कौन सा फायदा है?
0: सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा तो ये है कि आपको अपने इंटरनेट या अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो सर्टिफिकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाले जो सर्टिफिकेट्स आप सेल्फ अटेस्ट करते हैं, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य होंगे. अभी आप जानते हैं कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी नोटरी के पास जाइए, कभी उसको वेरीफाई कराइए, ऑथेंटिकेट कराइए, ये सारा का सारा जो बिजनेस है इसको खत्म करके सब कुछ आप अपने हाथ से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं.
1: इसमें कहीं कोई एक किसी आम ग्राहक के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि उसे डरने की जरूरत है या संभाल कर चलने की जरूरत है, ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए वित्तीय?
0: नहीं, मुझे लगता है ये तो साइबर फ्रॉड का जो पूरा एक पैटर्न चल रहा है इस वक्त, उसको एक तरीके से एड्रेस करेगा, ना कि अदरवाइज. क्योंकि अभी आपको पता है कि लीगल फ्रेमवर्क में डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स मान्य ही नहीं है, तो अभी तो सारा का सारा साइबर बुलिंग, या आपने सुना है कितनी बार अभी जो डिजिटल अरेस्ट का सारा माध्यम चला है, उससे डील करने की पावर मिलेगी, अपना साइबर पुलिस को भी मिलेगी और आम जनता को भी मिलेगी.
1: बिल्कुल. तो हम अपने श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि आज संसद ने बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026 जो पारित किया, जो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ जल्द ही कानून बन जाएगा. अदिति, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: अभी आप सुन रहे थे आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा. इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
3: सुर्खियों में
4: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 8:30 हुए हैं. पेश है फिल्म संगीत. पहले सुनिए 20 साल बाद इस फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के स्वर में. गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

0: में
1: याद करेंगे।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए कलाकार फिल्म का गीत किशोर कुमार के स्वर में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीतकार हैं इंदीवर।

फिन संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी उज्जैन है, FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में पहले हिंदी फिर अंग्रेज़ी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है।

0: उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
6: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
7: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।

0: भी बताना चाहूंगा और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
3: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
4: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी

0: करता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in the men's and women's Pool D. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Raj Sabha returning it to the Lok Sabha after discussions. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. Replying to the discussion, Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any

0: action, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. Mr. Modi congratulated the athletes for bringing glory to the nation and expressed confidence in their future victories.
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: The FIH Hockey Men's and Women's World Cup 2026 will feature a revamped competition structure with the traditional quarterfinal stage scrapped and the top two teams from each of the two crossover pools advancing directly to the semi-finals. Belgium and the Netherlands jointly host the tournament from the 15th to the 30th of this month. The new format means teams will have little margin for error from the outset, with results from the opening pool stage potentially carrying over into the next phase. India's men have been drawn alongside England, Pakistan and Wales in Pool D, while the Indian women will face China, England and South Africa in their Pool D campaign. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges
2: opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between student and police during assembly march in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in men's and women's Pool D. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने के खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के तावुन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। कल हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और FIH हॉकी आलमी कप 2026 नए फॉर्मेट के साथ इस हफ्ते बाद में शुरू होगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। अब खबरें तफसील से। टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 राज्यसभा में गौर व खौज के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है, इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान बाला में ये बिल पेश किया। बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 का मकसद भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मुस्तहकम करना, मजीद सरमायाकारी को रागिब करना, रोजगार पैदा करना और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने वाजे किया कि ये बिल यूपीआई सारिफिन पर किसी तरह का टैक्स या लेन देन के चार्जेस आयद नहीं करता। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस अदा नहीं

0: ही करने होंगे। पार्लियामेंट की जानिब से बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 को भी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि राज्यसभा ने भी इसे आज मंजूर कर लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिल पेश किया, जिसका मकसद मौजूदा बैंकिंग निजाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को हम आहंग करना है। ये बिल बैंकरों के बही खाते और इसे हम असर डिजिटल बैंकिंग तरीक़ाकार से मुताबिकत पैदा करने के लिए शवाहिद से मुतालिक कानून फराहम करता है। बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि बैंकरों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल और मजाज माना जाएगा और वो कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये बिल इसलाह पर मबनी कदम है जो मुल्क की तेज रफ्तार पेशकदमी में मदद करेगा। उन्होंने वाजे किया कि बैंकरों के बही खाता शवाहिद कानून को 1891 में तरतीब दिया गया था, जब बैंकिंग निजाम पूरी तरह से कागज से चलता था। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आज भारत ने अपनी मईशत को डिजिटल शक्ल देने में काबिले जिक्र तरक्की का मुजाहरा किया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि बैंकिंग और इकतसादी लेन देन अब बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहे हैं, जो अक्सर मोबाइल फोन पर आसान क्लिक के जरिए काबिले रसाई हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मुल्क का कानूनी फ्रेमवर्क इस तरह तब्दील हो जो इन जदीदकारियों की रफ्तार को बरकरार रख सके। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई की वजह से कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऐवान की बिला रुकावट कार्रवाई के सिलसिले में तावुन के खातिर ऐवान के अरकान से जाती तौर पर एक अपील की। जनाब बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिदा कारोबारी मशावरती कमेटी की मीटिंग के दौरान ये अपील की। जनाब बिरला ने ऐवान में तातुल पर अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए ऐवान के लीडरों से एक जज्बाती अपील की कि वो वक्फा इस सवाल की कार्रवाई चलने दें और अहम बिलों पर बहस में हिस्सा लें। जनाब बिरला ने तामीरी बहस, बामायने शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी रिवायात की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। स्पीकर मौसूफ ने सभी पार्टियों से उनके तआवुन की अपील की ताकि ऐवान की कार्रवाई को बिला रुकावट और मुनज्जम तरीके से चलाया जा सके और लोगों से वाबस्ता मामलात पर एक जामे और सूदबंद बहस हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों के मामलात के सिलसिले में इस तरह से इंतजार नहीं कराया जा सकता और उनका इस ऐवान में इजहार किया जाना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए और उनका हल निकाला जाना चाहिए। पीएसी मीटिंग के बाद पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के हालिया एहतजाज और मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए तैयार है। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि वजीर दाखिला अमित शाह हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनाब रिजिजू ने कहा कि शहरियों को हकायक जानने का हक हासिल है। उन्होंने अपोजिशन पर ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने और कार्रवाई में मजीद रुकावट न डालने पर जोर दिया। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की ताकि वजीर दाखिला अमित शाह तलबा के एहतजाज के सिलसिले में बयान दे सकें और अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दे सकें।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत पार्लियामानी बहस से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बीएसई मीटिंग के दौरान हुकूमत ने इस मामले पर जामे बहस के सिलसिले में वाजे तौर पर अपनी आमादगी जाहिर की थी। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, आजादी और तकरूरात और खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। ये कानून नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। लोकसभा में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान इस बिल को बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। हंगामा जारी रहने पर सदर नशी ने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी।

0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेल 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों के अपने तजुर्बात के बारे में बातचीत की। जनाब मोदी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनकी कामयाबियों के लिए एतमाद का इजहार किया।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश के सबब आज भी रांची में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किया। इस दौरान जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की क्यादत में हजारों तलबा ने विधानसभा की जानिब मार्च किया और कई बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारस राणा और एसपी रूरल गौरव गोस्वामी ने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया है। मुजाहिरीन जेएसएससी सीजीएल इम्तिहानात के ताल्लुक से सीबीआई के जरिए गैर जानबदाराना छानबीन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड के सीआईडी ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के सिलसिले में जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगटे को गिरफ्तार किया है। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर मुमलकत जनाब संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की नुकताचीनी की है। नीज सीबीआई और ईडी के जरिए छानबीन कराए जाने की मांग को दोहराया है। इस दौरान हजारीबाग से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनीष जायसवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया। पुलिस कार्रवाई और जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इस साल 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत की तामीर में नौजवान भारत के तावुन के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को उजागर किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि तारीखी लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे। वजीर आजम कौमी परचम फहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। पहली मरतबा यौम आजादी की तकरीबात में लाल किले की फसील से कौमी गीत गाया जाएगा। मुल्क भर में जारी हर घर तिरंगा मुहिम में नुमाया तौर पर तेजी आ रही है और ये जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को मुल्क के कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे का मिलकर जश्न मनाने की तरगीब दे रही है। हर घर तिरंगा मुहिम इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी और ये इस साल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह से मुताबिकत रखती है, जिससे सभी शहरियों के लिए ये एक पुरजोश मौका बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से इस मुहिम में जोशो खरोश के साथ शामिल होने और विकसित भारत की तामीर के सिलसिले में अपने ताउन के मजमूई अजम का इयादा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी शहरियों से इसमें शामिल होने और तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और बड़े पैमाने पर वंदे मातरम गाकर और तिरंगा फहराकर और हर घर तिरंगा .com पर सेल्फी अपलोड करके जश्न मनाने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सभी अजला में तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुरमुस तब तक नहीं खुलेगी जब तक वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। तेहरान में आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौज की जारहियत की वजह से तवानाई की सप्लाई की अहम बहरी गुजरगा आबना

हुर्मुस को बंद किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अबनाए हुर्मुस का दोबारा खोला जाना अमरीका और इसराइली हुक्काम की जानिब से ईरान पर आयद की गई शराइत पर मुनहसिर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मशरक राजस्थान में शदीद

0: FIH मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाती तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पूल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ये टूर्नामेंट इस माह की 15 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तिदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी, क्योंकि इब्तदाई मरहले के नतीज अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है, जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि UPI लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। और 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के तआवुन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चिराग को रोशन कर दे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि

0: आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद?
1: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है, तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यू जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आम तौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की जिंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
2: नमस्कार जी मनीष जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है? और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
0: जी तो आपने दो तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है तो उसका जवाब आपको देंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूं डॉक्टर अनिल कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
1: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में, जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए, या तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
3: जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब यह होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा खराब हो गया हो या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है, जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस से कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
0: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
4: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश, और मेरा एक प्रश्न ये है कि जो से दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
0: अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग?

0: व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
1: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है। तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
0: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुंचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही खास एक ये स्थिति होती है कि अंग दान जो है, जहां तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियां हैं या जो महानगर हैं, वहां पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
1: इसमें अंग दान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंग दान एक मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र एक मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1-800-114770, 1-800-114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है। कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर कि मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है, तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा करके कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फ़ोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हों। तो
0: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जी जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंगदान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंगदान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंगदान नहीं हो सकता है।
0: जी, तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर

0: आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार सहनी जी। विजय जी कहिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी।
1: हाँ मनीष जी।
0: जी
1: मनीष जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
0: अंगदान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना चाहते हैं।
2: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप आइए, डिजिटल माध्यम से अंगदान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, notto.mohfw.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे, तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा। एक मिनट का आपके, उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहाँ पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत ज़रूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये इसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पर कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
0: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकरे जी। श्रीकांत जी क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
3: हेलो
0: जी। जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार श्रीकांत।
3: मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है जो आई डोनेट करने वाला जो है।
0: जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश जी। जी
4: जी अच्छा श्रीकांत जी कि आपका आपकी जो नज़र गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उस पर हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो।

0: क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नजर पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके, उसका इलाज करके आपकी नजर को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 01123310481 और 23717117 तथा 23717106। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं, 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना, 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब बताइए, क्या है आपका सवाल?
2: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
0: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ़ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था, वो
3: कैसे खबर करें?
0: हाँ, पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था, वहाँ कर सकते हैं। और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल?
4: जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
4: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो प्रोसीजर के बारे में पूछना था, जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी न अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है? थैंक यू।
3: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी 2 नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं जरूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर में अगर आपने इच्छा

0: की है, तो हम लोग सभी एक फर्ज समझते हैं कि हमारी एक फर्ज है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है। तो आप बताएं जरूर, ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, 1800-11-4770, 2400 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
1: जी हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद काजिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
2: जी नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।
2: मेरा सवाल, दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटिड क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
1: जी
3: जहां तक आपने कहा क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आंख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थाल्मोस में पुतली भी खराब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फ़ायदा नहीं होता है।
1: जी शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
4: नमस्ते सर।
1: नमस्कार नमस्कार।
4: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
3: आपको भी।
1: आपको भी
4: जी। मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना % डोनेट कर सकते हैं अपन, प्लीज बता दीजिए।
1: जी हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
0: जी, जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लीवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो लीवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। एक दो लोब होते हैं लीवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30-40% और राइट होता है 50-70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पर एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
1: जी और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं, अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
3: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद मेंटली बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल कर सकते हैं, और चाहे चश्मा लगाते हों कितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है, पुतली स्वस्थ होनी चाहिए,

0: कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
2: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है, और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान की स्नेक मुहिम के लिए आगे आने।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
2: धन्यवाद
1: शर्मा को। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
2: क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226 दाखिल, लक्ष्मण गौरव।
3: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 24 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
2: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
4: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demands, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
3: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
5: Sabhapati Mahoday, 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी

सेव करने का आधार रखा गया है। तो लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है। और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस प्रोत्साहन को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था, और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है। अब ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये कंसर्न है। सभी डिस्कॉम ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी इसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके हों।

0: करेंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम जिसके ऊपर डाला जाएगा और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, न पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको लागू किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है, पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सतरम सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
3: सभापति महोदय। ये विषय तो पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती हैं प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की जैसा मैंने पहले कहा ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर की इनकी डिमांड है इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से सेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा स्लोप करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्टल में चला गया। एप्टल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्टल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय चंदाकालिया जी, श्रीमान विजय चंदाकालिया जी,
4: धन्यवाद जी, धन्यवाद चेयरमैन जी।

0: यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट। दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन आवर ओन डिस्ट्रिक्ट। सो द प्रोजेक्ट एनविसेज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1.85 लाख करोर, इंक्लूडिंग 20 GW ऑफ रेन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the honorable minister, if the government is considering measures to ensure time bound coordination between NTPC, the central transmission utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion, sir.
1: Honorable Minister, सुनाप जी महोदय, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो मैंने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो पुरुषों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे
2: देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है आपके माध्यम से। मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 GW एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है तो 284 GW की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर का जो ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास सवाल रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब देंगे।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू

ये आकाशवाणी भोपाल है, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म झुमरू से।

किशोर कुमार का संगीत, उन्हीं के लिखे बोल और उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म झुमरू से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।

एस डी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म श्री 420 से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

शंकर जयकिशन का संगीत हसरत जयपुरी के लिखे बोल लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म श्री 420 से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए प्रस्तुत है दयाशंकर और साथियों द्वारा शहनाई वादन राग चंद्रकौस।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे दया शंकर और साथियों द्वारा शहनाई वादन राग चंद्र कौस। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े

दोस्तों, जिंदगी में हम हर कदम पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, पर जहाँ तक होशियारी सीखने की बात है, वो सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है।

मुकेश की आवाज़ में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये छोटी सी दुनिया है और कब कोई कहाँ पर मिल जाता है, कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, कुछ पता नहीं लगता है। कई बार हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते और वो हो भी जाता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रंगोली से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म शोर से।

दोस्तों, मुस्कुराना भी एक कला है, क्योंकि अपनी मुस्कान से ही हम दूसरों के चेहरों पर चमक ला सकते हैं। जब कोई दिल से मुस्कुराता है तो आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लहू के दो रंग से ये गीत।